सुप्रभात। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 4, तदनुसार 25 जून ईस्वी सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाई भाषा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में इस भजन के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्तिमय गीत। और अब आइए सुनते हैं अगली रचना जगजीत सिंह और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी चाईवासा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण, और अब आइए सुनते हैं ओम व्यास के स्वर में ये रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और अब श्रोताओं, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, तो आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे सुभाशीष मित्रा के स्वर में संगीत रचनाएं। सवेरे 7 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। सवेरे 8 समाचार प्रभात का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे सवेरे 8:15 पर। उसके बाद श्रोताओं, आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार सवेरे 8:30 पर। हमारे केंद्र से लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक होगा सवेरे 8:40 पर, जिसमें आज आप आनंद ले सकेंगे। खोरठा लोकगीतों का कलाकार होंगी करुणा कुमारी और साथी। सवेरे 9 सुनेगा कार्यक्रम विविधा। श्रोताओं, इसमें आज की भेंटवार्ता का विषय होगा मेहनत रंग लाती है। भेंटवार्ताकार होंगी कश्मीरा हेम्ब्रम। श्रोताओं, सवेरे 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा दिन के 10 बजे। दिन के 10:30 से सुनिएगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण, यहीं से। दोपहर 1:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दोपहर 1:20 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। दिन के 2:55 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से, यहीं से आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम सुनिएगा। दिन के 3 बजे मुख्य समाचार शाम 4 बजे आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम शाम 4:02 पर आप सुन सकेंगे, और मुख्य समाचार शाम 5 बजे। श्रोताओं, हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम विवरण शाम 5:02 पर। शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे युगल गीत। श्रोताओं, शाम 5:30 पर सुनिएगा हमारे किसान भाइयों और किसान बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी, इसमें आज चर्चा का विषय होगा बरसाती सब्जियों की खेती। मनोरंजन की जगह हो लोकगीत से सिनेमाई अल्डा और साथियों के स्वरों में मौसम की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही आनंद लीजिएगा पंच परगनिया लोकगीत का राजेंद्र नारायण सिंह देव और साथियों के स्वरों में। शाम 6 मुख्य समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। हमारे केंद्र से शाम 6:02 पर सुनिएगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। श्रोताओं, शाम 6:30 से आप सुनेंगे ICC महिला T20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम बांग्लादेश मुकाबले का आंखों देखा हाल, आकाशवाणी के दिल्ली के केंद्र से। श्रोताओं, शाम 7 प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से, यहीं से जिले में आजकल का प्रसारण होगा शाम 7:10 पर। उसके बाद शाम 7:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। शाम 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, रात्रि 9:15 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। रात्रि 10 से आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। श्रोताओं, रात्रि 11 हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर, और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं सुभाषिष मित्रा के स्वर में संगीत रचनाओं का। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में आप आनंद दे रहे हैं सुभाषिष मित्रा के स्वर में भजनों का। और अब आइए सुनते हैं ये भजन

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे सुभाषिष मित्रा के स्वर में भजनों का। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। जोहार चाईबासा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

जोहार चायबासा कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था धरती। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत, येसुदास की आवाज़ में। फिल्म का नाम है नैया।

फिल्म नैया का ये गीत अभी आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज़ में। और अब आइए श्रोताओं सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा।

0: सच्चा झूठा। श्रोताओं, ये था फिल्म का नाम। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और अब आइए सुनते हैं ये ज़रूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: श्रोताओं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जो हर चाईबासा अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ है। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।
3: जितना हुस्न पे हुस्न।

श्रोता मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे थे मोहब्बत इसको कहते हैं, इस फिल्म का ये गीत। और अब आइए अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी।

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का ये गीत है। और श्रोताओं, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। आवाज़ें किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है कभी कभी।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में नुकन परिस्थिति रे बोले सब ओडा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगल रे को गांव रे करा आरकी थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे हतो तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
5: तो तुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भूरूपा सिनकना ऐसे दुखुर मिनाम तपाम वहा बेटा मिटका
6: अंजाम तुम दो बुम्बई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अंजाम हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितमई कोड़ा दोनों में बुरी बुरी ने बागिया तो कि दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम गया तब जय तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरेन का
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: श्रोताओं, आपने इस समय ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आशा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आशा का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत।

मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, और अब आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म लाजवंती का ये गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब सुनते हैं, आइए, किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत। और अब श्रोताओं, ये बात करते हैं उनकी जिनकी बदौलत देश सुरक्षित है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के वीर जवानों की, जो गर्मी, बरसात, ठंड या किसी भी तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, ताकि हमारा देश और हम सब देशवासी सुरक्षित रहें। श्रोताओं, हमें अपने देश के सैनिकों के बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए कि किस तरह अपना सर्वस्व बलिदान देकर भी उन्होंने देश की सेवा की है और प्रतिक्षण देश की सेवा कर रहे हैं। श्रोताओं, हमारे इन सैनिकों को हमारा कोटि कोटि नमन।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में पहले आप फिल्म का ये गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। जी हाँ श्रोताओं, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का जोहार चायवासा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चायवासा। हम आकाशवाणी

के चाय भाषा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और दो श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
4: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
3: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी, नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
6: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
7: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका पेंशन योजना को दी मंजूरी। राज्य के पात्र कलाकारों को हर महीने मिलेगा 4,000 रुपये की सम्मान राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में GIS आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा। रांची, धनबाद और गिरिडीह में तय समय सीमा में डिजिटल मैपिंग पूरा करने का दिया निर्देश। मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का समापन समारोह आज। रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन। मुहर्रम पर्व को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। हजारीबाग सहित कई संवेदनशील इलाकों में जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। और राज्य की 8 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कायना कृष्णा सहाय ने राष्ट्रीय पटल पर लहराया परचम। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अंडर 10 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश के कलाकारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर मासिक निवृत्तिका यानी कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पात्र कलाकारों से आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के बुजुर्ग, गंभीर रूप से बीमार और स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों को 4,000 रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत जुडको द्वारा संचालित GIS आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली परियोजना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस आधुनिक परियोजना के तहत शहरी परिसंपत्तियों, सड़कों, जल निकायों और भवनों की सटीक डिजिटल मैपिंग और जियो टैगिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यों को समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करें। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संथाल परगना के पाकुड़, गुड्डा और साहिबगंज जिलों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि PVTG वर्ग के मतदाताओं को पंजीकरण में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने सभी अधिकारियों से नियमों का अक्षरशः पालन करने को कहा।
1: ट्रैफिक में आने वाली सर्दी SAR के फॉर्म में उनके जानकारी दिया, उनका एक तो सहयोग भी मांगा जा रहा ताकि एक भी पात्र नागरिक का नाम छूटे नहीं, उसी सबका शामिल कराना उसके लिए किया जा रहा है। सभी प्रक्रिया में साथ में रहने के समय में एक पारदर्शी का अनुकूल कार्यक्रम करा सकते हैं, जिससे यह दूर इलाका है बरवा में, वहाँ पर वो कार्यक्रम कैसे चला रहा उसका दृष्टि क्या है, वो कार्यक्रम अच्छा भाव में किया जा रहा है क्या, वो CLSU का बाई कर।
0: रांची के मोराहाबादी मैदान स्थित आर्यभट्ट सभागार में सिदो कानू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जहां उपस्थित लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। सभा को संबोधित करते हुए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बिरसा हरित ग्राम योजना की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया।
2: बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत सभी जगह जहाँ जहाँ मैंगो का प्लांटेशन कराए, कृषि हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ चीजों को हम लोग पीछे ला सकते हैं, जैसे कि मशरूम का भी आजकल काफी जो खेत बनाना कर अच्छे लोग उसकी खेती करते हैं, आमदनी करना।
0: कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी द्वारा जिले के सभी 6 प्रखंडों में किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत विभिन्न गांवों में जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ मार्केटिंग अधिकारी बिजेश महाराणा ने विशेष रूप से भाग लेकर किसानों को अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग नगर निगम परिसर में पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर भव्य स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस उत्सव में उत्कृष्ट पथ विक्रेताओं को सम्मानित किया गया और डिजिटल लेनदेन पर जोर दिया गया। नगर निगम के सिटी मैनेजर कृष्णा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को ऋण देकर आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
3: पीएम स्वनिधि का जो प्रोग्राम था, इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन लोगों को तीनों ट्रेंच का लोन दिलवाना था। साथ ही साथ कुछ ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं को पुरस्कृत किया गया जो बहुत अच्छा लोन चलाए। अभी जो ये महोत्सव था इसलिए सेलिब्रेट किया गया ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा योजना का अवेयरनेस फैला सके।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: राजधानी रांची में आज नशा मुक्त अभियान के तहत बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक विशेष मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने हरी झंडी दिखाई। वहीं मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे राज्यव्यापी अभियान का मुख्य समापन समारोह आज सुबह 11 बजे से डोरेंडा के शौर्य सभागार में होगा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुहर्रम पर्व को लेकर राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी जिलों में शांति समिति की बैठकें और फ्लैग मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग में पुलिस ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
6: सभी लोगों से अपील करता हूं कि बहुत ही खुशनुमा माहौल में मुहर्रम के त्योहार को मनाएं और इसके लिए हम लोगों ने एहतियात के तौर पर सभी जगहों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। जितनी भी अम्यूनिटीज है उसके कंसर्न डिपार्टमेंट को, चाहे नगर निगम को, पीएचडी को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, सभी तरह के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी तरीके से त्योहार में कमी नहीं रखनी है।
0: 25 जून 1975 के आपातकाल को याद करते हुए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। देशभर में इससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करना है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने से अगले 4 दिन उमस भरी गर्मी बढ़ेगी, हालांकि शाम को कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इस बीच जामताड़ा के चरकदाहा गांव में कल शाम आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। राज्य के महज 8-9 वर्ष की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी कायना कृष्णा सहाय ने राष्ट्रीय पटल पर राज्य का नाम रोशन किया है। कायना ने भुवनेश्वर के गुरुकुल टेनिस अकादमी में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अंडर 10 राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देशभर की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए कायना ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी सीट गंवाए बिना यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 151 विशेषज्ञ डॉक्टर समेत 262 को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड में बिहार मॉडल पर होगी राजस्व वसूली, मिनरल राजस्व का लक्ष्य होगा 2 गुना। हिन्दुस्तान ने लिखा है, सीए इंटर

इंटरमीडिएट परीक्षा में रांची केंद्र की टॉपर बनी राशि विजय। प्रभात खबर के शब्द हैं, कैबिनेट में गया था केंद्रीय भंडार से नमक खरीद का प्रस्ताव, विभाग ने बदलकर निजी कंपनी को दे दिया। दैनिक जागरण लिखता है, नामांकन व टेंडर आवंटन में अनियमितता की शिकायत पर रिम्स में हुई छापेमारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राज्य सरकार ने बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका पेंशन योजना को दी मंजूरी। राज्य के पात्र कलाकारों को हर महीने मिलेगा 4,000 रुपए की सम्मान राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में जीआईएस आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा। रांची, धनबाद और गिरिडीह में तय समय सीमा में डिजिटल मैपिंग पूरा करने का दिया निर्देश। मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का समापन समारोह आज। रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन। मुहर्रम पर्व को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। हजारीबाग सहित कई संवेदनशील इलाकों में जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। और राज्य की 8 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कायना कृष्ण सहाय ने राष्ट्रीय पटल पर लहराया परचम। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अंडर 10 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8:43 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं खोरठा लोकगीतों का। कलाकार हैं करुणा कुमारी और साथी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओ, आज के माटी की महक कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे हैं। खोरठा लोकगीतों का कलाकार है करुणा कुमारी और साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे खोरठा लोकगीतों का। कलाकार थी करुणा कुमारी और साथी। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

सभी श्रोताओं को आशा पिंगुआ का नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी। 25 जून को विश्व नाविक दिवस मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों द्वारा दिए गए योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का अभियान थीम है माई हरासमेंट फ्री शिप। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा वर्ष 2010 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। नीति से व्यवहार तक समुद्री उत्कृष्टता को सशक्त बनाना के और 2026 और 2027 के लिए IMO के विश्व समुद्री दिवस के विषय में के रूप में चुना गया है। श्रोताओं, समुद्री पेशे से जुड़े खतरों, कठिनाइयों एवं सामाजिक चुनौतियों के प्रति समाज के जागरूकता बनाना, नाविकों के अधिकारों की रक्षा, उनकी कार्य परिस्थितियों में के सुधार और कल्याण को बढ़ावा देना है। वैश्विक व्यापार का लगभग 90% परिवहन समुद्री मार्ग से होता है। नाविकों द्वारा आवश्यक वस्तुएं जैसे कि खाद्यान्न, दवाइयां, कच्चा माल, ईंधन आदि एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाई जाती है। वे लंबी अवधि तक समुद्र में रहकर कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिससे उनका मानसिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। श्रोताओं, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत संस्था है जो वैश्विक समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामुद्रिक नेविगेशन से संबंधित मानकों को तय करती है। तो श्रोताओं, आज विविधा कार्यक्रम में हम मिल रहे हैं कश्मीरा हेमरम से, जिन्होंने JPSC क्वालिफाई कर DSP पद को चुना है। तो आइए हम मिलते हैं।

0: सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए।
1: जोहार, मेरा नाम कश्मीरा हेमब्रम है और मेरा BBSC के पद पे मेरा बहाल हुआ है, चयनित हुई हूँ मैं।
0: जी हाँ, वैसे आप कहाँ की हैं?
1: जी, मैं विशेष रूप से कुमारडोंगी ब्लॉक पड़ता है मेरा, और मैं गांव पड़ता है मेरा दोहड़ी गांव से बिलोंग करती हूँ।
0: अच्छा,
1: अंधारी अंधारी पोस्ट ऑफिस वो मेरा।
0: जी हाँ, और कश्मीरा जी, मेहनत का दूसरा नाम है कश्मीरा हेम्ब्रम। आपने बहुत मेहनत की, तो हमारे और भी लोग हैं जो आपको सुनना चाह रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो आप अपने बारे में बताइए पूरा विस्तार से।
1: देखिए, मेहनत मुझे लगता है कि आज की युवा हो या फिर जो भी स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, इस क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं, सबको अपने अपने जीवन में एक टारगेट को पूरा करने के लिए फोकस करना चाहिए। और जिस तरह से मैंने ये JPSC एग्जाम, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था।
0: हाँ।
1: इससे पहले मैं दो बार असफल हुई, और जीवन में घबराहट भी होती है, असफल होते तो निराशा भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि सक्सेस आपको एक बदलाव की सीढ़ी होती है, जिसमें आप अपने जीवन को साथ साथ अपने आने वाले भविष्य को भी लेकर चलते हो। तो मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए, अपना जो भी आपने फोकस जिस भी टारगेट में आपने आपको रखा है उसमें हमेशा लेके उसको चलना चाहिए।
0: हमारे आज के स्टूडेंट को बताइए कि आपने किस तरह से मेहनत की, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा।
1: जी, सबसे पहले तो मैं अभी के युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज का तैयारी हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप ग्रेजुएशन का टाइम से ही थोड़ी बहुत अपने करियर के लिए फोकस होना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हो तो उसके लिए लंबी तैयारी की आपकी आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए आपको बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जीवन का एक अनमोल समय आपको उसमें देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अपना जीवन में किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए एक डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत जरूरी है। तो अभी के युवाओं में वो थोड़ी सी कमी होते जा रही है, क्योंकि हम डिजिटल दुनिया में है और बहुत सारे ऑप्शन के साथ है, तो सब चीजों के पीछे नहीं जाना चाहिए। आपने जो भी टारगेट अपने जीवन में देखा है उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, मैं यही कहना चाहूंगी।
0: तो आपकी जैसे कि पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, बचपन आपका कैसा रहा, कुछ तो याद होगा?
1: जी जी, मेरे पिताजी, मुझे धुंधला याद है, मेरे पिताजी भी पुलिस विभाग में रहे थे और हम लोग जब बहुत छोटे थे तभी वो हमारे बीच में नहीं रहे।
0: अच्छा।
1: तो मैं हमेशा से घर में उसके बदले, मेरी माता जी का जॉब हुआ मेरे पिताजी के बदले, तो मैं, मेरा घर में हमेशा से ये फोर्स डिफेंस वाला चीज का माहौल बना रहा, क्योंकि मैं माता पिता दोनों को मतलब अपने जीवन में एक आदर्श के रूप में उनको देखते हुए बड़ी हुई।
0: अच्छा।
1: तो ये सब जर्नी रहा मेरा बचपन का, और मेरे प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई मेरे चरवासा से ही शुरू हुई।
0: हाँ।
1: फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए रांची आई, उस तरह से मेरी जर्नी मेरे आगे बढ़ती गई, और तैयारी भी मैं रांची से ही की हूँ।
0: अच्छा।
1: जितना भी सिविल सर्विस की तैयारी रहा है, मैं कुछ चीजें अपने से और कुछ चीजें अपने गुरुजनों के माध्यम से भी की हूँ।
0: आप असफल भी हुई लेकिन फिर भी आप परेशान नहीं हुई।
1: जी,
0: ऐसा क्या बात है, आप कहाँ से इतने अपने दिमाग में इतना बहादुरी कहाँ से लाती, टेंशन फ्री होकर के, मतलब कि आप आगे बढ़ती जाती।
1: मैडम, जीवन में सबके जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयां होती है, हम लोग जीवन में कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के उथल पुथल हर किसी के जीवन में होती ही है, मेरे जीवन में भी रही है, क्योंकि पिता का साया बहुत पहले ही उठ चुका था, तो मैं माता के साथ ही बड़ी हुई। अपने माँ को देखते हुए, तो कठिनाइयाँ किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में जरूर रहती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अपने आप को निराश नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने सोच लिया है कि आपको जीवन में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए अपने आप को लगा देना है। तो मेरे ख्याल से, मैं हमेशा से ये था मेरे जीवन में कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ अलग करना है, ताकि मैं अपने साथ साथ अपने समाज को बदल सकूं, अपने जीवन को बदल सकूं। तो ये सोच मेरे जीवन में अपनी माता को देखते हुए हमेशा से रहा है और उसी के साथ ही मैं आगे बढ़ती गई।
0: जिस समय आप तैयारी कर रहे थे तो पढ़ाई का जो माहौल था उस समय, आसपास का माहौल कैसा था, अब किस तरह से उस समय को निकाला है?
1: मैं घर में सबसे बड़ी थी तो पढ़ाई का माहौल मेरा उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने घर को भी देखती थी, क्योंकि मम्मी हमेशा से बाहर उनका रहना होता था, तो मैं अपने छोटे भाई बहनों को भी देखती थी और उसके बीच में समय निकाल के खुद के लिए एक हर दिन का एक रूटीन फिक्स करना कि आपको हर दिन अगर 4 घंटा पढ़ना है तो 4 घंटा पढ़ना है, तो वो टारगेट को मैंने हमेशा फॉलो किया, क्योंकि घर और पढ़ाई दोनों चीजों को मैं मैनेज कर सकती थी और ये मेरा में था और उसी के साथ ही मैं आगे बढ़ी हूँ।
0: खासकर इसमें देखते हैं कश्मीरा जी की, जो एक लड़की होती उसको बहुत तरह के परेशानियों से भी गुजरना होता है, लेकिन जो घर का जो माहौल अगर सही है तो वो पढ़ाई का भी समय निकाल लेती है, बाकी और भी बड़ी होने के नाते और भी काम होते होंगे उसको भी आप करते जाती हैं। कैसे समय आप निकालती हैं, कैसे समय कैसे निकाल लेती हैं पढ़ाई के लिए?

0: ऐसा है मैडम कि जैसा हम लोग बोलते हैं कि लड़की होने के नाते बहुत सारे, ये सही बात है, महिला को बहुत सारे जिम्मेदारों के साथ चलना पड़ता है। तो उसी तरह मैंने भी अपने जीवन में, अगर मैं सुबह अपना फैमिली को समय दे पा रही हूँ तो शाम को मैं अपने लिए थोड़ी बहुत समय निकाल लेती हूँ, क्योंकि जीवन का चक्र ऐसे ही चलता है, हमें उसी जीवन के में अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। और मैं उसी तरह अपने आप को भी देखती थी कि अगर मैं कुछ समय अपने परिवार के साथ हूँ तो उसी परिवार से थोड़ा सा समय निकाल के अपने आप को भी समय दे दूँ। तो इसी के साथ ही मैंने अपने तैयारी को आगे जारी रखा था।
1: जिस चीज का आप सपना देखी थी वो सपना तो सच हो गया आपका, है ना? कैसा लगता है आपको?
0: मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ साथ मुझे लगता है कि मेरे परिवार, रिश्तेदार, फैमिली और मेरे समाज में भी मैंने एक अलग ही बदलाव का माहौल लाया है, क्योंकि
1: हाँ,
0: ये पुलिस सर्विस जो है, खासकर फोर्स का सर्विस में महिलाएं आने से पीछे हटती है। तो ये बदलाव मैं समझती हूँ कि समाज में मैंने अगर शुरू किया महिलाओं, महिला होने के नाते, तो
1: हाँ
0: आने वाला जो मेरे साथ साथ जो मेरे बाद वाले युवा पीढ़ी, महिलाएं और बच्चियां जरूर इसमें आगे बढ़ेगी और सोचेगी। और हम चाहते भी हैं कि लड़कियां बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, क्योंकि
1: जी हाँ
0: ये आप सक्सेस जो बदलाव की एक सीढ़ी होती है, इसके साथ साथ आप आने वाला जनरेशन को भी में भी बदलाव ला सकते हैं। तो एक, क्योंकि कोई भी लक साथ में लेके नहीं आता है, वो बनाना पड़ता है, तो
1: हाँ हाँ जी हाँ जी
0: मुझे ऐसा लगता है।
1: हाँ और आपने मेहनत भी बहुत की है ना? तो मेहनत जो आप की है, तो हमारे युवा पीढ़ियों को ये बताइए कि जो सपना को साकार आपने किया है, तो उसमें मेहनत का क्या काम है? कितना मेहनत किए, क्या क्या करना पड़ता है आपको?
0: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, क्योंकि मेहनत के बिना आप कोई चीज को आप अचीव नहीं कर सकते हो। और किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको मतलब मेहनत करना पड़ेगा, कुछ समय, कुछ दिन, कुछ साल आपको उसमें देने पड़ेंगे, तभी आपने जो गोल, आपने टारगेट जो सोच के रखा है, उस चीज के लिए आप अपने आपको वहां सक्सेस की ओर अपने आप को देख पाएंगे। हर दिन किसी को 10 घंटा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर दिन भी 4 से 5 घंटा आप एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ उसको मेंटेन करते हैं, तो आप बेशक अपने जीवन में जो भी आपने सोचा है, मुझे लगता है कि आप वो चीज को अचीव करेंगे। क्योंकि अभी के बच्चे में क्या है कि एक डिसिप्लिन वो खो गया है। डिजिटल दुनिया में कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी खोते जा रहे हैं, तो इस चीज के लिए अभी के बच्चों को भी सतर्क करना होगा, क्योंकि उसका सही इस्तेमाल करके हर दिन का एक लाइफ को मेंटेन करना जरूरी है। मुझे लगता है कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीवन में बदलाव लेके आ सकता है।
1: जी हाँ, ये और अनुशासन जो है वो बहुत ही जरूरी है आज की युवा पीढ़ियों के
0: जी
1: लिए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: उसके बिना वो फिर वो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और आज आप देखेंगे कि यहाँ हमारे शहर तो ठीक है, फिर उससे सटे गांव का जो माहौल है वो काफी बिगड़ता भी जा रहा है, और उस
0: जी जी
1: स्थिति को सुधारने में भी टाइम लगेगा। जब तक उनके पास में, उनके गांव में कोई एक अच्छा युवा निकल कर ना आए, क्योंकि
0: वही
1: समाज।
0: मैडम मैं कह रही थी कि जो सक्सेस होता है, कोई
1: हाँ
0: चीज को आप अचीव करते हो, तो आप उसके अपने साथ साथ आप आने वाला जनरेशन को भी बदल कर रख देते हैं। तो
1: हाँ
0: वो
1: जी हाँ
0: सक्सेस जो होता है वो बदलाव की एक सीढ़ी होती है, उससे आपका आने वाला पूरा जनरेशन चेंज हो जाता है। तो
1: जी
0: अभी जो हमारे आसपास या हमारे समाज में युवा पीढ़ी जो थोड़ा सा अपने रूट से, जड़ से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं,
1: जी हाँ
0: थोड़ा सा डिजिटल दुनिया का ज्यादा उस पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को ना कहीं या स्कूल या कॉलेज या किसी भी माध्यम से उन्हें सही रास्ता में लाने की भी जरूरत है, और उसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी भटक रहे हैं वो वापस अपने धरातल पर, रास्ते पे आए।
1: तो आज के युवा पीढ़ी को कश्मीरा जी, आप मतलब कि जो सही रास्ता पे चले, थोड़ा सा कुछ
0: नहीं,
1: बोलिए।
0: युवा पीढ़ी को यही बोलना चाहूंगी कि जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं, उसके लिए अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाइफ लेके आइए। अनुशासन और एक फोकस आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, क्योंकि आप जो कुछ भी करेंगे उससे आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा हुआ रहता है आने वाला, क्योंकि उसी से आपका जीवन का चक्र चलता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए, चाहे आप कॉलेज

0: किसके लिए मैं सबको मेरे आसपास गुरुजनों को हुआ परिवार को हुआ जिसके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ
1: जी।
0: सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।
1: और हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद मैडम।
1: अब जो है आप डीएसपी के पोस्ट पर हैं और उसकी तैयारी भी आपको कर रहे हैं अभी, है ना?
0: जी
1: तो अभी क्या करना पड़ रहा है आपको?
0: अभी तो हमारा 1 साल का ट्रेनिंग है यहाँ हजारीबाग में,
1: हाँ
0: हजारीबाग में चल रहा है, जिसके लिए खासकर ये पोस्ट का जॉब है तो उस हिसाब से हमें ढलने के लिए जो हमारा यहाँ मेहनत हो रही है,
1: हाँ हाँ
0: हमारा हर दिन का दिनचर्या 12 से 13 घंटा का रहता है सुबह से शाम तक का। तो एक एक मैं ये पुलिस का पोस्ट का लाइफ जी रही हूँ, इसमें किस तरह से कठिनाइयाँ से गुजर के हमें मतलब ढाला जा रहा है, मैं उसका हर दिन का मतलब अनुभव को ले रही हूँ, चाहे शारीरिक परिश्रम द्वारा हो या पढ़ाई के द्वारा हो, हर तरह के चीजों को यहाँ सिखाया जा रहा है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इसमें अपने आप को ढालने की और कोशिश चल रही है।
1: वैसे आप लोगों को क्या क्या सिखाया जा रहा है वहाँ पर?
0: हमें सुबह मॉर्निंग 5 बजे से हमारा फिजिकल स्टार्ट होता है, रनिंग होती है, पीटी होती है, राइफल ट्रेनिंग होती है, घुड़सवारी होती है और दिन में हमें लॉ का पढ़ाई लिखाई से संबंधित हमारा क्लासेस चलती है, ताकि हम लॉ को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके, चाहे पुलिस विभाग का हो या और भी सारे लॉ का जितने सारे चीजें हैं। फिर इवनिंग में हमारा फिर से फील्ड वर्क चलता है जिसमें हमारे घुड़सवारी ड्राइविंग सारा चीजें चलती है और साथ में 1 घंटा का हमारा गेम पीरियड भी होती है, तो इस तरह से हमारा दिनचर्या रोज का रहता है।
1: तो इसमें भी आप लोग काफी खुश हैं और काफी जोश खरोश के साथ आप लोग हिस्सा ले रहे हैं।
0: तो जोश भी है और कठिनाइयां भी हैं, क्योंकि आपको मेल फीमेल महिला पुरुष दोनों के साथ आपको एक लय में चलना पड़ता है, एक लय में दौड़ना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत कठिनाइयां भी है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं अपने जीवन में, तो ये अच्छा भी लगता है और हम लोग सब खुश है। ट्रेनिंग अभी हो रही है हमारी।
1: हाँ हाँ, और हमें इंतजार रहेगा कि कब आपकी पोस्टिंग कहीं हो हमारे चाईबासा में हो, तो और भी अच्छी बात होगी, है कि इंतजार कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: अच्छा कश्मीरा जी, अब ये बताइए, भारत जो है नशा उन्मूलन की ओर जा रहा है, नशा पान क्या है, क्या हानियां है, इसके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को बताइए।
0: नशा पान, देखिए हमारा जिस तरह से आदिवासी समाज है, मैं बोलना चाहूंगी कि खुला हमारा संस्कृति है,
1: हाँ।
0: खुलापन हमारे संस्कृति में ज्यादा है, जहाँ पे महिला पुरुष है या बड़े बड़े बुजुर्ग हो, सब मिल बैठ के खाना पीना नाच गान हमारा संस्कृति में है ये। तो लेकिन अभी के जो युवा पीढ़ी है वो गलत रास्ते पे ज्यादा जा रहे हैं, मतलब कि नशापान जो, ये तो आप हम सब जानते हैं कि नशापान किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इसके लिए बड़ों को ही आगे आना पड़ेगा, चाहे समाज के बुद्धिजीवियों को आगे आना पड़ेगा, ताकि उनको जागरूक करना होगा, क्योंकि नशा किसी भी चीज का उपाय नहीं है, वो जीवन को गलत ही डायरेक्शन में लेके जाता है। तो चाहे स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से हो या ग्राम सभा पंचायत के माध्यम से, अभी के युवा पीढ़ियों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि वो सही रास्ते पे वापस लौट पाए।
1: जी हाँ, और एक खास बात है कि घर का माहौल भी वैसा होना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, घर का माहौल भी, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में खाने पीने का भी प्रचलन है,
1: हाँ।
0: चाहे पर्व त्योहार के माहौल हो या शादी विवाह, तो उसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए, एक लिमिटेशन उसकी होनी चाहिए, अधिकता होने से वही है जो अभी के समाज में युवा गलत रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए घर के गार्जियन बुजुर्ग जो है उनको सही दिशा पे उनको ले जाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा।
1: जी, तो कश्मीरा जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अपने बारे में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद मैडम।
2: मेहनत रंग लाती है, ये विषय था मुलाकात का और हमारे साथ थे कश्मीरा हेम्ब्रम।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, प्रस्तुत कर रही थी आशा पिंगुआ। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम रसरंजन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गाइड के इस गीत से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म गाइड का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म ये वादा रहा का ये गीत।

0: ये वादा रहा। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: श्रोताओं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है धड़कन।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में फिल्म धड़कन का ये गीत, और भाई सुनते हैं मिनमिनी की आवाज़ में फिल्म रोज़ा का ये गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कुमार शानू की आवाज में फिल्म क्रिमिनल का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का रस रंजन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी

0: मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजुभाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजुभाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजुभाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
1: जी।
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
3: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
2: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
3: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
2: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
3: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
5: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
3: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
2: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
6: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले।

0: विस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजु भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजु भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
1: जी,
0: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं।
1: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं
0: जी,
1: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
1: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
0: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
1: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
0: युगल और सहभागिता पद्धति
1: जी। इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
0: जी,
1: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
0: हाँ हाँ, बताइए।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति
1: जी। इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
0: अच्छा।
1: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
0: जी,
1: वो बहुत ही शानदार है।
0: अच्छा
1: जी।
0: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजु भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजु भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
0: गिजु भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजु भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजु भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
0: गिजु भाई के अनुसार,
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
0: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजु भाई।

का एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 10:28 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से कार्यक्रमों का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची। सुनने वाले सभी दोस्तों को रेणु
1: और उषा जायसवाल का
0: नमस्कार
1: जोहार।
0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से। संघर्ष आपको कमजोर नहीं बल्कि बेहतर बनाता है। सच्ची ताकत हार न मानने में नहीं बल्कि गिरकर फिर उठने की क्षमता में होती है। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां हमेशा आएंगी, लेकिन जो इससे सीखता है वही मजबूत बनता है।
1: और जानते हैं, संघर्ष आपको कमजोर नहीं बनाता, आपकी समझ, धैर्य और साहस को गहरा करता है। दूसरों की राय से भयभीत न हो, अपनी सीमाओं को पहचाने और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। यानी कि संघर्ष जितना कठिन है, जीत उतनी ही भव्य होगी। इन बातों पर हम अगर अमल करते हैं तो जीवन को सुखमय और आनंदमय हम जरूर बना लेंगे।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: और रेणु जी, जब हम बातें करेंगे ना अपने कार्यक्रम में, तो सबसे पहले हम मौसम को लेना चाहते हैं, क्योंकि मौसम इतना बदलता है। पलक झपकते बादल आ जाते हैं, छा जाते हैं, रिमझिम बारिश भी शुरू हो जाती है या फिर बूंदाबांदी होती है, और तुरंत इतनी कड़ी धूप कि बस लगता है छाता खोले ही रहूं, या तो बारिश के लिए या फिर धूप के लिए,
6: है ना। आंखवी चौली मौसम जो है ना, अभी आंखवी चौली कर रहा है। पूरी तरह से भी मानसून आया नहीं है,
5: लेकिन गर्मी जो है ना, इसका भी आनंद अपनी जगह पर है। और हाँ। बारिश आ जाएगी ना, फिर लगेगा कि पता नहीं कब बारिश खत्म होगी।
6: हाँ, हाँ।
5: और जब बारिश की बातें हो रही है, तो झारखंड में मौसम रुक रुक कर अपना मिजाज बदल रहा है। कल दोपहर बाद रांची समेत कई हिस्सों में खूब बारिश हुई है ना, और मौसम भी सुहावना हो गया। और लेकिन फिर ऐसा कहा जा रहा है कि आज यानी गुरुवार से 4 दिनों तक उमस भरी गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान है। विशेषकर पलामू में अगले 3 दिन तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो गर्मी जो बढ़ेगी ना, तो समझ जाइए कि आम जरूर पकेंगे। कुछ अच्छी अच्छी बातें भी होती है ना मौसम बदलते,
6: और जो मौसम अच्छे जो बीत रहे हैं, जिसमें गिरावट कल बारिश हुई, तो जो गिरावट आई है, मौसम अच्छा हुआ, तो हम उसको लेके चले।
5: हाँ,
6: सब तरह का मौसम का मिजाज के साथ,
5: मौसम का मिजाज तो चलता ही रहता है। और साथ साथ जब भगवान ने ये 4 मौसम जो बनाए हैं ना, तो सबकी अपनी खासियत भी है, कुछ उसके नुकसान भी हैं, तो लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है ना। तो बस इसकी जो खासियत है, इसका जो आनंद है, उसे हम क्यों न ले, है ना। तो ये गीत जरूर सुनवाइए, ताकि आनंद हम पूरा ले सकें।

0: रेणु जी, जब बातें हम करते हैं ना बहुत सारी जानकारी की, क्योंकि ये कार्यक्रम है जानकारियों भरा, तो चलिए आज हम बताते हैं आज कौन सा खास दिवस है। आज यानी 25 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। इसकी शुरुआत 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों के अद्वितीय योगदान को मान्यता देना है।
1: और 1975 में इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश की आपातकालीन की घोषणा की थी। इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और विपक्षी नेताओं ने जेल में डाल दिया गया था। भारत सरकार इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है।
0: और जब बातें करते हैं और भी जानकारी की, तो एक जब हम लोगों को जागरूक करते हैं, जैसे बहुत सारी जानकारी मिलती है ना, तो उससे हमें जागरूकता ही मिलती है।
1: हाँ, एक तो और आज के दिन का ऐतिहासिक घटना है।
0: हाँ,
1: कि 1983 ईस्वी में कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर अपना पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। ये ऐतिहासिक जीत लॉर्ड्स के मैदान पर दर्ज हुई थी।
0: और 1999 में आज के दिन कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण चोटी जुबलिंग पर कब्जा कर लिया था। कारगिल युद्ध 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया एक ऐतिहासिक और दुर्गम युद्ध था।
1: ये संघर्ष मई से जुलाई 1999 तक कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी पर हुआ, जहां भारतीय सैनिकों ने विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तानियों को खदेड़ कर चोटियों पर पुनः तिरंगा फहराया।
0: तो हम आज के दिन को मनाते हैं एक प्यारे से देशभक्ति गीत के साथ।

0: रेणु जी, जब हम बातें कर रहे थे देशभक्ति की, तो देशभक्ति का जब नाम आता है ना, तो बस पूरा शरीर के रोए हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं। अपने देश के लिए मर मिटने को हर किसी की तमन्ना होती है, लेकिन हमारी किस्मत कहाँ कि हम फौज में भर्ती हों और अपने देश के लिए। लेकिन एक कर्तव्य जरूर निभा सकते हैं कि हमारे जो फौजी भाई हैं, जब भी हमें हमारा उनसे सामना हो, तो उनका हम सम्मान जरूर करें, उनके परिवार वालों का सम्मान जरूर करें, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं रहे जो शहीद हो गए, लेकिन उनके परिवार को अगर हम सम्मान देते हैं तो उनको हमारी दिली सम्मान पहुंच जाएगी, और यही हमारा कर्तव्य भी होता है। और चलिए हम आगे भी बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में, और ये बताते हैं अपने श्रोताओं को कि हर साल 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस यानी सफेद दाग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सफेद दाग के बारे में जागरूकता फैलाना, गलत धारणाओं को दूर करना और सामाजिक भेदभाव को खत्म करना है। और इसके बारे में कुछ जरूरी बातें भी हैं कि इसके कारण क्या है, ये भी बता दीजिए।
1: हाँ, ये त्वचा में रंग बनाने वाली कोशिकाओं के नष्ट होने से होती है, जिसके कारण त्वचा पर सफेद धब्बे होने लगते हैं। और लोगों का मानना है कि ये छुआछूत की बीमारी है, ऐसा नहीं है। डॉक्टरों लोगों का भी कहना है कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है,
0: एक साथ बैठने छूने खाने से ये फैलती नहीं है। इसलिए उनका साथ दीजिए, उनके दिल की भावनाओं का सम्मान कीजिए, और उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान को मिलता है, क्योंकि उनके मन में बहुत तरह की परेशानी हो जाती है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ।
1: तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए,
0: सपोर्ट करना चाहिए मानसिक रूप से, ताकि उन्हें इससे कोई दुख ना पहुंचे। और कहते हैं कि सही समय पर इलाज और डॉक्टर की सलाह से इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है, त्वचा का रंग वापस लाया जा सकता है। इसलिए इसके उपाय भी हैं, और अगर आप मतलब डीपली जाएं तो इसका कुछ कुछ उपाय आयुर्वेद में भी मिल जाएगा, ताकि इससे परेशानी नहीं होगी। और हो भी गई है तो आप इसे मान लें कि मेलेनोसाइट एक रसायन है वो लीवर में, उसकी कमी से
1: ये स्किन बदल जाता है,
0: सो उसका बदलने लगता है, इसलिए ये ज्यादा परेशानी की बात नहीं है।
1: उषा जी, हम अपने श्रोताओं को अपना बता दें कि आज का ये कार्यक्रम 11 बजे तक आधे घंटे का ही है, उसी में हम लोग को बहुत सारी बातें करनी है।
0: तो बस जल्दी जल्दी में कुछ और बातें हम कर देते हैं। और जो आपने कहा ना कि 11 बजे तक ही है, तो हम ये बता दें अपने श्रोताओं को कि 11 बजे इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपको मिलवाएंगे आईजी एसटीएफ श्री अनूप बिरथरे जी से, और इनसे बातें करेंगे सिंधु मिश्रा जी, है ना। तो ये कार्यक्रम आप 11 बजे से जरूर सुनिएगा, लेकिन पहले थोड़ी
1: इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जन्म के और निधन के बारे में जानते हैं किनका हुआ।
0: तो आज के दिन जन्म हुआ भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का, 1900 में हुआ था। 1903 में चंद्रशेखर पांडे का जन्म हुआ था, जो प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। सुचिता कृपलानी का जन्म 1908 में हुआ था, जो महिला भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। भारत के 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म भी 1931 में आज ही के दिन हुआ था। और 1924 में बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक मदन मोहन का जन्म हुआ था।
1: मदन मोहन 1950, 1960, 1970 के दशक के भारतीय संगीत निर्देशक थे। उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे मधुर और कुशल संगीत निर्देशकों में से एक माना जाता है। उन्हें पुरस्कारों से कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया।
0: और 1935 में उदय चंद का जन्म हुआ, जो भारतीय पहलवान और कुश्ती कोच थे। और 1957 में गोपाल प्रसाद दुबे का जन्म हुआ, जो सरायकेला छऊर नृत्य के अग्रणी नर्तक हैं। 1975 में मनोज कुमार पांडे का जन्म हुआ, जो परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक हैं।
1: और सतीश शाह का जन्म 1961 ईस्वी में हुआ, ये भारत के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हैं। और 2019 में मोहन राणा डे का निधन हुआ, जो गोवा के स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ, एक और बात याद है उषा जी कि 1986 इसमें सुधा सिंह का जन्म हुआ, जो भारत की प्रसिद्ध महिला एथलीटों में से एक हैं। सुधा सिंह भारत की एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने अनेक पदक जीते हैं। उन्हें 2012 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
0: ऐसे भारत इनको उत्साहित करने के लिए एक प्यारा सा गीत आप अपने श्रोताओं को।
1: ये है हमारी भारत की बेटी।
0: बिल्कुल।

0: और अब इसी गीत के साथ
1: कार्यक्रम जोहर टेक्स्ट में
0: हाँ यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत,
1: नमस्कार जोहार
0: स्वल को और रेणु को,
1: नमस्कार
0: जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। तो आईजी एचडीएफ श्री अनूप बिरथरे से सिंधु मिश्रा की बातचीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आईजी एसटीएफ श्री अनूप बिरथले सर। सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार सर
1: जी। नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और आकाशवाणी रांची के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जोहार।
0: कार्यक्रम में हम आपसे शुरुआत में आपके बचपन, आपके पारिवारिक परिवेश के बारे में जानना चाहेंगे।
1: जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बाई शहर में हुआ है
0: जी।
1: और जो मेरे फादर हैं वो एक जो है बिजनेस करते हैं वहाँ पर, वहीं पर क्रिया करते थे, और उसके बाद जो प्रारंभिक मेरी जो एजुकेशन है वो उत्तर प्रदेश में ही एक सरकारी स्कूल में हुई है, और उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 10+2 तक मैं उत्तर प्रदेश के उसी छोटे कस्बे में था। वहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन की क्वालिटी नहीं थी, बट उस समय में जब हम लोग स्कूलिंग के डेज में थे तो एक अच्छी बात ये थी कि सरकारी स्कूल में भी शिक्षक बड़े अच्छे होते थे और बड़े जो है इंस्पायर्ड होते थे, और बहुत ही डेडिकेटेड टीचर्स ने हम लोगों को पढ़ाया, तो हम लोग

0: में अच्छे से पढ़ाई की और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स और फिलोसफी और हिस्ट्री में, और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में मैंने एमए किया और एमफिल किया हिंदी साहित्य से। तो बचपन उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में बीता जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सुविधाएं वो नहीं थी, बट उसने हम लोगों को सिखाया कि कैसे कम संसाधनों में रहना है, कैसे जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हम लोग जो है मुझे वहीं से मिली।
1: सर, आपके व्यक्तित्व निर्माण में मैं जानना चाहूँगी कि आपके परिवार की क्या भूमिका रही?
0: इसमें देखिए कि निश्चित तौर पर जिस परिवार और समाज में आप रहते हैं वहाँ से आप चीज़ों को सीखते हैं। तो मेरी माता जी का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा, वो हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेटेड करती थी, हमेशा मोटिवेट करती थी कि पढ़ाई करके ही कुछ हासिल कर पाएंगे। और जब हम लोग 10th या 12th के दौरान में थे या उसके पहले भी, तो उनका भी एक सेक्रीफाइस जैसा हर पेरेंट्स का होता है कि जब सुबह 4 बजे या 5 बजे हम लोग पढ़ने के लिए उठते थे उस समय मॉर्निंग में, आजकल तो बच्चे लेट नाइट तक पढ़ते हैं, उस समय मॉर्निंग में पढ़ने का कल्चर था। तो मैंने देखा कि माता जी भी मेरी साथ में उठ जाती थी और साथ में उठ करके जो है थोड़ा सा बातें करना या लगातार कुछ अपने काम करते रहना, और हम लोग उस दौरान पढ़ते थे। इसके पीछे उनका प्रयोजन ये होता था कि अगर पेरेंट्स भी साथ में जागें तो बच्चे फिर मतलब थोड़ा मोटिवेटेड होते हैं और जो है दोबारा उनको नींद फिर ना आए। तो माता जी का योगदान रहा। फादर की जो डेथ है वो काफ़ी पहले हो गई थी, उनका स्वर्गवास उस समय हो गया था जब मैं 7वीं क्लास में था। अच्छा। तो फादर के ना रहने से निश्चित तौर पर दिक्कतें हुई, और उनका जो एक सपोर्ट होता है और एक जो एक फादर का एक जो गाइडेंस होता है उसका अभाव जरूर रहा, बट ये है कि परिवार में अन्य जो भाई बहन थे उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने किया, और फैमिली का और सोसाइटी का बहुत योगदान है, और उन्होंने हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेटेड किया, और जिस कारण से हम लोगों ने मेहनत करके और पढ़ाई अच्छे से की।
1: बचपन से ही हम एक सपना देखने लगते हैं कि बड़े होकर हम अमुक स्थान पर जाएंगे, या लक्ष्य का निर्धारण भी हम तकरीबन कर ही लेते हैं। तो आपका क्या बचपन से ही यही लक्ष्य था, आप पुलिस सेवा में ही जाना चाहते थे, या सपना पीछे रह गया और आप इस ओर आ गए?
0: इसमें देखिए कि अप टू 12th जो है 10+2 तक तो मैथमेटिक्स से मैंने पढ़ाई की, और इंजीनियरिंग करने का एक जो है ड्रीम था इंजीनियरिंग करने का, बट समहाउ उसमें मैं असफल रहा। तो ये एक श्रोताओं को बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है कि 12वीं तक पढ़ाई आपने की और बट इंजीनियरिंग एग्जाम में मेरा किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो या बहुत ही छोटा हो, वहाँ पर भी एडमिशन नहीं हुआ। तो ये एक मुझे झटके की तरह था, एक शॉक की तरह था कि आप इंजीनियरिंग बनने का सोच रहे हैं, मैथमेटिक्स से 12th कर रहे हैं और आपका नहीं हो रहा है। बट उसके बाद जब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया तो उसमें मैं पढ़ने के लिए गया, तो मैंने अपनी लाइन को चेंज किया। अप टू 12th तक मैंने मैथमेटिक्स से पढ़ाई की, फिर ग्रेजुएशन मैंने ह्यूमैनिटीज़ में किया, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री वगैरह में। तो जब मैंने वो पढ़ाई की तो मैंने जाना कि मुझे अंदर से अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिलोसफी। तो ये बेसिकली है कि दो चीज़ें इसमें ज़रूर सीखने की हैं कि पहला तो असफलताओं से घबराना नहीं है। आजकल है बच्चे 12th के बाद इंजीनियरिंग में नहीं हुआ या मेडिकल में नहीं हुआ तो परेशान हो जाते हैं। इसमें देखिए कि वो ज़िंदगी का अंत नहीं है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आपको बाद में ओपन होंगे, और आप पहले जानिए कि आपका क्या जो है फर्स्ट लव है, आपको क्या पसंद है। तो ये मुझे 12th के बाद लगा कि ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसमें मैं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करूँगा। और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अच्छा किया और फिर बाद में और जगहों पर भी। तो और ऐसा नहीं था कि हम लोगों का कोई पुलिस में आने का ड्रीम था, बट ये जब ग्रेजुएशन हम लोग करने लगे, जब ग्रेजुएशन मैंने किया तो निश्चित तौर पर जो है सिविल सर्विसेज एक उद्देश्य बना कि सिविल सर्विसेज को निकालना है, और सिविल सर्विसेज में कोई भी सर्विस हो सकती है। फिर जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया बाद में पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो उसमें इंडियन पुलिस सर्विस मुझे मिली 2007 में। तो उसके बाद में हम लोगों ने अच्छे से उसका काम किया और मन लगा करके काम किया।
1: सर, छात्र जीवन का कुछ ऐसा भी अनुभव आपके साथ हुआ होगा जो आज भी आपको प्रेरणा देती होगी?
0: छात्र जीवन में बहुत सारे अनुभव हैं जो रहे हैं पॉजिटिव, और जो है बहुत सारे इंस्पिरेशंस हुए, फेल्यूर्स भी मिली हैं, तो हर तरीके का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहने के दौरान वहाँ जो कल्चर है, लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ने का, डिबेट डिस्कशन का जो कल्चर है, तो वो चीज़ें जो है इंस्पायर करती हैं और बहुत ही सस्ता एक शहर है इलाहाबाद, ऐसा शहर है जहाँ बड़े बड़े साहित्यकार रहे, महादेवी वर्मा जी, निराला जी, हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी, तो वो इंस्पिरेशन एक रहती थी। और बुक्स पढ़ने का मुझे शौक था, तो वहाँ पर संसाधन कम थे, कम बुक हम लोग खरीद पाते थे, लेकिन हॉस्टल्स में रहने में एक दूसरे की बुक को शेयर करने की भी चीज़ें रहती थी, तो उस तरीके का एक पढ़ने लिखने का कल्चर था। उसके बाद जब हम लोग JNU में मैं गया, तो वहाँ पर भी डिबेट डिस्कशन का एक कल्चर था। और ये सारी चीज़ें हैं जो एक मतलब कंबाइंड स्टडी है, वो हमेशा आपको इंस्पायर करती है। और जब आपके अच्छे नंबर्स आते हैं या कुछ अच्छा परफॉर्म आप करते हैं किसी भी चीज़ में, तो आपको तारीफ मिलती है, तो आप उससे भी इंस्पायर्ड होते हैं। तो बहुत सारी यादें हैं स्टूडेंट लाइफ की, दोनों यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई,
1: जी,
0: जो आज भी जो है अच्छी लगती है उनको याद करने पर।
1: जब हम संघर्षरत होते हैं, यानी कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, तो हम अपने संघर्षशील जीवन से भी काफी मजबूती पाते हैं। तो ऐसा कोई अनुभव आपके साथ हुआ हो?
0: जी, इसमें जो है जैसा मैंने बताया कि 12th में जो एक फेलियर मिली जब इंजीनियरिंग में आप नहीं जा पाए, उसी तरीके से जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ एग्ज़ाम्स दिए, तो शुरू में एक दो एग्ज़ाम्स में नहीं हुआ सिलेक्शन, जब नहीं हुआ तो उसके बाद में आपको ख़राब लगता है, और जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और नहीं हो रहा उसके बाद में, तो वो चीज़ें आपको निराश कहीं ना कहीं करती हैं। और उसके बाद एक जॉब जो मुझे मिली पहले, वो भी मैंने ज्वाइन की, वो मेरे लिए ड्रीम जॉब नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको किया। तो वो एक स्ट्रगल है जो कंपटीशन के समय में आपके साथ आता ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे UPSC के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स भी पास किया, मेंस भी पास किया, और इंटरव्यू तक भी मैं पहुंचा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने,
1: जी
0: लेकिन इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो एक बहुत लो मोमेंट था लाइफ में, कि आप बहुत आगे जाने के बाद जब आप वापस जाते हैं, लेकिन उस समय भी आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, फिर उसके बाद अगेन पढ़ाई शुरू करते हैं, तो एक टाइम आता है और उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलती है। तो ऐसे मोमेंट्स आए हैं लाइफ में,
1: जी
0: बट उस दौरान आपका अपना जो विल पावर है,
1: जी
0: आपका जो आस्था है, चाहे वो किसी भी स्पिरिचुअल पावर के लिए रहे, किसी भी चीज़ों के लिए रहे, और फैमिली का सपोर्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें आप अच्छे से करते जाइए तो निश्चित तौर पर फाइनली सक्सेस मिलती ही है।
1: सर, आज आप HDFIG के रूप में कार्यरत हैं, और इस ओर आने का अनुभव भी आपका बहुत ही अच्छा रहा, और साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि इस पद पर रहते हुए आप कैसा अनुभव कर रहे हैं।
0: इसमें देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इंडियन पुलिस सर्विस में झारखंड काडर मिला, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस काडर बेस्ड होती है, जिस राज्य को आपको आवंटित किया जाता है वहाँ आप अधिकांश हिस्सा नौकरी का अपना करते हैं। तो झारखंड राज्य में आने के बाद में, चूँकि यहाँ जो खूबसूरत हमारा जो राज्य है, प्रकृति से पूरी तरीके से हरा भरा और जंगल पहाड़ झरनों से भरा हुआ, और बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिला विभिन्न पद में। और ख़ास तौर पर जब हम लोग यहाँ ज्वाइन किए, तो 2007 बैच है मेरा, 2008 में हम लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में और झारखंड में आए, तो उस समय नक्सल समस्या अपने पीक पर थी।
1: जी
0: 2008 में बहुत ज़्यादा उग्रवाद की समस्या थी, और उस समस्या में ऐसी जगहों पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग्स हुई। शुरुआत में जो पोस्टिंग्स हुई हैं, चाहे वो घाटशिला में मैंने काम किया, SDPO घाटशिला में, उस समय लालगढ़ आंदोलन बंगाल में चल रहा था, तो जमशेदपुर का जो ग्रामीण इलाका है, घाटशिला और गुड़ाबंदा चाकुलिया, वो सब बंगाल में मिदनापुर और झाड़ग्राम के बॉर्डर में है, तो काफ़ी बड़ी समस्या वहाँ पर थी, बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती थी। तो उनसे भी आपको खुद ही सीखना है, क्योंकि आप एक अजीब सी बात होती है कि आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और स्टूडेंट लाइफ के बाद एक ट्रेनिंग करके आप आ
1: जी
0: जाते हैं, और
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद ये चैलेंजेस को आपको अपनी ही ट्रेनिंग से आपको सीखना होता है। तो उस नक्सल समस्या ने बहुत हम लोगों को सिखाया, बहुत मेहनत की विभिन्न जिलों में रहते हुए, तो उसने काफ़ी लर्निंग दी, और ये आपको एक दिखाया कि किस तरीके से घनघोर गरीबी का लोग सामना कर रहे हैं, इसके अलावा नक्सल समस्या का भी सामना कर रहे हैं। तो एक अच्छा लगता है कि आप उस समस्या के समाधान में एक हिस्से के रूप में आप रहे,
1: जी
0: और
1: बिल्कुल।
0: जो भी आपको करने का मौका दिया वो इस नौकरी नहीं दिया, और उसके बाद STF में अभी रहते हुए भी हम लोग लगातार हैं, और STF का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है झारखंड राज्य से नक्सल समस्या को ख़त्म करने में। जो STF है, झारखंड की स्पेशल टास्क फोर्स, झारखंड जगुआर जिसका नाम है, ये
1: जी
0: एक स्पेशल एंटी नक्सल फोर्स है झारखंड राज्य की। तो इस फोर्स ने 2008 में अपने गठन के बाद अभी तक झारखंड राज्य में नक्सल उन्मूलन में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और हम लोग भी उसी माध्यम से जो भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूट स्टेट के लिए वो कर रहे हैं।
1: इन जिम्मेवारियों को निभाते हुए कुछ जो आपको पल मिलते हैं, रिलैक्स करने के लिए, उन राहत के पलों पर आप क्या करना ज़्यादा पसंद करते हैं?
0: मुझे बुक्स बहुत पढ़ना पसंद है शुरू से ही,
1: जी
0: और बुक्स मैं बहुत रेगुलर रीडर हूँ। जब बहुत बिजी रहता हूँ तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि बुक्स पढ़ूँ। मेरी अपनी खुद की लाइब्रेरी भी है घर में, जिसमें लगभग 1500 से ज़्यादा बुक्स हैं। तो बुक पढ़ने का मुझे शौक है, वो मैं करता हूँ। इसके अलावा जो मूवीज़ देखने का भी शौक है, मूवीज़ और इन सब का जो है, थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनने का, खास तौर पर जो लाइट क्लासिकल म्यूज़िक है, गज़ल कवाली वगैरह, तो उसको मुझे एक्चुअली उर्दू भी मैंने पढ़ी है अपने
1: जी
0: स्टूडेंट लाइफ में। तो मुझे जो है, जो बड़े जो फनकार हैं उर्दू शायरी के, शायरों को पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे इसके अलावा जो गज़ल गायक हैं, चाहे वो मेहंदी हसन साहब हों, गुलाम अली साहब हों, जगजीत सिंह या नुसरत फ़तेह अली साहब की जो कवालियाँ हैं, तो उनको सुनने का और जो है क्या नाम है उनका, और शायरी वगैरह को भी पढ़ने का शौक है, तो वो करते हैं। दूसरा स्पोर्ट्स और योगा,
1: जी
0: तो ये जो है मैं जरूर श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि एक मेरा भी एक कटु अनुभव रहा है जीवन में। स्टूडेंट लाइफ के दौरान बहुत अवेयर हम लोग नहीं थे स्वास्थ्य के प्रति,
1: जी
0: तो खराब हेल्थ के कुछ इश्यूज आए जब पढ़ने के दौरान हम लोगों को, तो उसने कहीं ना कहीं करियर में भी स्टूडेंट लाइफ में प्रभावित किया। हो सकता है कि जो सफलता आपको पहले मिलती वो बाद में मिली, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू से ही योगा प्राणायाम इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर बच्चे करें,
1: जी
0: तो आउटडोर एक्टिविटीज़ वो बहुत ही ज़रूरी है आपके पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए और बाद में भी। तो मैं योगा करता हूँ और योगासन मुझे अच्छा लगता है, प्राणायाम मुझे अच्छा लगता है, और इससे बहुत फ़ायदा है। और ये बहुत एक लाइफ एक बैलेंस है एक्चुअली। प्रोफेशनल लाइफ में सफल होना जितना ज़रूरी है, उतना ही हेल्दी रहना भी
1: जी
0: ज़रूरी है।
1: बिल्कुल
0: एक अनहेल्दी व्यक्ति अगर आप रहेंगे तो आप ना एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे, ना एक अच्छी नौकरी कर पाएंगे, तो इसलिए एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। और शारीरिक और मानसिक तौर से अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम अपने कार्य को भी सफलतापूर्वक निभा पाएंगे। सर, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब योगा और प्राणायाम आप कर रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा है, तो आपने अभी अभी बताया कि गीत संगीत का भी शौक आपको है, तो मैं चाहूंगी कि आपकी पसंद का एक गीत हम यहाँ सुने। तो
0: ये
1: कौन सा गीत
0: मैं जो
1: आप
0: है
1: सुनना
0: वो
1: चाहेंगे?
0: मैं मेहंदी हसन साहब की आवाज़ में, गज़ल है अहमद फराज साहब की लिखी हुई, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, वो गज़ल मुझे बहुत पसंद है, उसको सुना जा सकता है।
1: जी जरूर। तो आपकी पसंद का ये गीत हम यहाँ सुनते हैं।

0: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमारी बातें हो रही हैं SDFIG श्री अनूप बिरथरे सर से। सर, गीत संगीत की बात हो गई और आपने अपने बारे में भी बहुत सारी बातें आपने बताई। मैं अब आपसे चलते चलते ये जानना चाहूँगी कि अब आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और उनका आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या योगदान है और क्या किस तरह से वो आपको सामंजस्य बिठाकर काम के प्रति और परिवार के प्रति आगे बढ़ रहे हैं।
1: देखिए, फैमिली में तो मेरे फादर की का स्वर्गवास तभी हो गया था जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। फिर
0: जी
1: माता जी का भी कुछ सालों पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। तो एक भाई है मेरे और दो सिस्टर्स हैं, वो अपना जो काम है बिजनेस वगैरह वो करते हैं। इसके अलावा फैमिली में जो है न्यूक्लियर फैमिली है मेरी। अभी यहाँ पर जो है मेरी वाइफ हैं, वो बहुत अच्छी पेंटर हैं और बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट भी हैं। वो उन्होंने जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और जो न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह के कोर्स किए हुए हैं, तो शी उन्होंने काफ़ी एक्सपर्टीज उसमें हासिल कर रखी है। तो वो अपना प्रोफेशनल काम करती हैं। इसके अलावा दो बेटे हैं मेरे, तो बड़ा वाला बेटा भी जस्ट 12th पास किया है और अब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आगे बढ़ेगा। और जो छोटा वाला बेटा है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो 9th क्लास में है और दोनों ही रांची में पढ़ते हैं। और फैमिली का देखिए बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता ही
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: आपके किसी भी तरह की सफलता के लिए। फैमिली तो बैकबोन है और ऐसे प्रॉब्लम्स के क्षण आपको आते ही हैं व्यक्तिगत लाइफ में भी प्रोफेशनल में भी, जिसमें फैमिली एक सपोर्ट के रूप में। तो मेरा मानना है दो ही चीज़ें हैं जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, पहला आपकी हेल्थ और दूसरा फैमिली सपोर्ट।
0: जी
1: तो आजकल इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल लाइफ में। आपने देखे होंगे बहुत से लोग हैं जो प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं या बिजनेस में या किसी भी चीज़ में, लेकिन फैमिली लाइफ उनकी बहुत अच्छी नहीं है।
0: जी
1: तो उसके कारण से जो है बहुत से डिप्रेशन के केसेस आते हैं, बहुत सी मेंटल उस तरह के प्रॉब्लम्स के आते हैं, डिस्टर्ब्ड फैमिलीज आपने देखी होंगी। तो लाइफ जो है ना, वो मेरा मानना है कि स्प्रिंट नहीं है, मतलब तेज दौड़ नहीं है, वो एक मैराथन है।
0: जी
1: लंबे समय तक एक बैलेंस के साथ में चीज़ों को करने का नाम ही जिंदगी है। और बहुत सारी फेल्योर्स, जैसा मैंने बताया कि 12th के बाद में भी फेल्योर और हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फेल्योर मिली है लाइफ में, लेकिन उसके बाद उससे उठ करके जब आप खड़े होते हैं तभी बेहतर है। और ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप एक बेहतर इंसान बने, काम आप कुछ भी कर सकते हैं, और एक अच्छे व्यक्ति बने, एक अच्छे जो है वो बहुत जरूरी है, और वैल्यूज को लेकर के चलना बहुत जरूरी है।
0: सर, अंत में चलते चलते मैं उन युवाओं के लिए आपके द्वारा एक संदेश चाहूंगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़ना चाहते हैं और अभी उसकी तैयारी में भी जुटे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को आप अपनी ओर से क्या संदेश देंगे?
1: जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक अच्छा करियर ऑप्शन है। आज भी बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शंस मौजूद हैं टेक्निकल सर्विसेज में और बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। उसके बाद भी सिविल सर्विसेज आज भी एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। इसमें पढ़ने के लिए आपको कठिन मेहनत की ज़रूरत है निश्चित तौर पर, लेकिन आपको लाइफ में चैलेंजेस बहुत देगी ये नौकरी, और बहुत जो है सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने के लिए मिलेगा। तो पढ़ाई कंटिन्यू जो लोग कर रहे हैं वो अपना करेंगे ही। इसके अलावा इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना ज़रूरी है, और हमेशा आप अलर्ट रहें, अवेयर रहें, मतलब अपने आसपास होने वाली चीज़ों को लेकर के, जनरल नॉलेज के लिए, पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, मतलब हर तरीके की चीज़ों को पढ़ते रहें, और ग्रेजुएशन टाइम से ही इसकी तैयारी करें। ग्रेजुएशन के टाइम से ही बेसिकली ये सारी चीज़ों को, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने होते हैं, तो वो आप एक दो साल में नहीं कर सकते हैं। तो आप शुरू से ही उसको टारगेट करके पढ़ें और अच्छे से अपना चीज़ों को करते जाएं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी।
0: सर, आपने बहुमूल्य वक्त निकाला, अपने व्यक्तिगत जीवन की बातों को हमारे साथ साझा किया और साथ ही साथ अपने सुंदर विचारों को भी हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: जी, थैंक यू, शुक्रिया।
0: श्रोताओं, इस बातचीत के साथ ही हमारा आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को आज दें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप कार्यक्रम इनसे मिलिए में आईजी एचडीएफसी अनूप विलथरे से सिंधु मिश्रा की बातचीत सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर

0: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, बस थोड़ी ही देर में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: कटपड़े भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। शुरुआत करते हैं फिल्म श्री 420 से के इस गाने से। आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, शब्दों में पिरोया है शैलेंद्र ने, संगीतवत किया शंकर जयकिशन ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज केशरी, रोहन केशरी, गोलाघाट बक्सर से विजय केशरी, गौरी शंकर केशरी और शंभू केशरी, मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत राही, सरिता गहवाणकर, सिद्धांत गहवाणकर, प्रिंस एकांश, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित, कुमारी ध्वनि और परी। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म श्री 420 से ये गाना।

कार्यक्रम का अगला गाना आप श्रोताओं के नाम धाज मंजिर महसौल सीतामढ़ी विहार से अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम बहू रुबीना वसीम बाबू आरिज वसीम नवासा अरहान बाबू नवासा हमजा बाबू नवासा मुजम्मिल बाबू नवासी हुमैरा नाज नवासी सुमैरा नाज नवासी अबिहा नाज साजिया शाहीन नाज नाजिया नूरी नाज बच्चू शेख चीना शेख कोलीवाड़ा औराई जिला मुजफ्फरपुर से आप हैं मोहम्मद फैसल शेख नुजहत जहां नाज शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद सहनाज परवेज मुसरत जहां नाज और लुधियाना पंजाब से आप हैं अमरजीत सोनम कौर परमजीत आदिमा कौर बिहार कॉलोनी महासमुंद से वली उल्ला फकीर डब्लू उल्ला फकीर परवीन आसमा फकीर बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी फर्जी वली अंसारी फर्जी वरू अंसारी आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म बहारों के सपने से ये गाने आवाजी लता मंगेशकर और मन्ना डे की है मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा धुन बनाई है राहुल देव परवन ने

कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म मधुमति से, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की, शब्दों में पिरोया शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया सलीन चौधरी ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं भटिंडा रोड डबरवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और उनके घर के सारे सदस्य, सरगुजा मैंड पाठ से सोनिया ठापा, सोनम ठापा, रेशमा ठापा और अदीबा ठापा, बिहार कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म मधुमति से ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा आप श्रोताओं के नाम बड़ा बाम्बो गांव सिपाही साही से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा प्रकाश, ललित प्रधान, किरण केशरी, राजकुमार केशरी, श्यामदेव नायक और देवेंद्र जी। चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल वेसरा, बलमाली वेसरा, बासंती, अनु, सिद्ध कुमारी और पूजा। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक और मुकेश नायक। आप हैं दिगवार रांची रोड से अर्जुन राम, राधा रानी, रानी पल्लवी, सुनीता रानी, कुमकुम, सरजू, हरिशंकर मिस्त्री, अर्जुन लाल और एआर अकेला। पीटर बार गोपालपुर से सदावर एम्ब्रम, बीके मरांडी, शिवप्रसाद, शशिभूषण और राजकिशोर। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म परवरिश से ये गाना। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत पद किया दत्ता राम ने, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की।

इसी गीत के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: बहनों नमस्कार। जिंदगी की राहें चाहे आसान नहीं, बिखरे हैं क्यों हम, क्या हम में जान नहीं। हर कदम लिखेंगे अब एक नई दास्तां, थमना जीवन का अरमान नहीं।
1: नमस्कार बहनों, इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी सखियों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और आज के इस खूबसूरत सफर में आपके साथ हैं हम दो सखियां, मैं हूं रानी
0: और आपके स्वागत के लिए रानी के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी शिल्पी।
1: हाँ बहनों, भारतीय समाज आज तेजी से आगे बदल रहा है, इसलिए हर दूसरी पीढ़ी बदली हुई होती है। दोनों पीढ़ियों का अंतर्द्वंद, उनके सोचने समझने का तरीका, रहन सहन सब भिन्न होता है।
0: बिल्कुल रानी, और आज से हम दो दशक पीछे की ओर देखेंगे तो हमारे समाज में कामकाजी महिलाओं की संख्या रानी उतनी नहीं थी, लेकिन आज इतनी है, क्योंकि आज हर महिला खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने शिल्पी, आज समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए पति पत्नी दोनों का कमाना बहुत जरूरी हो गया है। महिलाएं वैसे भी अपने बच्चों के पालन पोषण, स्वास्थ्य और उचित शिक्षा का दायित्व बखूबी निभाती हैं,
0: और इसलिए आज हर महिला अपने आप को भी आत्मनिर्भर बनाना चाह रही हैं, ताकि आर्थिक रूप से वो भी अपने परिवार को सहायता कर पाए और उनका यानी कि परिवार का संबल बने। और इसका मुख्य कारण है बहनों आज की बढ़ती महंगाई और बदलता हुआ सामाजिक परिवेश।
1: हाँ बिल्कुल सही, और इस बात पर मैंने भी ध्यान दिया है, पर आज हम अपनी सखियों से एक और भी बहुत जरूरी बात

0: करने वाले हैं।
1: वैसे रानी, मैं तुम्हारा इशारा समझ चुकी हूँ। तुम्हारी यह फिक्र बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बहनों के लिए ही आते हैं हर रोज, और समय समय पर हम अपने कार्यक्रम में, यानी कि गृहलक्ष्मी में, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी किया करते हैं।
0: बिल्कुल बहनों, दोहरी जिम्मेदारी निभाना, यानी घर के बाहर ऑफिस का काम और फिर से अपनी गृहस्थी, इसमें तालमेल बनाना कोई आसान काम तो नहीं है। महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: बिल्कुल रानी, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, क्योंकि हमने भी देखा है कि हमारी कई ऐसी सखियां हैं जो अगर बाहर उनकी पोस्टिंग है तो वो अकेले यात्रा करती हैं, नए शहर में रहती हैं, नया अनुभव है, लेकिन परिवार बच्चों का साथ उन्हें सप्ताह के अंत में मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियां महिलाओं के आत्मनिर्भर और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। ये बात जब उनसे बात करोगी रानी, तो कहीं ना कहीं उनकी बात में यह स्पष्ट बात झलकता भी
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल, इसलिए हमारे लिए अपने आप को जानना, अपनी खुशियों को टटोलना भी बेहद जरूरी है बहनों, क्योंकि कई बार हम अपने लिए नहीं बल्कि परिवार की जिम्मेदारियों में ज्यादा गुम हो जाते हैं। हमें अपने स्वास्थ्य की सूध नहीं रहती, जो कि सही नहीं है।
1: बिल्कुल, और ऐसा हमेशा होता है रानी, अक्सर महिलाओं के साथ ये बात होती है। इसलिए आप सभी से आज ये कहना चाहूंगी कि बहनों, ऑफिस के काम का बोझ, जहां भी आप काम करती हैं उसका बोझ हो, तो अपने आप सहकर्मी से, जो आपके साथ काम करते हैं, जो दोस्त हैं, आपकी माँ हैं, सबसे अच्छी आपकी दोस्त होती हैं, या परिवार के किसी भी सदस्य से आप खुलकर अपनी बात साझा कर सकती हैं, जो उन लोगों से कहिए लेकिन जो आपकी भावनाओं को समझे। कई बार ऐसा होता है रानी कि हम अपनी बात को भाव में आके कह देते हैं, लेकिन अगले जो आदमी होते हैं उसे कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए सखियों, इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने मन की बात कहें तो सोच लें कि आप किसके साथ अपनी बात को साझा कर रही हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि अपनी जिंदगी और अपनी सोच की दिशा पर ध्यान देना भी जरूरी है बहनों। दोहरी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर हमारी सोच भी कभी कभी नकारात्मक हो जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, मन की बात दबाने के कारण ये होता है। तो मन की बात दबाए ना, जैसा कि शिल्पी ने कहा, अपनों के साथ बांटे।
1: बिल्कुल, तुमने मन की बात ना दबाए इस पे कही, तो भाई हम तो हैं अपने सखियों के लिए, है ना रानी?
0: हाँ,
1: और हम
0: बिल्कुल।
1: हर दिन कुछ न कुछ ऐसी बातें करते हैं, या बहनों के लिए कोई ऐसा गीत लेकर आते हैं, तो भाई मन की बात अगर बहने हमसे साझा करेंगी तो हम उनका समाधान जरूर कर सकते हैं। बहनों, अपनों का साथ हो तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी हल चुटकी में निकाल लेते हैं। हर तकलीफ के बावजूद सकारात्मक सोच रखिए, कुछ भी मन में उलझन हो तो उसे तुरंत अपने दिल से निकालिए, मन को उस ओर लगाइए जहां आपका मन खुशी आपको चाहता है। अपना नजरिया बदलिए, क्योंकि जब हम सकारात्मक होंगे तो हमारे जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आए, और आती है जाती है, ये तो जीवन में चला आ रहा है, लेकिन उसका समाधान भी मिल जाता है जब हम किसी से अपनी बात को साझा करते हैं। और इसलिए हम अपने कार्यक्रम में हमेशा कहते हैं कि भाई हम समस्या पर कम और समाधान पर ज्यादा विचार करते हैं।
0: बिल्कुल बहनों, इसलिए खुद को कभी भी अकेला मत समझिए, अपने मन पसंद कार्य कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। आपकी रुचि को बनाए रखिए, कुछ समय अपने लिए जरूर निकाले, अपने विचारों पर गौर कीजिए, और सबसे बड़ी बात, खुद से भी प्यार करना जानिए। मन से प्रसन्न रहना भी बहुत जरूरी
1: बिल्कुल
0: है।
1: भाई रानी की ये बात बहुत अच्छी है कि मन की खुशी बहुत बड़ी चीज होती है। मैनो, आपका मन क्या कहता है उसके साथ भी आप ईमानदारी वाला रिश्ता निभाइए। कभी कभी ऐसा होता है रानी कि हम समाज, परिवार या बच्चों के लिए घर मन नहीं है, लेकिन फिर भी उस काम को हम करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है, किसी भी तरह से उसको हम निभाएंगे। तो बहनों, अगर आप अपना अच्छा अपने साथ रिश्ता निभाइएगा, फिर देखिएगा जीवन में खुशियां ही खुशियां नजर आएगी, और परिवार से जुड़कर आप अपनी बातों को साझा जरूर करिए।
0: बिल्कुल शिल्पी, और जिसके पास ये उपहार है ना, यानी हंसता खेलता परिवार है, बड़े बुजुर्गों का साथ है, उसे कोई भी बाधा या समस्या से निपटने में परिवार हमेशा संबल देता है।
1: बिल्कुल, और एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारा कार्यक्रम यानी कि गृहलक्ष्मी एक ऐसा महिला मंच है जहां हम हर एक दिन रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। इसलिए बहनों, आपसे कहना चाहूंगी कि बने रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ, ठीक दिन के 12 बजे हम आपके लिए उपस्थित होते हैं। तो अभी हमारी ये जिम्मेदारी है कि मन की बात हमने कही कि अपनी मन की बात की सुनिए, तो हमारा मन तो भी चाहता है कि सखियों के साथ एक सुंदर सा गीत को सुन लेते हैं, क्यों रानी?
0: बिल्कुल।

0: गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बहनों, अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और आज हम हैं सखियां रानी
6: और शिल्पी। और बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको हर रोज की तरह सुनवाते हैं एक भेंटवार्ता। और आज का भेंटवार्ता भी बहुत खास है क्योंकि इसका विषय है वोकल फॉर लोकल, यानी कि स्वदेशी खरीदें। भेंटवार्ताकार हैं गोपाल कृष्ण दुबे, एक शिक्षक हैं, और उनसे बातचीत की है हमारे रेडियो सखी रानी शुक्ला ने। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
7: कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की खरीदारी भी देश के विकास में योगदान दे सकती है? हाँ बहनों, जब हम स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें अपनाते हैं, तो हम केवल अपनी जरूरतें पूरी नहीं करते बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं। वोकल फॉर लोकल ऐसी ही एक सोच है जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी खरीदें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं विशेष अतिथि गोपाल कृष्ण दुबे जी। आप रांची के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार गोपाल कृष्ण जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
8: जी नमस्ते रानी जी।
7: गोपाल जी, आजकल वोकल फॉर लोकल की काफी चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसका अर्थ क्या है और आज के समय में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है?
8: जी, सर्वप्रथम तो मैं आकाशवाणी के सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार करना चाहूंगा। जी, वोकल फॉर लोकल भारतीय होने के दृष्टिकोण से देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक सार्थक अभियान है। इसका सीधा अर्थ हम ले सकते हैं जो लोकल उत्पाद है, जैसे हम लोग गांव के हस्तशिल्प निर्मित वस्तुएं हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, स्थानीय मसाले हैं, या देश के किसी घरेलू कंपनी द्वारा निर्मित जो सामान है उनको खरीदने के साथ साथ इसके प्रचार प्रसार में हमारा जो सहयोग है वही इस अभियान का लक्ष्य है। देश में स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों के प्रयोग को प्राथमिकता देना ही वोकल फॉर लोकल है। आज के समय में आपने पूछा कि यह महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैं मानता हूं कि आज के समय में देश को आर्थिक रूप से मजबूत, सशक्त और वैश्विक उन्नति के दृष्टिकोण से यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय वस्तु का प्रयोग जब हम करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, कला, संस्कृति आदि धरोहरों का जो संरक्षण है वह भी होता है। जी
7: बिल्कुल, आपने बहुत ही सरलता से वोकल फॉर लोकल का महत्व समझाया, अर्थ समझाया। अब हम जानना चाहेंगे कि जब हम स्वदेशी वस्तुओं और स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को अपनाते हैं तो इसका हमारे स्थानीय रोजगार, समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है?
8: जी निश्चित रूप से, जब हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो उत्पादों की मांग बढ़ने से उद्योगों का विस्तार होता है, जिससे स्थानीय स्तर पर उद्योग लगते हैं, कारखाने खुलते हैं, तो इससे क्या है कि लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है। और हमारे देश में एक समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में है कि पलायन की समस्या, उसमें भी कमी आती है। साथ ही साथ जो पारंपरिक जो हुनर है हमारे युवाओं के अंदर, लोगों के अंदर, उनकी रक्षा एवं उसको उचित स्थान भी मिलता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं खासकर, उनको आत्मनिर्भर व जागरूक बनने का एक मौका मिलता है। स्थानीय उद्योगों के विकास से देश के जीडीपी को बढ़ावा मिलता है। इससे वैश्विक आर्थिक मंदी का संकट जब आता है तो इससे कोई प्रभाव खासम खास नहीं पड़ता है देश पर। तो मुझे लगता है कि इन वस्तुओं के प्रयोग करने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है।
7: बिल्कुल, लेकिन राह हमेशा आसान तो नहीं होती।

0: निरंतरता रखनी होती है, ब्रांडिंग का अभाव होता है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो स्थानीय सरकार है उसका योगदान यहाँ पर अहम हो जाता है। ऐसे में यदि सरकार मान लेते हैं कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को एक एरिया को लेकर अगर कॉमन फैसिलिटी सेंटर गांव में या फिर कुछ एरिया को लेकर अगर वो स्थापित करती है जहां पर जो आधुनिक मशीन है जिससे जो छोटे उद्यमी हैं वो पैकेजिंग, लेबलिंग और क्वालिटी टेस्टिंग का काम यदि आसानी से वे कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे जो स्वदेशी उत्पाद है इसको हम एक उचित स्थान दे सकते हैं। साथ ही आपको पता भी होगा कि GI टैग जो होता है इंडिया में उससे क्या है कि एक निश्चित कर दिया जाता है कि यह भारत का प्रोडक्ट है, जिससे क्या है कि विदेश में भी इसका वैल्यू जो है वो बढ़ता है GI टैग के लगने से।
1: मतलब चुनौतियां तो हैं लेकिन अगर सही दिशा में काम हो तो इन्हें अवसर में बदला जा सकता है।
0: जी जी जरूर जरूर
1: जी। अब बात आती है उपभोक्ताओं की जागरूकता की। आज बाजार में अनेक विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में उपभोक्ता ये कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा उत्पाद वास्तव में स्थानीय और स्वदेशी है और खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: ये तो बहुत बढ़िया सवाल है। जागरूक उपभोक्ता हमें बनना ही चाहिए और खासकर जब बात हो स्वदेशी उत्पाद से संबंधित, तो भारत में जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड एक वैश्विक संगठन है जो कि हर एक देश को एक अलग बार कोड देता है जिसकी शुरुआत अलग अलग डिजिट से होती है, तो इंडिया में जब भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो जो स्थानीय जो प्रोडक्ट है या कह सकते हैं कि अपने देश के बने हुए हैं तो उसके बार कोड को यदि आप देखें और वो अगर 890 इससे अगर प्रारंभ होता है बारकोड का नंबर तो वो भारतीय प्रोडक्ट का निशानी है। साथ ही साथ आप जो पैकेट जो आपका बंद सामान है उसके पीछे यदि आप मैन्युफैक्चर्ड बाय मेड इन इंडिया देखते हैं तो वह भी निश्चित करता है कि वह आपके देश का ही प्रोडक्ट है। साथ ही यदि हम जैसे उदाहरण ले दार्जिलिंग की चाय है या बनारसी साड़ी है या कतरनी चावल जैसे सामान खरीद रहे हैं तो GI टैग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। GI टैग को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ वो इंडिया का सामान है और उसमें पूरा डिटेल दिया रहता है कि वो किस जिले का है, किस राज्य का है सामान, वो पता चलता है। इसके अलावा हम लोग जो हमारे साप्ताहिक बाजार लगते हैं या बीच बीच में जो मेला इत्यादि खादी मेला हो गया विभिन्न स्थानों पर लगते हैं, किसी प्रकार का मेला भी लगता है, तो वहां पर ज्यादातर जो लोकल सामान होते हैं उनकी बिक्री ही ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे बाजारों से भी कुछ सामान खरीदें तो इस अभियान को एक बढ़ावा मिल सकता है।
1: बिल्कुल सही जानकारी और समझदारी से की गई खरीदारी ही इस अभियान को सफल बना सकती है।
0: जी
1: बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सर आपने। अब जब घर की खरीदारी की बात आती है तो इसमें महिलाओं की भूमिका बेहद अहम होती है।
0: जी,
1: ऐसे में गृहिणियां इस अभियान को मजबूत बनाने के लिए क्या योगदान दे सकती हैं?
0: जी समाज में तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर एक पुरुष को जागरूक किया जाए तो वह उतना कारगर नहीं होगा जितना एक महिला को जागरूक कर दिया जाए। और आज महिलाएं जो है प्रायः मैं देखता हूं कि भारतीय घरों में रसोई रोजमर्रा का जो सामान है उसे खरीदने के लिए जाती है बाहर, लेकिन आज जो मॉल सिस्टम है जिसमें हर एक वस्तु एक स्थान पर मिल जाती है तो महिलाएं चाहती है आराम दायक स्थिति और इस कारण से वे मॉल में जाकर सामान खरीद लेती है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर वो स्थानीय चक्की या स्थानीय किराना दुकानों से सामान खरीदेंगी तो मुझे लगता है कि उनका योगदान इस चीज में अहम भूमिका निभा सकता है। आप त्योहारों में देख लीजिए जैसे सजावट का सामान ये महिलाएं ही इन सब चीजों को देखती हैं, या दीपावली इत्यादि पर्व में जैसा कि हम लोग विभिन्न त्योहारों में देखते हैं कि लोकल मार्केट में जो बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं वो कुछ सामान जो है बेचते हैं जो कि हस्तशिल्प होते हैं सामान, या फिर दीपावली इत्यादि के जो त्योहार होते हैं उसमें दिए इत्यादि या खेलने की जो वस्तुएं हैं वो भी आपको मिट्टी के बने हुए मिलते हैं। तो वहां पर यदि मान लेते हैं कि हम अगर अपने बच्चों के साथ जाते हैं और वहां पर उनको प्रेरित करते हुए वैसे सामान खरीदने को बताते हैं तो मुझे लगता है कि महिलाओं का योगदान जो है वोकल फॉर लोकल के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है।
1: बिल्कुल निश्चित रूप से, और गृहिणियों के साथ अगर युवा भी इससे जुड़ जाए तो इसका असर और भी

0: व्यापक हो सकता है।
1: जी
0: हाँ, क्योंकि युवा पीढ़ी नई चीजों को जल्दी अपनाती है। ऐसे में युवाओं को स्वदेशी उत्पादों और वोकल फॉर लोकल की भावना से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए?
1: देखिए, मुझे लगता है कि युवा वर्ग का मतलब आज के समय में आकर्षण है। यदि हम मॉल इत्यादि में देखे हैं तो जो जिस चीज से वो आकर्षित हो जाते हैं वो सामान लेते हैं। तो
0: जी
1: यदि हस्तशिल्प या स्थानीय स्तर पर जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वो खाने का सामान हो या पहनने का या खेलने का हो, इसको यदि हम लोग एक आकर्षक ढंग देते हैं, आकर्षक रूप से उसका निर्माण करते हैं या उसकी पैकेजिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि वैसे सामान को खरीदने के लिए युवा वर्ग भी आकर्षित होगा और यह स्वदेशी सामान के प्रति उनके लिए जागरूकता ही है। सोशल मीडिया के दौर में हम आज कुछ ऐसा रील्स या वीडियो बनाया जा सकता है जिससे भावनात्मक रूप से जो युवा वर्ग है
0: जी
1: वो जुड़कर स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए जागरूक हो। मतलब जागरूकता के लिए हम एक ऐसा वीडियो बना सकते हैं जिससे युवा वर्ग जो है वो इन सब वस्तुओं के प्रति भी आकर्षित हो।
0: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार आपने साझा किए। अब चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपका कोई खास संदेश जो आप देना चाहें?
1: जी जरूर, संस्कृत में एक श्लोक है मनुस्मृति में, उसकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। इसका अर्थ हुआ कि यदि हम दूसरे के वश में रहते हैं तो यह दुख है और अपने वश में रहते हैं तो यह सुख है।
0: जी
1: इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम भारत देश के प्रोडक्ट यानी कि अपने वश में यानी अपने देश के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, सामान को खरीदते हैं, तो यह ही सुख है। और वोकल फॉर लोकल अभियान जो है वह खुद को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का अभियान है। तो हम सभी अपना सहयोग कर गौरवान्वित होने का काम करें। मैं आकाशवाणी को इस सुंदर प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने और वोकल फॉर लोकल इस अभियान को प्रेरित करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ।
0: जी, गोपाल कृष्ण जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी।
2: मैंने अभी सुन रही थी भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय था वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी खरीदें। भेंटवार्ताकार थे गोपाल कृष्ण दुबे और उनसे बातचीत की थी हमारी रेडियो सखी रानी शुक्ला। और रानी, आगे अब क्या है बताओ?
0: आगे बहनों को ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

और रानी बहनों से बात करेंगे जानकारी के तहत भारत के संविधान के बारे में। बहनों, संविधान जिसे हम भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं, किसी भी देश की पहचान

0: उसके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये।
1: बहनों, ये केवल एक कानूनी किताब नहीं है बल्कि ये हमारे देश के मूल्यों, नैतिकताओं और सामाजिक न्याय का प्रतीक है।
0: भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और यह दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है। इसमें न केवल नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन है बल्कि यह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का समाधान भी प्रस्तुत करता है।
1: हाँ बहनों, संविधान का महत्व इस बात में निहित है कि ये हमारे नागरिकों को एक समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आधार प्रदान करता है।
0: संविधान हत्या दिवस जैसा कि आज है, हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करता है ताकि कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए।
1: बिल्कुल, संविधान का महत्व केवल एक कानूनी दस्तावेज तक सीमित नहीं है बहनों, बल्कि ये हमारे देश की आत्मा है। ये हमें एकजुटता, समानता और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है।
0: बिल्कुल, हमारा संविधान ने हमें यह न केवल अधिकार दिए हैं बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का एहसास भी कराया है। संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके मूल्यों का सम्मान करें और इसे लागू करने में मदद करें।
1: हाँ बहनों, ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम संविधान के माध्यम से एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण करें।
0: बहनों, अपने संविधान से हमें प्रेम करना चाहिए, गर्व होनी चाहिए और इसकी जानकारी सभी को रखनी चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल शिल्पी, और इसी के साथ अब कार्यक्रम का समय सम्पन्न होने को है और अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। और चलने से पहले आपको बता दें बहनों कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की,
0: और आज अपने कार्यक्रम की दोनों सखियों को यानी कि मैं शिल्पी
1: और रानी को दे
0: इजाजत। नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत का। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ஸ்வயமிதி கட்டுப்படை பாரதிய சேனா.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम. शुरुआत करते हैं फिल्म उजाला की इस गीत से. आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है. शब्दों में पिरोया है हसरत जयपुरी ने, संगीत पर किया शंकर जय किशन ने.

अगला गाना सुनते हैं फिल्म रात और दिन से, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, शब्द रचना शैलेंद्र के, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

अभिजीत की आवाज में सुनते हैं फिल्म जोश से ये गाना। इस गीत को लिखा समीर ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा फिल्म खुद गर्ज से नितिन मुकेश की आवाज, इंदिवर का लिखा हुआ और संगीत व्यक्त किया हुआ राजेश रोशन का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा

0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जाँच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to excesses in the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution. Minister Dr. S. Jayashankar has said the world is witnessing greater weaponization, higher risk-taking and politics suited to the social media era. Addressing the Jeju Forum for Peace and Prosperity 2026 in South Korea, Dr. Jayashankar said international cooperation is needed to confront challenges like COVID-19, acts of terrorism or the impact of extreme climate events.
2: The global south should be enabled with greater capacity and greater opportunities. This would also create new factors of global growth and provide global goods through common and shared endeavors. We cannot rely on a few to uphold rules and norms. The world must take more control over its own future.
1: Union Minister of Power Manohar Lal has said that India seeks to strengthen BRICS cooperation towards building energy systems. Inaugurating the 11th meeting of BRICS energy ministers in Gurugram today, the minister said affordable, reliable and sustainable energy is indispensable for achieving developmental aspirations and the sustainable development goals.
3: Future energy systems must balance sustainability with reliability. India is making significant investments across the entire energy value chain. India is laying the foundation for one of the world's largest digitally enabled electricity systems. More than 60 million smart meters have already been deployed, and this transformation will continue at scale in the coming years, empowering consumers while strengthening utility performance.
1: Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu today inaugurated the first Easy Connect flight from Varanasi's Lal Bahadur Shastri International Airport in Uttar Pradesh. The first hub and spoke flight connecting Varanasi to the world via Delhi is aimed at linking the length and breadth of India seamlessly with the world and vice versa. Speaking on the occasion, the minister said the new hub and spoke model paves the way for a monumental shift in how citizens travel. Air Chief Marshal Amarpreet Singh today released the memoir of Group Captain Shubhanshu Shukla, The Second Orbit, Belief of a Man, Dreams of 1.4 Billion Hearts, in New Delhi. The event commemorated the first anniversary of Group Captain Shukla's landmark Axiom 4 mission, which was launched on the 25th of June last year. Addressing the media, Air Chief Marshal Amarpreet Singh emphasized that the book will be a great motivator for the coming generation. The Enforcement Directorate ED today conducted search operations at multiple premises in Ghaziabad and Delhi in connection with a land fraud and money laundering case involving Sandeep Singh, promoters of Shrashth Prop Build Private Limited and office bearers of Seva Suraksha Sahakari Awas Samiti. ED official said the accused allegedly induced members of the housing society to surrender their rights over approximately 41,554 square meters of land located at Akbarpur Bahrampur in Ghaziabad, Uttar Pradesh, by promising residential flats under a redevelopment project. In Venezuela, a state of emergency has been declared following back-to-back earthquakes of 7.2 and 7.5 magnitude that caused multiple buildings to collapse in Caracas and surrounding areas this morning. Addressing the nation, President Delcy Rodriguez announced the suspension of classes for students and non-essential activities until further notice. The president said 32 people have died and more than 700 have been injured following a series of powerful earthquakes. Rescue and recovery operations are underway in the affected regions. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed sorrow over the devastation caused by the severe earthquakes. And with that, we end this news bulletin.
4: Akashwani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का बताया सबसे काला अध्याय। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों की दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के चैपवन मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह में हुए शामिल। नव प्रशिक्षित जवानों के लिए दीक्षांत सलामी। वन्य जीव अपराधों की रोकथाम को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की रांची में समन्वय बैठक। तस्करी रोकने के लिए डाक कुरियर और सभी परिवहन मार्गों पर निगरानी बढ़ा ने के निर्देश। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर बर्ड स्ट्राइक रोकने के लिए कड़े कदम। बिरसा चौक और हीनू में खुले में मांस मछली बेचने वालों पर होगी सख्त प्रशासनिक कार्रवाई। और रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद अचानक बदला मौसम, गरज के साथ झमाझम बारिश। मौसम केंद्र ने खूंटी, बोकारो और रामगढ़ के लिए भी जारी किया वज्रपात का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले सभी नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय और संविधान पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि इस दौर ने उन अनगिनत नागरिकों के असाधारण साहस को उजागर किया जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि देश न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति का 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैपवन मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नव प्रशिक्षित आरक्षियों के दीक्षांत पासिंग आउट परेड की सलामी ली। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जांबाज जवानों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नए जवानों का हौसला बढ़ाया और उन्हें ईमानदारी व निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की सीख दी। धनबाद के कोयला नगर कम्युनिटी हॉल में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने सुशासन, विकास और गरीब कल्याण को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई।
6: 12 वर्ष में आदरणीय मोदी जी, उन्होंने गरीब कल्याण योजना चलाकर, चाहे वो 81 करोड़ गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज हो, आयुष्मान 5 लाख रुपया निःशुल्क इलाज का मामला हो, उज्ज्वला गैस सिलेंडर देना हो, या फिर घर घर नल जल लागू करके 25 करोड़ लोग गरीब को आज गरीबी रेखा से बाहर हो, ये यात्रा 2047 तक चलाते रहनी है।
4: रांची में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने वन्य जीव तस्करी रोकने के लिए हवाई, रेल, सड़क मार्गों समेत डाक व कुरियर सेवाओं पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों से आपस में सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान सुनिश्चित करने को कहा। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर बर्ड स्ट्राइक रोकने के लिए विमान पतन पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में कई कड़े फैसले लिए गए हैं। हवाई अड्डे के आसपास विशेष रूप से बिरसा चौक और हीनू क्षेत्र में खुले में मांस मछली बेचने वाले अनाधिकृत केंद्रों और बुच्चड़खानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पक्षियों को आकर्षित होने से रोकने के लिए नगर निगम को खुले नालों को जल्द ढकने और ऊंची इमारतों पर अवरोधक लाइटें लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के मुरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से आज युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए एक विशेष जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। पर्यटन और खेलकूद मंत्री सुदिव्य कुमार ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री ने आगाह किया कि नशा आज युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती है जो पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है।
7: अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर झारखंड ने शुरू की है। यह हर कदम इस बात का संकल्प है कि झारखंड को हम मादक पदार्थों से बचाकर रखेंगे और साथ ही साथ अपने झारखंड को बेहतर सशक्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
4: दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड की गोविंदपुर पंचायत में किसानों ने सामूहिकता से समाधान की एक अनूठी मिसाल पेश की है। दो गांवों के किसानों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर जेसीबी मशीन की मदद से जल निकासी नाली को साफ कराया है। इससे क्षेत्र के करीब 150 बीघा जमीन से जल जमाव की समस्या दूर हुई है और 6 वर्षों के बाद यह भूमि दोबारा खेती के योग्य बन सकी है। किसानों के इस सामूहिक प्रयास को पूरे जिले में सराहना हो रही है। राज्य सरकार ने बोकारो जिले के चंदन कियारी स्थित पर्वतपुर और सीतानाला कोल ब्लॉक के खनन पट्टा को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा दी गई इस स्वीकृति से दोनों ब्लॉकों के विशाल क्षेत्र में खनन गतिविधियां शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और युवाओं में खुशी का माहौल है।
8: चंदन कियारी में दो कोल ब्लॉक खुला, एक पर्वतपुर एक सीतानाला। तो सीतानाला में जो रहत है जमींदाता है उनको भी उसी रूप से नौकरी मिलेगा जिस रूप से यहाँ पर कोल ब्लॉक में मिलना है। इसमें पिछला एक साल हमारा काफी मेहनत किए हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही योगदान है और उनके योगदान के तहत ही आज कोल ब्लॉक का स्वीकृति हुआ है जिसमें हमारा सीतानाला भी एड हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि।
4: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 500 अंक की उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1

तैराकी प्रतियोगिता का समापन हो गया। छत्तरमांडू इंदौर स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में विधायक ममता देवी, उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का बताया सबसे काला अध्याय। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के जैप वन मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह में हुए शामिल। नव प्रशिक्षित जवानों की ली दीक्षांत सलामी। वन्य जीव अपराधों की रोकथाम को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की रांची में समन्वय बैठक। तस्करी रोकने के लिए डाक, कुरियर और सभी परिवहन मार्गों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर बर्ड स्ट्राइक रोकने के लिए कड़े कदम। बिरसा चौक और हीनू में खुले में मांस मछली बेचने वालों पर होगी सख्त प्रशासनिक कार्रवाई। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में दोपहर बाद अचानक बदला मौसम, गरज के साथ झमाझम बारिश। मौसम केंद्र ने खूंटी, बोकारो और रामगढ़ के लिए भी जारी किया वज्रपात का येलो अलर्ट। अंत में इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं शिप्रा बोस। इनसे सुनेंगे दादरा और ठुमरी।

अभी आप शिप्रा बोस से दादरा और ठुमरी सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में सुनते हैं चंद गजलें, कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। पहले सुनते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये गजल।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आइए सुनते हैं अश्के अंबलवी की लिखी ये गजल, आवाज मिताली सिंह की।

मिताली सिंह के गाए इसी गजल के साथ सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
1: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
2: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
1: The global south should be enabled.
3: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
2: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति पति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं। देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से। गीत संगीत और गायक गायक कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: डट पड़े भारतीय सेना।
1: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में फिल्म एलोसी कारगिल से ये गाना।

फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं फिल्म परदेसी बाबू से ये गाना। गीत संगीत और गायक आनंद राज आनंद।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म बॉर्डर से। आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक की है, शब्द रचना जावेद अख्तर के, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड में नशा मुक्ति अभियान के तहत आज रांची की बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मंत्री सुदिव्य कुमार ने जागरूकता मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और विजेताओं को पुरस्कृत किया। नशा मुक्ति में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। मैराथन में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के युवाओं ने हिस्सा लिया और हर कदम के साथ झारखंड को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से बचाने का संकल्प लिया।
1: अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर झारखंड में शुरू की है। यह हर कदम इस बात का संकल्प है कि झारखंड को हम मादक पदार्थों से बचा कर रखेंगे और साथ ही साथ अपने झारखंड को बेहतर सशक्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
0: उपराजधानी दुमका में मादक पदार्थों के सेवन और उसके दुष्प्रभावों के प्रति आमजन विशेषकर युवाओं के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज मिनी दौड़ का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना करते हुए कहा कि जागरूकता ही नशा उन्मूलन का सबसे प्रभावी माध्यम है। मिनी दौड़ में शामिल प्रतिभागियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए संकल्प लिया तथा लोगों को मादक पदार्थों से दूर रहने का संदेश दिया। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अहमदाबाद, हैदराबाद और गुवाहाटी को देवघर से जोड़ने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दिसंबर तक इन तीनों शहरों के लिए देवघर से सीधी उड़ान शुरू होगी। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलकर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा कि हर साल गुजरात और राजस्थान से बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु यहां आते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत खनन अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित सहायक खान सर्वेक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल प्रतिभागियों को स्किल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 90 युवाओं को प्रमाण पत्र दिए गए। संस्थान के उपनिदेशक डॉ. धीरज कुमार ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना भी है।
2: हमारी जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनके तरफ से डायरेक्शन आया था कि आप तो इंजीनियर को पढ़ा ही रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट करा ही रहे हो, बट अपने समाज के आसपास जो 12th पास आउट बच्चे हैं, जो आईटीआई पास आउट बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कोर्स करो जिसके तहत उनको कुछ नौकरी मिलने की संभावना हो जाए। कि माइन सर्वेइंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे ये सर्वेयर माइनिंग में भी काम कर सकते।
0: गोड्डा के पत्थरगामा थाना क्षेत्र में आज राष्ट्रीय राजमार्ग 133 पर एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित दनुआ घाटी में एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। घटनास्थल पर पहुंची चौपारण थाना पुलिस और एनएचएआई की एम्बुलेंस टीम ने ट्रेलर में फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। धनबाद में शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम संपन्न कराने को लेकर पुलिस सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता

0: दी जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधि पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। त्योहार के दौरान आम लोगों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी W थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और W सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@CIET.NIC.IN है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधेका के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधेका जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
2: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
3: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
2: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
3: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधेका।
2: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
3: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
2: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बिजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेटी ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
1: जी
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
3: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
2: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
3: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
2: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
3: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
5: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
3: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
2: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
6: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
3: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
7: नमस्कार।
3: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
7: जी,
3: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं।
7: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं
3: जी,
7: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
3: जी,
7: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
3: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
7: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
3: युगल और सहभागिता पद्धति
7: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
3: जी,
7: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
7: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
3: हाँ हाँ, बताइए।
7: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
3: प्रश्नोत्तरी पद्धति
7: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
3: अच्छा।
7: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
3: जी,
7: वो बहुत ही शानदार है।
3: अच्छा
7: जी।
3: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
3: गिजू भाई ने

0: विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनिंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज। शुरुआत करते हैं फिल्म नैया के इस गाने से। आवाज ये सुदास की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सफर से ये गाना। इस गाने को लिखा इंदवर ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले से ये गाना। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की है, शब्दों में पिरोया है समीर ने, संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म साजन की बाहों में। आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज है, समीर की रचना, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड में नशा मुक्ति अभियान के तहत आज रांची की बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मंत्री सुदिव्य कुमार ने जागरूकता मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई, विजेताओं को पुरस्कृत किया और नशा मुक्ति में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। गुमला में उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने बैठक में संबंधित अधिकारियों तथा सीएसआर प्रतिनिधियों को दिव्यांगजनों के लिए बैटरी चालित व्हील चेयर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बेंच डेस्क की कमी दूर करने तथा 26 नए आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के मेदिनीनगर पांकी मुख्य पथ स्थित पोखराहा चौक के पास सड़क दुर्घटना में करार निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने आज पुलिस चौकी पर हमला कर जवानों के रहने के लिए लगाए गए टेंट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और गुजरात के सूरत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत के बाद आज सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित संबंधित पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपनी के बाहर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। शव को लेकर धरने पर बैठे लोगों ने संबंधित कंपनी से मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। वाचन एवं सहयोग वसंत कुमार, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

0: नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह हम आज फिर से ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या क्या नई जानकारी लेकर आए हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं गर्मी में विद्युत उपकरणों का सावधानी से क्यों उपयोग करना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और चुनौतियों के बारे में। इसके बाद बारी होती है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पार्क्स के बारे में। इसके बाद बारी होगी खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपसे जानकारी साझा करेंगे स्टेनलेस स्टील का आविष्कार कैसे हुआ इसके बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गर्मी में विद्युत उपकरणों का सावधानी से क्यों उपयोग करना चाहिए इसके बारे में। हम अपने जीवन में विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे जीवन को सुलभ बना सके और हमें सुविधा प्रदान कर सके। लेकिन जब यही चीज हम जैसे तैसे इस्तेमाल करने लगे और इनका रखरखाव ठीक से न करें तो ये उपकरण हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। गर्मी का मौसम आते ही सबसे पहले हम बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करने के बारे में सोचते हैं और इसका इस्तेमाल काफी मात्रा में करने लगते हैं। पंखे, कूलर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, पानी की मोटर, चार्जर और अन्य तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम दिन रात चलाते रहते हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही न केवल उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि आग लगने, शॉर्ट सर्किट और बिजली के झटके जैसी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती है। गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ने के कारण बिजली के तार और उपकरण अधिक गर्म हो जाते हैं। यदि वायरिंग पुरानी हो या उपकरण खराब स्थिति में हो तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सभी विद्युत उपकरणों के नियमित जांच और रखरखाव बहुत आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि लोग एक ही मल्टीप्लग या एक्सटेंशन बोर्ड में कई उपकरण लगाकर एक साथ जोड़ देते हैं। इससे बिजली का भार बढ़ जाता है और तार गर्म होकर शॉर्ट सर्किट का कारण बन जाते हैं। इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही उपकरणों का उपयोग करना चाहिए और ओवरलोडिंग करने से बचना चाहिए। एयर कंडीशनर, कूलर और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों की समय समय पर सफाई और सर्विसिंग करानी बहुत आवश्यक है। धूल जम जाने से इनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है और बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। साथ ही उपकरणों के अधिक गर्म होने का खतरा भी बना रहता है। मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। चार्जिंग पूरी होने के बाद चार्जर को बिजली के सॉकेट से निकाल देना चाहिए, लेकिन कई बार हम ऐसी चीजों को नजरअंदाज करते हैं और चार्जर को लगा हुआ छोड़ देते हैं, यानी चालू अवस्था में ही छोड़ देते हैं। इससे होता यह है कि बिजली उसमें निरंतर चलते रहती है और अनजाने में ही दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। यदि किसी उपकरण से चिंगारी निकल रही हो या जलने की गंध आ रही हो या असामान्य आवाज भी आ रही हो तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए और किसी प्रशिक्षित तकनीशियन से उसकी जांच करवानी चाहिए। गर्मी के मौसम में पानी और बिजली का संपर्क भी खतरनाक साबित हो सकता है। गीले हाथों से कभी भी बिजली के स्विच या उपकरणों को न छुएं। पानी की मोटर, कूलर या अन्य उपकरणों का उपयोग करते समय ये बात ध्यान में रखें कि बिजली के तार सुरक्षित और सूखे हों। थोड़ी सी सावधानी हमें बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकती है। इसलिए गर्मी के मौसम में विद्युत उपकरणों का उपयोग समझदारी और सतर्कता से करनी चाहिए। तो ये हमने आपसे बातचीत कर ली कि गर्मी में विद्युत उपकरणों का सावधानी से हमें क्यों उपयोग करना चाहिए इसके बारे में। अब बारी भेंटवार्ते के, और भेंटवार्ता में आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो है मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और इससे जुड़ी हुई चुनौतियां। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर अभिषेक आनंद और उनसे बातें कर रहे हैं प्रभु शरण।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रभु शरण आपका स्वागत करता हूं इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और उससे जुड़ी चुनौतियां। बदलते मौसम, बेमौसम बारिश, हीट वेव, तूफान, ये सब अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में मौसम का सटीक पूर्वानुमान न केवल हमारी सुविधा का प्रश्न है, बल्कि यह कृषि या आपदा प्रबंधन, यातायात और आम जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें कौन सी तकनीकें काम करती हैं और किन चुनौतियों से जूझना पड़ता है मौसम वैज्ञानिकों को, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रांची मौसम विभाग के निदेशक और अनुभवी मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जी, जिनसे हम जानेंगे कि मौसम की दुनिया के पीछे कैसा चलता है विज्ञान और तकनीक का पूरा संसार। हम अभी अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार सर।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि मौसम पूर्वानुमान से क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है और इसके पीछे का जो विज्ञान है, जो सिद्धांत है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, कोई भी जो पूर्वानुमान होता है उसका एक खास मकसद होता है, वो मकसद है प्लानिंग। पूर्वानुमान मतलब अगर पहले से आपको आइडिया हो गया है कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग करते हैं, गतिविधियां उसके हिसाब से आप अपने आप को थोड़ा सा ढालते हैं कि जो चुनौतियां आने वाली हैं उसको आप अच्छे से निपट पाए। तो मौसम विज्ञान में भी यही है, मौसम पूर्वानुमान का मतलब हो गया कि मौसम आधारित आपको प्लानिंग करना है, क्योंकि मौसमी जो गतिविधियां हैं उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, बस उन गतिविधियों से जानकारी प्राप्त करके आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि वो जो मौसमी गतिविधियां हैं, चाहे साइक्लोन हो, भारी बारिश हो, हीट वेव हो, कोल्ड वेव हो, तो जिससे आप जानकारी प्राप्त करके अपना जो काम है उसके हिसाब से कर सकते हैं, अपना प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो मौसम पूर्वानुमान है ये हर एक क्षेत्र में अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल रखता है। एक आम जन से लेके किसान से लेके विमान पतन से लेके रेलवे से लेके टूरिज्म से लेके माउंटेनियरिंग से लेके पिलग्रिमेज से लेके जो भी आयाम हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मौसम का एक रोल है। हमारा क्या क्लाइमेट होगा, क्या पहनावा होगा, क्या खान पीन होगा, कैसा मौसम रहता है, तो वो सब सारा कुछ जो है उससे हमारा क्लाइमेट बनता है और उससे हमारा जो रोजमर्रा का जीवन है वो भी प्रभावित होता है।
1: तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हम या तो काम पर निकल रहे हैं, किसान अपने खेत में जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि अगर आप ट्रैवल में हैं या टूरिज्म कहीं आप टूर कर रहे हैं, तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है कि भाई मौसम कैसा है उसके अनुसार अपनी प्लानिंग करें। आम लोगों के लिए ये बात तो जरूरी है, लेकिन आम लोग ये नहीं जानते कि यह किस सिद्धांत पर इस पूर्वानुमान किया जाता है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। कैसे आप लोग ये तय करते हैं कि आने वाला जो समय है या आने वाले घंटे में बारिश हो सकती है या मौसम में क्या बदलाव आ सकता है?
2: तो देखिए, एक इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रिंसिपल है, जब तक आप किसी चीज को नापते नहीं आप उसके बारे में जानते नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बुखार है तो आप थर्मामीटर से नापेंगे, आपकी हाइट क्या है तो आप उसको लेंथ में मेजर करेंगे, टेप से मेजर करेंगे कि कितना लेंथ है। उसी तरीके से अगर मौसम के बारे में जानना है, उसका क्या आगे में हो सकता है, तो उसके लिए अभी का मौसम जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो मौसम पूर्वानुमान एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अभी की क्या स्थिति है उसके आधार पर हम लोग आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने की संभावना है। तो मौसमी पैरामीटर जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में ही आप ह्यूमिडिटी भी जोड़ लीजिए और साथ में रेनफॉल, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, क्लाउड कवर, तो ये सब जो बेसिक पैरामीटर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, उसके आधार पर ही आप आने वाले समय में बता पाएंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स पूरे विश्व भर में कलेक्ट होते हैं, अगर भारत की बात करें तो पूरे भारत भर में कलेक्ट होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटा, आप जो जमीन पे नाप रहे हैं उसको सतही हम लोग वेधशाला कहते हैं, जिसमें इंसान जाके ये सारे पैरामीटर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन आदमी नापता है, तो सतही वेधशाला हो गया, मैनुअल ऑब्जर्वेटरी हो गया। इसी में अगर ये ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा खुद ही नापा जा रहा है और डेटा भेजा जा रहा है तो ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम हो गया, वेदर स्टेशन हो गया। तो जो मौसम बनता है वो लैंड, ओशन, एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन से बनता है। मतलब आप सीधे भाषा में समझिए कि जमीन, आसमान और आसपास में जो आपका कोई समुंदर है उससे कितनी दूरी है, क्या है, उस हिसाब से आपका जो मौसम है वो आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखते हैं जो कोस्टल इलाका होता है वो मॉडरेट वेदर सिस्टम रहता है, मतलब वहाँ जो टेम्परेचर है पूरे साल भर में बहुत ज़्यादा उसमें भिन्नता नहीं देखने को मिलती है। वही आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में टेम्परेचर गर्मी में 50 से ज़्यादा हो जाता है और ठंडों में नेगेटिव भी चला जाता है, तो कितनी भिन्नता है। जबकि आप ये कोस्टल सिटीज़ में देखेंगे तो ये भिन्नता नहीं देखने को मिलती है। तो आपको सब जगह नापना है। तो जमीन में हमने नाप लिया सतही वेधशाला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से। आसमान में नापने के लिए हम लोग एक हाइड्रोजन बैलून छोड़ते हैं जिसमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं और ये जीपीएस के थ्रू हम लोग ट्रैक करते हैं। साथ में ये जो सेंसर का डेटा है हमारे अर्थ स्टेशन पे जो ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे एंटीना है, वहाँ पे वो डेटा पर सेकेंड पे आता रहता है। तो कितना ऊपर जा रहा है और हर एक प्रेशर लेवल पे क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या विंड स्पीड है, क्या विंड डायरेक्शन है, ये सारे पैरामीटर्स आते हैं। और इनके आधार पे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर भी हम लोग निकाल पाते हैं जिससे ये संभावना बताई जाती है कि आज गर्जन वज्रपात की क्या स्थिति बन रही है, ओलावृष्टि की क्या स्थिति बन रही है। और ये डेटा आपको एविएशन में भी यूज में आता है। साथ में रिमोट सेंसिंग में हम लोग रडार और सेटेलाइट का यूज कर रहे हैं। तो बैठे बैठे रडार से एक स्टेशन से आप अगर एस बैंड रडार है तो 250 किलोमीटर, सी बैंड रडार है तो 150 किलोमीटर का एरिया को आप नाप सकते हैं। नापने का अर्थ हो गया कि जो बादल जो बन रहे हैं उन बादलों में कितना पानी है, कितना उसमें बर्फ के कण है, उस बादल के मूवमेंट किस दिशा में हो रही है, उसमें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग करने का कितना पोटेंशियल है, तो इस हिसाब से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी तरीके से 24 घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग सेटेलाइट यूज करते हैं जिसमें जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो होता है वो 24/7 आपको अर्थ को देख रहा होता है, खासकर भारत को देख रहा होता है जो इनसैट 3D ने लॉन्च किए हैं। और फिर अगर हम लोग बात करें तो पोलर ऑर्बिटिंग सेटेलाइट भी होता है, तो इन सेटेलाइट की मदद से भी जैसे भारत को हम लोग स्कैन कर रहे होते हैं और अलग अलग चैनल होते हैं, इंफ्रारेड चैनल 24 घंटे अवेलेबल होता है और विजिबल चैनल दिन में अवेलेबल होता है, वाटर वेपर चैनल 24 घंटे अवेलेबल होता है। तो इन सब के मदद से जो डेटा हमको प्राप्त हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा। अब ये डेटा का क्या करेंगे, तो ये डेटा को हम लोग सुपर कंप्यूटर्स में डालते हैं। सुपर कंप्यूटर्स में डालते हैं इसलिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सघन डेटा होता है और ये पूरे इंडिया का डेटा, अगर सिर्फ इंडिया का फोरकास्ट कर रहे हैं, रीजन का फोरकास्ट कर रहे हैं तो रीजनल डेटा हो गया, इसे वर्ल्ड का फोरकास्ट कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड का डेटा हो गया। तो डेटा की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और आप जानते हैं सेटेलाइट रडार का इमेज का भी साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो ये डेटा काफ़ी सघन्य होता है। और इस डेटा को हम लोग सुपर कंप्यूटर में डालते हैं। सुपर कंप्यूटर में फिजिक्स के प्रिंसिपल लगे होते हैं, जैसे कि एयर पार्सल है इसका मूवमेंट किस हिसाब से होगा, कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर कैसे होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे होगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ये जो इक्वेशंस बनते हैं, जो फिजिकल और मैथमेटिकल इक्वेशन आप जिसको समझते हैं, तो उन इक्वेशंस में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम समझ के ये डेटा इंटर की जाती है। और आप एक इजी भाषा में समझिए कि जैसे कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं कि आप आगे के समय के लिए बता सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग इसको आगे के समय के लिए कि अगले 12 घंटे में क्या होगा, अगले 24 घंटे में क्या होगा, अगले 36 घंटे में क्या होगा, 10 दिन में क्या होगा, तो अलग अलग रेंज का अलग अलग पूर्वानुमान होता है। शॉर्ट रेंज जो पूर्वानुमान है 3 दिन के लिए वैलिड होता है, मीडियम रेंज पूर्वानुमान है 10 दिन के लिए वैलिड होता है, एक्सटेंडेड रेंज 1 महीने के लिए होता है, सीजनल होता है 1 सीजन से लेकर साल भर तक का ये पूर्वानुमान देता है। तो ये जो मॉडल्स है जो हम लोग को ये जो आउटपुट निकला है ये मॉडल गाइडेंस इसको कहते हैं। तो जैसे ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम हो गया एक मॉडल है, ECMWF एक मॉडल है, तो इस टाइप के जो मॉडल्स होते हैं। इसी तरीके से आपने भारत फोरकास्टिंग सिस्टम अभी नाम सुना होगा, तो ये भारत का अपना मॉडल है जो कि 6 किलोमीटर के एरिया का मतलब 6x6 36 किलोमीटर का फोरकास्ट देता है। अभी तक जितने भी पुराने मॉडल थे वो 12x12 144 किलोमीटर या 9x9 81 किलोमीटर के देते थे, अभी ये भारत फोरकास्टिंग सिस्टम इंडिया का अपना है जो 6x6 मतलब 36 किलोमीटर का अगर स्क्वायर एरिया बोले तो उसके लिए फोरकास्ट वैलिड रहता है। तो इस हिसाब से पूर्वानुमान किया जाता है।
1: बहुत ही विस्तार में आपने बताया कि किस तरह से इस पूरे जो क्रम है, ये जो पूर्वानुमान का पूरा जो विज्ञान है वो किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है और कितने सारे डेटास की जरूरत होती है, उसको एनालाइज किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, फिर वैज्ञानिकों के द्वारा उसको देखा जाता है कि ये कितना मतलब सटीक है। इसकी सटीकता की अगर बात करें, विश्वसनीयता की बात करें, क्योंकि लोगों में एक आम धारणा है कि भाई मौसम है, इसके बदलने को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता कि मौसम क्या बदलेगा, कब कैसा करवट लेगा। तो अब जो ये पूरा विज्ञान है, मौसम विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित, इसको आप कितना सटीक मानते हैं, इसकी विश्वसनीयता को कितना सही मानते हैं?
2: देखिए मीडियम रेंज फोरकास्ट जो 7 दिनों का होता है वो काफ़ी सटीक होता है। उसमें से भी अगर हम लोग बोले तो 5 दिन का बहुत सटीक होता है, जितना हम लोग कम आते हैं ना 3 दिन का और सटीक होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग का जो 3 दिन का फोरकास्ट है, डे वन का फोरकास्ट है, वो 95% के आसपास में सटीक होता है। डे टू का फोरकास्ट है वो थोड़ा सा कम होते हुए 85-90 होता है। डे थ्री में आपको 80% के अप्रॉक्स में सटीक होता है। जैसे हम लोग दूरी बढ़ाते जाते हैं ना, क्योंकि आज के दिन में मौसम पूर्वानुमान सबसे चुनौतीपूर्ण विषय हो गया है, क्योंकि वेदर इतना डायनेमिक हो गया, क्लाइमेट चेंज के कारण वेदर इतना डायनेमिक हो गया है कि ऐसा नहीं हो सकता है ना कि हम लोगों ने आज फोरकास्ट दिया है और अगला फोरकास्ट 7 दिन बाद दें। एक ही दिन में हो सकता है कि मौसम बदलाव के कारण हमें शाम को अपडेशन करना पड़ता है कि हाँ हमने जो दिया था इस आधार पे दिया था, बट अभी बदलाव हो गया तो हम लोगों को भी चेंज करना पड़ता है। तो थोड़ा डायनेमिक तो एकदम हो गया है क्लाइमेट चेंज के कारण, इसमें चुनौतियां बहुत ज्यादा हो गई। आप इसीलिए देखिए कि एक तो डेटा का डेंसिटी इतना ज्यादा है, और जितने सब जो अच्छे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो इसमें लगाए जाते हैं, और फिजिक्स और इम्प्रूव हो रही है, डेटा का डेंसिटी मतलब ऑब्जर्वेशन आपका और डेंस हो रहा है, बट चुनौतियां अभी भी इसलिए है कि क्लाइमेट चेंज बहुत फास्ट है।
1: मतलब अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो मौसम का बदलना वो जितने डेटाज होते हैं सिर्फ उन्हीं पर निर्भर नहीं होता है, ये जो क्लाइमेट चेंज वाला एक फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो है विघ्न डाले, या इसमें एक जो भी परिवर्तन आता है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंजेस के फिर बहुत सारा पैरामीटर्स है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि आप लोगों के सामने चुनौतियां भी बहुत मतलब अधिक है।
2: आप इसी हिसाब से समझिए कि देखिए क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं हैं हाल के सालों में बढ़ी हैं, तो ये बहुत लोकलाइज्ड फेनोमेना है, और ये फेनोमेना को पकड़ने के लिए आपको बहुत डेंस नेटवर्क चाहिए, ठीक है। और दूसरा

0: देखिए, एक हिस्से में अच्छी बारिश हुई, दूसरे हिस्से में बारिश नहीं हुई, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब देखिए बादल तो गुजर रहा है, अब वो बादल यहाँ बारिश तो दिया है बट आगे बारिश नहीं दे रहा है, उसके और आगे दे रहा है, तो ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। रडार से आप देख सकते हैं कि बादल में कितनी बारिश होने की प्रॉबिलिटी है, बट वो बारिश यहीं पर होगा कि 10 किलोमीटर बाद होगा कि 50 किलोमीटर बाद होगा, ये अभी भी चुनौती का विषय बना हुआ है।
1: जो मौसम पूर्वानुमान का क्षेत्र है, इसमें काफी चुनौतियां भी हैं, और आपके माध्यम से हमने श्रोताओं को प्रयास किया है ये बताने का कि मौसम पूर्वानुमान का महत्व क्या है या किस तरह से आम जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष संवाद में हमने जाना कि मौसम पूर्वानुमान केवल बादलों को देख लेने या अनुमान लगा लेने भर की बात नहीं, बल्कि इसके पीछे है उन्नत तकनीक, वैज्ञानिक गणनाएं और निरंतर शोध। मौसम वैज्ञानिकों की जो मेहनत है और चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, और अभिषेक जी, आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक ये बात पहुंची तो हमारे स्टूडियो में आकर काफी समय दिया इसके लिए, और मैं समझता हूँ हमारे श्रोता काफी लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे यहाँ आए।
2: तभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता में मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और चुनौतियां क्या हैं इसके बारे में। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद, और उनसे बात कर रहे थे प्रभु शरण। तो इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, और आज हम जिस महान वैज्ञानिक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर पार्क्स। आज हम आपको विज्ञान और आविष्कार की दुनिया के एक ऐसे महान व्यक्तित्व से परिचित करा रहे हैं जिनके एक महत्वपूर्ण आविष्कार ने आधुनिक औद्योगिक युग की नींव रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये महान वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर पार्क्स। इन्हें दुनिया का पहला व्यवहारिक कृत्रिम प्लास्टिक विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। अलेक्जेंडर पार्क्स का जन्म 29 दिसंबर सन 1813 को इंग्लैंड के औद्योगिक नगर बर्मिंघम में हुआ। उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था और नए नए आविष्कार दुनिया को बदल रहे थे। बचपन से ही पार्क्स की रुचि विज्ञान, धातुओं और रसायनों में थी। इन्होंने पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त किया। युवावस्था में इन्होंने धातु उद्योग

से जुड़े कार्यों में भाग लिया और यहीं से इनकी वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ। अलेक्जेंडर पार्क्स एक जिज्ञासु और प्रयोगशील व्यक्ति थे, हमेशा नई चीजों की खोज और पुराने तरीकों को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे रहते थे। इन्होंने धातुओं को अधिक मजबूत और उपयोगी बनाने के लिए कई प्रयोग किए, विशेष रूप से इलेक्ट्रोप्लेटिंग तकनीक के विकास में इनका काफी योगदान रहा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु की सतह पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। आज ये तकनीक आभूषण, मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। लेकिन अलेक्जेंडर पार्क्स की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पार्किंसन का आविष्कार। सन 1856 में इन्होंने सेलुलोज नामक प्राकृतिक पदार्थ से एक नया कृत्रिम पदार्थ तैयार किया। ये पदार्थ गर्म करने पर नरम हो जाता था और इच्छा अनुसार किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। ठंडा होने पर यह कठोर और टिकाऊ बन जाता था। ये गुण उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी साबित हुए। सन 1862 में लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पार्क्स ने अपने इस नए पदार्थ को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लोगों ने पहली बार देखा कि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हुए बिना भी उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती है। पार्किंसन के कंघियां, चाकू के हैंडल, बटन, सजावटी वस्तुएं और अन्य दैनिक उपयोग की कई सारी चीजें बनाई जा रही थी। हालांकि ये आविष्कार वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाद में विकसित होने वाले सेलुलॉइड और अन्य आधुनिक प्लास्टिक इसी विचार से प्रेरित माने जाते हैं। इनके वैज्ञानिक सोच का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान बनाना और उद्योगों को अधिक प्रभावी बनाना। ये हमेशा मानते थे कि विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य समाज की प्रगति और मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यही कारण है कि इन्होंने लगातार प्रयोग किए और नए समाधान खोजने का प्रयास किया। 29 जून 1890 को अलेक्जेंडर पार्क्स का निधन हो गया, लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्य आज भी विज्ञान और उद्योग जगत में याद किए जाते हैं। इन्हें आधुनिक प्लास्टिक का उद्योग अग्रदूत माना जाता है और इनका नाम विज्ञान के इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। अलेक्जेंडर पार्क्स का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि नई सोच, निरंतर प्रयास और प्रयोग करने का साहस हमें महान उपलब्धियों तक पहुंचा सकता है। तो हमने आपको बताया कि अलेक्जेंडर पार्क्स कौन थे और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया था इसके बारे में। अब बारी है खोज और आविष्कार की, और खोज और आविष्कार में हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं स्टेनलेस स्टील का आविष्कार कैसे हुआ इसके बारे में। स्टेनलेस स्टील, जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन से लेकर बड़े बड़े उद्योगों, अस्पतालों, रसोई घरों, भवनों और वैज्ञानिक उपकरणों तक में किया जाता है, ये धातु है स्टेनलेस स्टील। स्टील मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण धातु मानी जाती है, लेकिन साधारण स्टील की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस समय उस पर आसानी से जंग लग जाती थी। जंग लगने से धातु कमजोर हो जाती थी और उसकी उपयोगिता भी कम हो जाती। वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसी धातु बनाने का प्रयास कर रहे थे जो मजबूत भी हो और जंग से सुरक्षित भी रहे। स्टेनलेस स्टील के आविष्कार का श्रेय मुख्य रूप से ब्रिटिश धातु वैज्ञानिक हैरी ब्रेयरले को दिया जाता है। इनका जन्म 1871 में इंग्लैंड के सेफील्ड नगर में हुआ, जो उस समय इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सन 1913 में हैरी ब्रेयरले ने एक विशेष परियोजना पर काम शुरू किया। उस समय ब्रिटिश सेना को बंदूकों की नाल में होने वाले घिसाव और जंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। सेना चाहती थी कि ऐसी धातु विकसित की जाए जो अधिक समय तक टिकाऊ रहे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए ब्रेयरले ने स्टील में विभिन्न तत्वों को मिलाकर प्रयोग करना शुरू किया। पाया कि जब स्टील में लगभग 12-13% क्रोमियम मिलाया जाता है तो धातु की सतह पर एक बहुत पतली और अदृश्य सुरक्षात्मक परत बन जाती है। ये परत ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्वतः बनती रहती है और धातु को जंग लगने से बचाती है। एक दिन इन्होंने अपने प्रयोगों में तैयार किए गए स्टील के कुछ नमूनों को प्रयोगशाला के एक कोने में छोड़ दिया। कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि अन्य नमूनों पर जंग लग चुकी है, लेकिन जिन नमूनों में क्रोमियम की मात्रा अधिक थी वो बहुत साफ और चमकदार बने हुए थे। यही आगे चलकर स्टेनलेस स्टील के आविष्कार का आधार बना। इस नई धातु को प्रारंभ में स्टेटलेस स्टील अर्थात जंग रहित स्टील कहा गया, लेकिन बाद में इसका नाम स्टेनलेस स्टील रख दिया गया। ये खोज धातु विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार केवल एक नई धातु की खोज नहीं थी, बल्कि ये उद्योग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांति साबित हुई। इसने रखरखाव की लागत कम की, उपकरणों की आयु बढ़ाई और अनेक क्षेत्रों में कार्यक्षमता को बेहतर

बनाने का काम किया। तो हमने आपको बता दिया कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार कैसे हुआ और इसकी खोज दुनिया को कैसे बदली इसके बारे में, और आज हमने ढेर सारी जानकारी आपके साथ साझा कर ली, ढेर सारी बातचीत आपसे हो गई। और अब हमारे स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जिस भी मुकाम पर पहुंचने की कोशिश में हैं, आप लगातार मेहनत करते रहें ईमानदारी से, और मेहनत ही आपको आगे लेकर जाएगी, आप एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा, अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। वाचन एवं सहयोग था बसंत कुमार का और प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए श्रोताओं, आज हमारे रांची केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे शाम 5 बजे और 5:02 पर आप सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवानी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे गौरव कुमार पांडे।

श्रमिक लोग, ये कार्यक्रम का वक्त होगा शाम 5:30, जिसमें आज चर्चा होगी शारीरिक गतिशीलता और संतुलन के लिए योग। मदन मोहन, शायरी को सुरों का अमर लिबास पहनाने वाले अमर संगीतकार। आपातकाल का दौर, लोकतंत्र की परीक्षा, संवैधानिक चुनौतियां और इतिहास के सबक, और पीएम व्यय वंदन योजना, सुरक्षित कल निश्चिंत जीवन। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की, और शाम 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: शाम 6:02 का समय रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। और 6:32 पर श्रोताओं, हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफ्ट क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण। और 11:10 पर हमारी सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। कार्यक्रम संबंधी जानकारी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम।
1: कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: कार्यक्रम सांझ सरगम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रौनक जहां का प्यार भरा नमस्कार। आज की पहली शुरुआत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत विजू शाह का, फिल्म का नाम मोहरा।

प्रोग्राम की अगली पेशकश आंखें फिल्म से, बोल साहिल लुधियानवी के तर्ज रवि की और आवाज लता मंगेशकर की।

0: कभी कभी।
1: इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर।

मंचों का सफर। राजा हिंदुस्तानी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था समीर ने और संगीत से सवारा था नदीम श्रवण ने, और आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। और अब कार्यक्रम के आखिरी सफर में आइए सुने मोहम्मद रफी की आवाज में ये दिलकश नगमा, शकील बदायूनी के शब्द, रवि की तर्ज, फिल्म का नाम उम्मीद।

इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम सांझ सरगम अब खत्म होता है। अगली मुलाकात तक के लिए अपनी दोस्त रौनक जहां को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुने प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत खनन अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित सहायक खान सर्वेक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल प्रतिभागियों को स्किल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। संस्थान के उपनिदेशक डॉ. धीरज कुमार ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना भी है। गुमला में 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर के संबंध में आज गुमला नगर परिषद कार्यालय सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय पार्टी द्वारा नामित BLA2 को PPT के माध्यम से विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। जिला उद्योग केंद्र लोहरदगा के सभागार में आज रैप योजना के तहत महिला उद्यमियों के नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक रघुवर सिंह ने महिलाओं को स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। और देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बिरसा कृषि रथ 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ गांव गांव जाकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज के सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

आज के सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में श्रोताओं आप सबों को बता दें, 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के गुलदस्ता को हम सजाएंगे युगल गीत के द्वारा। पांच बजकर 30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें चर्चा की जाएगी बरसाती सब्जियों की खेती पर। हो लोकगीत आप सुनेंगे सिनेमा याल्डा और उनके साथियों से। मौसम के जानकारी के अलावा आप सुनेंगे पंच परगनिया लोकगीत, कलाकार होंगे राजेंद्र नारायण सिंहदेव और उनके साथी। शाम 6 प्रसारित करेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर आप सुनेंगे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में, जहां से आप उसका आंखों देखा हाल सुनेंगे। 6:55 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण होगा, और पुनः 7:15 से आप क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे, और 8:45 पर समाचार संध्या रात्रि 9 News@9 का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही किया जाएगा, और 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि 10 पुनः आपको लिए चलेंगे क्रिकेट के मैच के मैदान में, जहां से आप इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल जानेंगे, और रात्रि 11 हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर सभा समाप्ति की घोषणा की जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

और अब श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता, और आज के गुलदस्ता में हम आपको सुनवा रहे हैं युगल गीत। तो श्रोताओं सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म बजरंगी भाईजान का ये गीत राहत फतेह अली खां और रेखा भारद्वाज के युगल स्वर में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और इस जरूरी संदेश के बाद श्रोताओं, सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम गुलदस्ता का अगला गीत। फिल्म का नाम है डोली सजा के रखना। आवाजें हैं एमजी श्री कुमार और अनुराधा पौडवाल की। गीत लिखा है महबूब ने, संगीत दिया है एआर रहमान ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना अलका याग्निक और के का गाया, समीर का लिखा, नदीम श्रवण के धुन पर फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए का ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में युगल गीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और अब श्रोताओं, कार्यक्रम गुलदस्ता का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मल्लिक और नीति मोहन के युगल स्वर में। गीत है रश्मि विराग का और संगीत अमाल मल्लिक का। फिल्म का नाम है हेट स्टोरी 3।

नीति मोहन और अरमान मल्लिक के युगल स्वर में गाए फिल्म हेट स्टोरी 3 के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशा मनीगोप का जोहार। कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। कार्यक्रम में आज मैं आपके बीच बहुत सी जानकारियों के साथ उपस्थित हुई हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से, बरसाती सब्जियों की खेती। किसान भाई बहनों, इन दिनों आप सब भी खरीफ फसलों की बुआई के कार्यों में लगे हुए हैं, इसके साथ ही सब्जियों की खेती का कार्य भी चल रहा है। ऐसे में कुछ सब्जियां हैं जो बरसात के मौसम में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और इन सब्जियों की अच्छी पैदावार होती है। बारिश के मौसम में सब्जियों को पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है और इससे लागत भी कम आती है और फायदा ज़्यादा होता है। बरसात के मौसम में तीन तरह की फसलें उगाई जाती हैं, बेल वाली सब्जियां, खड़ी फसल वाली सब्जियां और ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियां शामिल हैं। करेला, लौकी, पालक, सेम, भिंडी, प्याज, खीरा, बैंगन, मिर्च, टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी और मूली, इन सब्जियों की पैदावार भरपूर मात्रा में होती है। जून जुलाई में इनकी बुआई का कार्य शुरू होता है और कटाई लगभग अगस्त सितंबर और अक्टूबर माह में की जाती है। किसान भाई बहनों, इन सब सब्जियों की खेती कर आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के लिए आप जहां आप इसे लगाना चाहते हैं उस खेत या जगह की अच्छी तरह तैयारी करें उस भूमि की। उसके बाद गोबर की खाद, जैविक खाद का प्रयोग करें। बुआई के लिए स्वस्थ बीजों का ही प्रयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही आप अपने घर के आसपास किचन गार्डन के रूप में भी आप अलग अलग साग सब्जियों को लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस मौसम में खरपतवार बहुत ही जल्दी उग आते हैं, तो इन्हें हटाते रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो फसलों का बढ़वार है वो सही रूप से नहीं हो पाता है। इसके साथ ही छोटे छोटे कीटों का भी प्रकोप होता है, तो ऐसे में फसलों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही आप नीम की दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक दवा का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। किसान भाई बहनों, बरसात के मौसम में अगर आप बरसाती सब्जियों की खेती करते हैं तो आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इस चर्चा के बाद आइए अब हम सुनते हैं ये संदेश।
1: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आद्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
0: किसान भाई बहनों, अब हम आनंद लेते हैं होलो गीत का सीनी माई आल्डा और साथियों के स्वर में।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
1: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
0: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
2: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 244,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई।

0: जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
1: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिले हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
2: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु, सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
3: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
4: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: फसल बीमा करें।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाई बहनों, अब हम जानकारी लेते हैं मिट्टी जांच से लाभ। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं मनीष दास और उनसे बातचीत कर रही है आशा मनी गोप।
5: मिट्टी जांच से होने वाले लाभ, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाई बहनों को दीजिए।
6: जी, मेरा नाम मनीष कुमार दास है, मेरा पोस्ट लेबर असिस्टेंट है जिला कृषि विभाग से। सॉइल सैंपल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह हमारा शरीर जब बीमार होता है तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो हमें डॉक्टर से जांच कराना होता है। तो डॉक्टर भी तुरंत उसमें जो दवाई नहीं देते, वो जांच कराने बोलते हैं कि ब्लड जांच करा लीजिए कि सर्दी जुकाम है कि मलेरिया है कि टाइफाइड है कि जो भी है, उस हिसाब से वो अपना दवाई देंगे। और जब दवाई देते हैं तो वो एज हिसाब से देते हैं कि बच्चा है कि 18+ है कि 40+ है, उस हिसाब से पावरफुल दवाई देते हैं। तो उसी प्रकार जब हम लोग खेती करते हैं तो जैसे 2-3 साल तक जब हम लोग खेती करते हैं तो उर्वरक शक्ति कम हो जाता है। जैसे प्राय यहाँ पे धान की खेती होती है या कोई बागानी करते, जैसे टमाटर की बागानी कर लेते हैं, कोई साग सब्जी की बागानी कर लेते हैं, तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे जो है हमारे पोषक तत्वों की, उर्वरक की हमारी मिट्टी में उसकी कमी होने लगती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें मिट्टी जांच करना बहुत आवश्यक है, जिससे ये पता चल सके कि वाकई में आपका जो मिट्टी में क्या चीज का कमी है। जिस तरह की मान लीजिए कि आपका खेत में अगर बोरोन की कमी है और आप किसी जानकारी नहीं है, और आप अगर सोच रहे कि नाइट्रोजन की कमी, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप अगर कुछ खाद डाल रहे हैं तो आपका काम नहीं आएगी। तो उस प्रॉपर तरह से हमारे यहाँ 12 पैरामीटर का जांच होता है, जिसमें 12 पैरामीटर में हम एक सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराते हैं जांच कराने के बाद, जिसमें आपका हर चीज, आपका किसमें कमी है, किसमें पर्याप्त है, किसमें आपका अपर्याप्त है, सब विवरण उसमें दिया रहता है। उस हिसाब से उसमें क्या डालना होता है, कितना मात्रा में आपका खेत, जिस प्रकार से मैंने बोला कि किस एज के हिसाब से आपको दवाई दिया जाता है, उस हिसाब से जितना बड़ा आपका खेत है, एकड़ में है, आपका डिसमिल में है, उस हिसाब से आपको कितना खाद वहाँ पे, किस किलो के हिसाब से वहाँ पे दिया जाना है। वहाँ पे आपका एक सोयल हेल्थ कार्ड जो हम लोग बना के देते हैं, उसमें आपका सारा डिटेल्स रहता है कि आपका खेत में 12 पैरामीटर में ये पर्याप्त ये कमी है। जैसे कि हमारे यहाँ पर आया अम्लीय मिट्टी है, तो अम्लीय को अगर आप उसको अगर न्यूट्रल करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है चूना मिलाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ बोरोन की कमी होती है, जिसके लिए हमें बोरोस का छिड़काव करना पड़ता है, जो कि पत्तियों में, फूलों में, पौधों का में छिड़काव किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ प्रायः कमी होती है। तो जब तक हम लोग जाँच नहीं कराएंगे तो हमें पर्याप्त हमें मालूम नहीं होगा कि हमारे मिट्टी में एक्चुअली क्या कमी है।
5: सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी हमारे किसान भाई बहनों को कैसे पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है।
6: जी, सबसे पहले अगर आप कोई पौधा लगाए हैं, कोई अगर बागानी कर रहे हैं, तो जैसे कि जो फल देने वाले हैं उनके अगर फूल अगर वक्त से पहले झड़ जा रहे हैं, अगर पत्ते पीले हो जा रहे हैं, पौधों का विकास नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि बोरोन की कमी है। और अगर आपका फसल पर्याप्त नहीं हो रहा है, आप अगर गौर करे होंगे कि 1-2 साल में अगर फसल अच्छे दे रहे हैं और 1-2 साल बाद अगर बहुत कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो आपका लवण है मिट्टी का, वो हो सकता है कि बढ़ रहा होगा, जो एक नमक होता है, या तो फिर आपका नाइट्रोजन का कमी हो रहा होगा और आपका सल्फर का कमी होगा, जिस वजह से जो विकास नहीं हो पाता है पौधों का और सही तरीके से आपका जो है उत्पादन बढ़ नहीं पाता है। तो इसे हम अगर जांच कराएंगे तो सही सही हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी कि कितनी मात्रा में कमी है, और उस मात्रा के हिसाब से जो है हम लोग खाद और आपका जो है उसको भरपूर मात्रा में उसको जो है पूरा कर पाएंगे।
5: हमारे किसान भाई बहन अपने खेत की मिट्टी ले रहे हैं तो वो किस स्थान से ले तो ज्यादा अच्छा है?
6: जी, ये मिट्टी लेने का भी एक सिस्टम होता है, जिससे मैं सभी किसानों को मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे जो खेत के चारों ओर जो आड़ी या मेड़ बोलते हैं हमारे भाषा में, लोकल भाषा में, तो वहां से कम 1 मीटर का दूरी से हमें लेना है। अगर मीडियम खेत है तो कम से कम 4 जगह से लेना होगा मिट्टी, और बहुत बड़ा खेत है तो कम से कम 7 जगह से मिट्टी लेना है, और वो भी लाइन हिसाब से नहीं लेंगे, कहीं से भी जिग जैग जोन से उठाना है, और भी शेप में गड्ढा खोदना होता है। कम से कम अगर जड़ हम लोग देखेंगे कि आप लोग क्या बागानी करना चाहते हैं, अगर आप धान का खेती कर रहे हैं तो उसका तो जड़ है 15 सेंटीमीटर तक जाता है, तो 15 सेंटीमीटर आसपास जो उसका गड्ढा खोदेंगे और साइड से मिट्टी लेंगे, भी शेप का गड्ढा खोद के साइड से उसका मिट्टी लेना है हमें, और मिट्टी को सब जगह से लेने के का बाद देखेंगे कि हमारे जो मिट्टी का मात्रा बहुत ज्यादा होगा, करीब करीब 2 किलो प्लस होगा, तो उतना मिट्टी नहीं लेना है। उसको हम गोल शेप में एक प्रॉपर जगह में पेपर में या फिर कहीं रख के उसको गोल मात्रा में करके चार भाग करके दोनों भाग फेंक के फिर दोनों भाग को फिर आपस में मिला के चार भाग करके तब तक मिलाना है आपस में जब तक कि कम से कम आधा किलो हमारे पास ना बचे। आधा किलो मिट्टी को एक प्लास्टिक में डाल के एक और एक कागज में अपना नाम पता गांव और ब्लॉक का नाम लिख के मोबाइल नंबर और आधार नंबर के साथ एक और प्लास्टिक में भर के उसको एक साथ प्लास्टिक में सील करके जो है आप अपने ब्लॉक में या तो फिर जिला कृषि भवन में आप जमा कर सकते हैं, जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग का सभी किसानों का सॉइल टेस्टिंग होता है वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं।
5: तो ये जो मृदा की जाँच है क्या यह निःशुल्क होता है?
6: जी, ये सरकार द्वारा जाँच होता है जो निःशुल्क है, सभी किसानों को इसके लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये निःशुल्क है।
5: इसके साथ ही मृदा कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है, तो इसमें उनके पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दिया जाता है?
6: जी, सभी पोषक तत्वों के बारे में दिया जाता है। अगर आपका जिस प्रकार आप खेत का हम प्राय जांच करते हैं तो अम्लीय मिट्टी पाया जाता है जो कि हमारे यहाँ 6 या तो 6 से कम होता है, तो उसमें किसी किसी का जो है 5 या 5 से भी कम होता है, तो वहाँ पे बोरोक्स देने की सलाह दी जाती है, और जहाँ बोरोन की कमी होती है वहाँ बोरोक्स देने के लिए मांग होता है, और अम्लीय मिट्टी जहाँ पे वहाँ पे चूना देने के वहाँ पे चूना का यूज करने के लिए सलाह दिया जाता है, और आपका अगर नाइट्रोजन की कमी है तो वहाँ पे आपका जो है यूरिया देने का सलाह दिया जाता है। ये प्राय हमारे यहाँ कमी पाया जाता है।
5: ये जो मिट्टी की जांच है हमारे किसान भाई बहन लगभग कितने सालों के अंतराल में करवाए तो वो ज्यादा अच्छा है?
6: कम से कम 2 साल के अंतराल जी। वो अगर चाहे तो अगर किसी की खेती में बगानी होती है फिर खेती होती है धान की फिर बगानी होती है तो 1 साल में करा सकते हैं, नहीं तो प्राय हर 2 साल में जो कम से कम अपना जाँच करा लेना चाहिए
5: जी। और हमारे किसान भाई बहन फसल चक्र भी अपनाते हैं तो यह किस तरह से लाभकारी है?
6: किसान जो फसल चक्र अपनाते हैं तो उसमें आपका जो है जिस प्रकार के आप अगर टमाटर की खेती करते हैं तो वो

0: जो टमाटर है वो अम्लीय है, और अगर आपकी मिट्टी अगर अम्लीय है तो टमाटर की खेती के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप धान की खेती करते हैं तो धान की खेती के लिए भी जो कम से कम 6 से 7 का पीएच मान होना चाहिए जो अम्लीय को दर्शाता है। तो अगर आपका उसमें अगर बहुत कम अगर है, अगर आपका 5 से कम है, तो फिर उसको फिर आपको जो है उसको जाँच करा के उसको आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, नहीं तो फिर धान की खेती में भी कमी देखने मिलेगा। और हमारे यहाँ जिस प्रकार के आयरन की कमी नहीं है, यहाँ पे मैग्नीज की कमी नहीं है, कॉपर की भी कमी नहीं है, और जिंक की भी कमी नहीं है। हमारे यहाँ कमी है बोरोन और आपका पीएच की और आपका नाइट्रोजन की। और कुछ कुछ आपका जो जैसे बैगन वगैरह लगाना होता है तो उसमें आपका नाइट्रोजन की मात्रा उसमें पर्याप्त होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम है तो फिर उसमें आपका जो है बैगन हो गया आपका, और जो साग सब्जी हो गया आपका, फूलगोभी हो गया, वो प्रॉपर मात्रा में आपका जो है खेती नहीं होगी। तो आप अगर फसल चक्र करना चाहते हैं तो फिर उसको तो फिर आपको 6 महीने में जाँच कराना होगा, जिस हिसाब से आपका जो है आपका कोई बारिश सीजन में जो आप खेती कर रहे हैं, फिर आप ठंडा सीजन में कोई खेती कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है आपका जो है खेत का जो उर्वरक शक्ति जो कम नहीं होगा। और आपको क्या डालना है, क्योंकि बहुत से किसान भाई जो है बिना जानकारी के कुछ भी डाल देते हैं तो खेत का नुकसान होता है उससे, और कोई कम मात्रा में डालते हैं, कोई ज्यादा मात्रा अधिक मात्रा में डाल देते हैं तो उससे भी नुकसान होता है। तो पर्याप्त मात्रा में डाले और जो जरूरत वही डाले, और हम लोग एक्स्ट्रा कुछ ना डाले जिससे कि हमारे खेत के साथ साथ हम लोग का फसल का भी नुकसान है एक साथ।
1: मिट्टी जाँच से हमारे किसान भाई बहनों को किस तरह का लाभ मिलेगा?
0: जी, मिट्टी जाँच से हमारे किसान भाई बहनों को बहुत तरह से लाभ मिलेगा। जिस हिसाब से आपका जो हमारे खेत हम देख रहे हैं कि बहुत से किसान जो जिनको जानकारी नहीं है वो एक्स्ट्रा यूरिया डाल देते हैं जो आगे चलकर एक जहर का काम होता है, और आ कारण जो है बिना जांच किए हमारे किसान भाई जो है परेशान होते हैं कि हमारा पहले जैसा हम लोगों का जो है उत्पाद अब कम हो गया है। तो चिंता ना करें, वो उनका टेस्ट करा ले मिट्टी का, तो हो सकता है कि उनमें 1-2 कोई पैरामीटर हो जो जिसका कमी हो, तो उसे हमें कार्ड द्वारा जो वहाँ पे लिखा होगा कि आपका कौन कौन सा जो उर्वरक का कमी है और क्या डालना होगा, कितना मात्रा में डालना, तो इससे उनको सीधा लाभ मिलेगा कि उनका खर्चा बचेगा और जो समय बर्बाद होता है उनका, जो इतना लगन से वो जो खेती करते हैं आगे चल के, जो जैसा बोरोन की कमी मैंने कहा, अगर फूल झड़ जाएगा, पत्तियां झड़ जाएंगे, तो वो फिर उनका जो फल मिलेगा ना ही उनका कोई विकास हो पाएगा पौधा का सही से, तो फिर निराशा किसानों को मिलेगा। तो जो समय बर्बाद होता है वो समय बचेंगे और जो धन उनका जो हानि होता है वो भी बचेंगे।
1: अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, हमारे सभी किसान भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह हम बीमार पड़े या ना पड़े, लेकिन हमारा शरीर का रेगुलर चेकअप होना चाहिए, कम से कम साल में 1 बार अच्छे से चेकअप होना चाहिए, उसी प्रकार जो है हमारा खेत का जो है 2 साल में 1 बार जरूर जांच करा ले, जिससे आपका समय बचेगा ताकि आगे चल कर आप जो भी फसल कर उसका उत्पाद अच्छी मात्रा में हो पाए और आपका जो है फसल बर्बाद भी ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ जो अम्लीय मिट्टी है और बोरोन की बहुत कमी है और नाइट्रोजन की भी मात्रा कहीं कहीं पर कमी है, जिससे हमारे पौधों का विकास नहीं हो पाता है। और कहीं कहीं पर जहाँ पे जो खाद का उपयोग किया जाता है तो वहाँ पे जो है आपका अगर सब प्रॉपर मात्रा में, तो एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। आपका अगर उसमें जांच करा ले, अगर आपका सब 12 पैरामीटर अगर प्रॉपर आपका पर्याप्त निकलता है, तो फिर हमें एक्स्ट्रा कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है, आप उससे भी आप अपना जो है खेती कर सकते हैं।
1: मिट्टी जाँच से होने वाले लाभ, इस विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय दी, इसके लिए हम आपका पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोहार।
0: जी, जोहार।
2: किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: कष्टदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
3: अपन करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
4: किसान भाई बहनों, इसी संदेश के साथ कार्यक्रम किसानवाणी अब यहीं संपन्न होता है। आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आशा मनी गुप्त को दीजिए विदा, जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी, आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। और कुछ ही पलों में शाम के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 46वां स्थापना दिवस समारोह कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगी। मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हजारीबाग समाहरणालय भवन परिसर में हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत मतदाता हेल्पलाइन के माध्यम से टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर मतदाता पंजीकरण, नाम संशोधन, मतदाता सूची से नाम हटाना तथा निर्वाचन संबंधी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सरायकेला नगर पंचायत टाउन हॉल में प्रधानमंत्री

0: मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने स्ट्रीट वेंडरों, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा नागरिकों की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि नगर पंचायत सरायकेला ने अब तक 275 पात्र स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया है। देवघर जिला प्रशासन ने जिले के नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिले के सभी प्रखंडों में तिथि निर्धारित कर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है बंगला कार्यक्रम सात रंग।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप आंखों देखा हाल सुनेंगे। आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच का सीधा प्रसारण।

0: T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑफ द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
3: 25 जून वो तारीख जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है, क्योंकि आज ही 1983 में इंग्लैंड की भूमि पर भारत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना था। 2026 में उसी इंग्लैंड की भूमि पर हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम T20 विश्व कप जीतने का ख्वाब देख रही है। लेकिन पिछले दिनों इस राह में मिला एक स्पीड बंप, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार। पर कहते हैं, हीरो वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो गिरकर फिर खड़ा हो उठता है। आज फिर वही मैनचेस्टर का मैदान है, सामने बांग्लादेश है और अपनी गलतियों से सीख बाउंस बैक करने की चुनौती है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20। मेरा नाम है दर्पण और मेरे साथ है मुदिता।
4: शुक्रिया दर्पण। हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल। दर्पण, आपने 1983 के वर्ल्ड कप का जिक्र किया, तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स में मौजूद हैं चेतन शर्मा, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, जो नाम हर भारतीय फैन के दिलो दिमाग पर आज भी है, क्योंकि 1987 के वर्ल्ड कप में वो पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने हैट्रिक ली थी। चेतन, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: इसके अलावा हमारे साथ है विजय दहिया, जो फॉर्मर क्रिकेट खिलाड़ी होने के साथ ही अब एक बहुत सक्सेसफुल कोच की भूमिका में है। वेलकम विजय।
6: शुक्रिया।
4: और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शशांक शेखर। शशांक, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
7: थैंक यू सो मच।
3: तो एक्सपर्ट से पूछेंगे कि कैसी होने वाली है भारत के लिए आज चुनौती, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे सीधा मैनचेस्टर, जहां पर टॉस होने जा रहा है।
8: Are in the hunt for one of those top two spots. I've got Trudy Anderson, match referee, alongside the captains. I think Harmon, I think you've got the coin. Jolty, your call. It's fallen your way. You've won. What are you going to do today?
9: We wanted to bat first because in this sort of game, we really wanted to put some score in the board.
8: I'm just watching your team warming up, and they are up and about. There seems like a real energy about the group as well because of the two wins. How do you just let the players sort of run with that, or do you want to try and keep them nice and calm?
9: I think this is really important game for us, and I think it's a huge opportunity for all of us to being in the top side. So I think we just wanted to give our everything in this game, and we are so happy that we are in a moment where we are count.
8: You've played this team a lot. That hasn't always gone your way. How do you approach this with a game plan? Is it what's worked for you well so far in this tournament? Are you going to change things up a little bit?
9: I think our batters been in a bad patches, but I guess they will come back in this game, that we hope. But our bowlers been very consistent in the last three games, so we will definitely looking forward for that.
8: Okay, any changes to your side today?
9: No, we are going with the same 11.
8: Okay, all the best for this big clash.
9: Thank you so much.
8: Harmon, I'll get you to come in. Bowling first. I just saw you rolling the arm over. Is that what we're going to expect to see?
9: Not really. I was just warming up myself.
8: Okay. You're going to be bowling first not here on this pitch. It's a run scoring. It's very, very flat. What's your thoughts on that?
9: Yeah, I think it's a good wicket to bat on. But if you keep yourself in the game and, you know, spend some time on the wicket, it's a really good wicket. But I think for bowling also, if you, you know, spin your fingers, there is something you can, you know, take from this pitch, and hopefully our bowling group will come up strong today.
8: A little bit in your favour is that you have played here. You've also played on this pitch against South Africa. What did you learn from that?
9: Yeah, I think that was a very good a pitch to bat and ball. And I think, as I mentioned, you know, you just have to read the pitch and react accordingly.
8: Okay. Is it just about the win, or is a little bit of net run rate in there as well?
9: I think first to win, and then let's see how it goes.
8: Okay, let's see how it goes. Thanks a lot. All the best today.
9: Thank you.
8: Bangladesh have won the toss. They're going to be having a bat first.
3: तो टॉस बांग्लादेश ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश T20 क्रिकेट में, वुमेन्स क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, 23 बार आमने सामने हुई है। केवल 3 बार बांग्लादेश को जीत मिली है और तीनों बार चेज करते हुए मिली है, लेकिन यहां पर फैसला पहले बल्लेबाजी करने का किया है। चेतन, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को?
5: देखिए जैसे अभी तक खबर आ रही है मैनचेस्टर से कि विकेट थोड़ा सा लो एंड स्लो विकेट रहेगा, और जब आपको ये अनुमान रहता है कि लो एंड स्लो रहेगा तो चेज करना विद स्पिनर्स आपकी टीम के अंदर, तो यकीनन कहीं ना कहीं आप ये आपके मन में यह है कि अगर जितना बैटिंग के लिए अभी तक विकेट अच्छा है उसके बाद थोड़ा डस्टी की संभावना, हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया यही साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था और हार का सामना करना पड़ा था, तो वो चीजें आप कैलकुलेट करते हैं एज ए टीम। आप वो देखते हैं कि पिछला मैच भारतीय टीम ने कैसा प्रदर्शन किया, क्या उनकी रणनीति थी, उसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया कि अगर बाद में स्पिनर्स को कहीं मदद मिलेगी उसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट गेम में मैं हर समय कहता हूं विन द टॉस एंड डिसाइड टू बैट, रन ऑन बोर्ड हर समय अच्छा रहता है टीम के लिए।
4: जी चेतन बिल्कुल, लेकिन पिछला मैच अगर हम देखें तो विन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट भारत ने यही निर्णय लिया था। हम क्योंकि बॉलिंग भारत करने जा रहा है तो पावर प्ले बॉलिंग की अगर हम बात करें हमारी तो बहुत सारे इश्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले मैच को अगर हम खास करके देखें तो पावर प्ले में बहुत सधी हुई बॉलिंग की थी भारतीय बॉलर्स ने, केवल 25 रन और आखिरी ओवर तो चर्नी का मेडन विकेट, लेकिन उसके बाद भारत इस बढ़त को कैपिटलाइज नहीं कर पाया। विजय
6: अगर आप देखें जिस तरीके से आप गेंदबाजी का जिक्र कर रहे हैं, एक जो चीज़ जो भारतीय टीम के साथ जानी चाहिए या कंडीशंस के बारे में आप बात करें तो जब आप अपने मीडियम पेसर्स की तरफ देखते हैं तो शायद उस तरीके का ये वर्ल्ड कप अब तक नहीं रहा है जहाँ गेंदबाजी के बारे में आप बात करने की कोशिश करते हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जिसके बारे में हमने अभी जिक्र भी किया साउथ अफ्रीका, उसमें अगर आप देखें तो आप बड़े मैचों के हिसाब से जितने रन आपको बोर्ड पर लगाने चाहिए थे वो थे वहाँ पर, वो गेंदबाजों के लिए था मैच जीत के वहाँ से मैच भारतीय टीम को जिताना, तो वो एक चीज़ है जो बहुत अहम रहेगा आपका इस टूर्नामेंट में आपको बनाए रखना या यहाँ से इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर जीत दिलाना।
3: आपने बात की कि अभी तक सीमर्स ने शायद उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया और इसके चलते कुछ बदलाव भी हमें टीम में देखने को मिल रहे हैं। रेणुका सिंह ठाकुर जो कि सबसे अनुभवी सीमर है उनको प्रथम एकादश में आज शामिल कर दिया गया है, साथ के साथ राधा यादव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। शशांक, लास्ट टाइम इंडिया वेंट टू बांग्लादेश दे डिड अ क्लीन स्वीप, राधा यादव वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, शी पिक्ड अप 10 विकेट्स, दोज हैप्पी मेमोरीज मस्ट हेल्प हर अगेंस्ट बांग्लादेश।
7: होपफुली सो, no, this is a match which India are supposed to win, and I don't see any problems for India. I think it's going to be the spin department which will again do the needful for India. It's a very interesting stat I would like to share. In the three matches that India have played, they have taken 24 wickets. 22 of them have been taken by the spinners.
3: Right.
7: Nandini Sharma has taken 2 wickets.
3: Right.
7: Kranti Gaur and Arundhati

0: have not taken a single wicket. You know, so Manchester, this pitch, even Australia, for Australia, Sophie Molyneux, Wareham and all, their spinners took wickets against South Africa. So this is going to be a spinner's track. And as far as Radha is concerned, she's also a good left-arm spinner.
1: Mm-hmm.
0: She's a very good fielder and a competent batsman.
1: Mm-hmm.
0: But, you know, it shouldn't be a problem for India today. The problem will be against Australia in the last game of the group stage.
1: विजय आपको चैट करना चाह रहे हैं?
2: हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप देखें किस तरीके से भारतीय टीम की थिंकिंग रही है, राधा की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी खिलाड़ी जो पिछले कुछ समय में हर एक लिहाज से, अगर आप उनकी फिटनेस देखें, उनकी फिटनेस देखें, मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं इस समय वो वुमेन क्रिकेट में, अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हैं, उनका पहला मैच है और आपकी सोच कहीं ना कहीं ये चल रही थी कि जो हम स्पिनर्स खिला रहे हैं वो इनफ है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको ये लग रहा है कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी और हमें चाहिए शायद।
1: श्रियंका पाटिल की इंजरी उसमें एक बड़ा
2: नहीं, बहुत बड़ा
1: जी,
2: क्योंकि जिस समय पे ये इंजरी उनको हुई है, सिर्फ गेंदबाजी नहीं, जिस नंबर पे वो बैटिंग करती हैं वो नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो एक ऐसी यंगस्टर इस टीम के अंदर रही है पिछले कुछ समय में। अगर आप देखें WPL के अंदर भी, अनफॉर्चुनेटली पिछले सीजन में इंजरी की वजह से पूरा सीजन बाहर हो गई थी, यहाँ पर आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, फ्रीक इंजरीज ज़्यादा रही हैं उनको, तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वो एक बड़ा लॉस ज़रूर है, लेकिन इतनी सक्षम है ये भारतीय टीम कि अगर आप किसी भी कंडीशन के बारे में बात करें, इस फॉर्मेट के बारे में बात करें, जो दो बचे हुए मैचों के बारे में बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए।
3: जी, सक्षम है भारतीय टीम जैसा विजय ने कहा, और दर्पण क्यों ना कुछ श्रोताओं को भी हम शामिल कर लें, तो अगर आपके पास हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कुछ सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स हैं 011-234-21083 और 011-234-21085। चेतन रेणुका सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है आज प्लेइंग 11 में, सबसे अनुभवी बॉलर्स में है वो भारत की, and she has a good record against Australia and has the ability to swing the ball early and strike against their top order. kya ye sabse bada karan bana hai unko playing 11 mein shamil karne ka?
4: dekhiye, jitna maine abhi tak pura dekha, ek mahina pehle bhartiya team wahan pahunchi ji, aapke middle order mein abhi tak consistency nahi hai, aap reshuffle bahut zyada kar rahe hain, aur hamara ek spinner ki agar hum baat kare, jo abhi aap baat kare Shreyanka Patil, वो इंजर्ड हुई, वहाँ से एक झटका लगा और अभी तक आप अपने तेज गेंदबाजों के साथ सेटल नहीं हो पाए। देखिए, वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप जितना शफल करते रहेंगे, जितना टीम में बदलाव करते रहेंगे, तो एक चीज़ है जो कंसिस्टेंसी हम कहते हैं ना क्रिकेट के अंदर, एक भरोसा, वो प्लेयर्स को आप नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी। तो रेणुका को मौका मिला, तो जितना रेणुका को हमने गेंदबाजी करते देखा, इनको तो आपको शुरू में मौके दे देने चाहिए थे
1: जी।
4: देखिए, इस कंडीशंस के अंदर आप वो तेज गेंदबाज को लेकर आते हैं जिसके पास एबिलिटी है स्विंग कराने की। देखिए, इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है, आप 120 पे गेंदबाजी कर रहे हैं ना, अगर आप में एबिलिटी है स्विंग कराने की, आप किसी को भी आउट कर देंगे, बड़े से बड़े प्लेयर को आउट कर देंगे। लेकिन आप गति आप जितनी मर्जी कर लीजिए, लेकिन स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी आपने कहा कि स्विंग बहुत अच्छा करती है, तो ऑब्वियसली आप इन कंडीशंस में उसी गेंदबाज को खिलाते हैं जिसके हाथ में अच्छा खासा स्विंग है।
1: लेकिन चेतन, इससे जुड़ा एक सवाल है, अभी हम देख रहे हैं जो वेदर फोरकास्ट है, हीट वेव की वार्निंग दी गई है, 31 डिग्री अभी टेम्परेचर है, और हम देख रहे हैं मैदान में धूप खिली हुई है, ऐसे में आपको लगता है कि वो उस तरह का स्विंग प्राप्त होगा?
4: देखिए, उस कंडीशन में इंग्लैंड 45 डिग्री तो है नहीं, इंडिया जैसी हालत है नहीं, और दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जिनको गर्मी की आदत है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल गर्मी है। बेशक इंग्लैंड के अकॉर्डिंग 30 डिग्री बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप में क्षमता है स्विंग कराने की, आप स्विंग करा सकते हैं। ये नहीं कि वहां के अकॉर्डिंग गर्मी है, अगर आप तो इंडिया में सारी उम्र क्रिकेट खेले, अगर आप यहाँ स्विंग कराते हैं तो वहां तो आपको ऑटोमेटिकली स्विंग कराना चाहिए।
2: फॉर मी द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ शी इज बोलिंग रियली वेल इन द नेट्स, हाउ कम शी डिडंट प्ले अर्लियर? सो देयर समथिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द स्विंग, इट्स अबाउट समथिंग दैट काइंड ऑफ रिदम, मे बी शी इज नॉट फाइंडिंग हर रिदम देयर। अदरवाइज व्हेन यू वेंट फॉर अ टूर लाइक दिस एंड यू आर मोस्ट experienced bowler not finding her place in the playing 11 in all the games, there's something going on where the team management feel that she's not in that kind of rhythm, and come this game they feel if they qualify, get into the semi-finals, they'll be needing her, and that's the reason why they're introducing her in this game.
1: But tell you who is always in rhythm, it's our listeners. Mudita ek shrota hamare sath jud chuke hain, aaiye unse baat karte hain.
3: Ji, apna naam bataye aur aap kahan se hamare sath jud rahe hain? Good evening.
2: नमस्कार विपिन जी।
4: नमस्कार।
1: चलिए शशांक, हम चाहेंगे कि आप ये सवाल लें और विपिन जी को इसका जवाब दें।
0: जी, तो जैसा आपने पूछा है विपिन जी, 160-170 का टोटल अगर होता है तो हम चेस कर पाएंगे कि नहीं, तो जहाँ तक मुझे लगता है इतना स्कोर शायद बांग्लादेश नहीं बना पाएगी। ये स्लो विकेट है जहाँ स्पिनर्स बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और हमारी स्पिन अटैक अच्छी है। पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारे स्पिनर्स ने ही संभाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश 160-170 का टारगेट दे पाएगी। अगर 160-170 बना लेती है बांग्लादेश तो उतना आसान नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या स्कोर बनता है। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, अगर हम आज का मैच जीत भी लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस फॉर्मेट में वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को हराना हमारे लिए मुश्किल है, असंभव तो कुछ भी नहीं है। हमारी टीम भी बहुत अच्छी है और साउथ अफ्रीका आज रात में 11 बजे से हॉलैंड के साथ खेल रही है, नेदरलैंड्स के साथ, और लास्ट मैच उनका बांग्लादेश के साथ है। तो ये वो दे आर एक्सपेक्टेड टू बीट बांग्लादेश एंड हॉलैंड। उस केस में अगर हम ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएंगे और हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो स्थिति अभी गंभीर है हमारी टीम की, देखते हैं आगे क्या
1: जी,
0: होता
1: सभी
0: है।
1: सभी समीकरण आपके सामने पेश कर दिए गए हैं विपिन जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल सैटिस्फाई हो गए होंगे आप हमारे इस आंसर से। लेकिन सैटिस्फैक्शन की बात करते हैं विजय, बॉलिंग की हमने बात की, आप मौजूद हैं हमारे पैनल पर, विकेट कीपिंग पर बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ऋचा घोष पहले मुकाबले में थोड़े से फंबल्स हमें देखने को मिले, उसके बाद लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, उनकी ग्लव वर्क को आप कैसे आंकते हैं?
2: ऋचा घोष अगर मैं उनकी तरफ देखता हूं तो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं अगर आप उनकी तरफ नज़र डालेंगे तो आपको लगता है कि ये एक बनती हुई टीम है। हम अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें और कह रहे हैं कि वो प्रबल दावेदार है खिताब की, तो वो इस वजह से है कि उसका जो न्यूक्लियस है उसके कुछ 7-8 खिलाड़ी हैं वो पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट में लगातार खेलते हुए आए हैं। हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते हैं, हमारे यहाँ पर जैसे ही जीतती है वो हर जगह की एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको कंडीशंस देखनी बहुत ज़रूरी हैं, आप किनके खिलाफ खेल रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये टीम इस फॉर्मेट के लिए अभी भी आपकी एक सेटल टीम नहीं है। आपको मैचेस बल्लेबाज जिताते हैं, आपको टूर्नामेंट गेंदबाज जिताते हैं। आपने बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं किया, पिछले कुछ मैचेस में आपने हमेशा गेंदबाजी में बदलाव किया है। तो आपकी जब बोलिंग यूनिटी सेट नहीं है और आप ये नहीं कह सकते कि आप खिताब के दावेदार हैं। हम कह जरूर रहे हैं जब भी आप टूर्नामेंट में जाते हैं, लेकिन एक बनती हुई टीम है और धीरे धीरे समय लगता है बनते इस टीम को बनने के लिए। क्वालिफिकेशन का भी जो पिछला सवाल वहां पे पूछा था, बांग्लादेश भी तो 4 पॉइंट पे है।
1: बिल्कुल,
2: अगर हम हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं तो बांग्लादेश, और सबसे अच्छी चीज मुझे उनकी आज क्या लगी है कि उनकी सोच, क्योंकि आप वही हैं जो आप सोचते हैं, रन्स ऑन द बोर्ड वो टीम सोचती है कि हम यहाँ से जीत सकते हैं। उनकी नेगेटिव सोच नहीं थी या डिफेंसिव सोच नहीं थी कि हम इंडिया पहले खेल ले, अगर उनका ठीक दिन नहीं रहा तो हम उनको पकड़ सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी काबिलियत पे खेलते हैं, हम रन बोर्ड पे लगाएंगे और वहां से फिर गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ भारतीय टीम के लिए नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बांग्लादेश के लिए भी है।
3: जी बिल्कुल, और जैसा चेतन कह रहे हैं कि बांग्लादेश बिल्कुल डिफेंसिव मूड में नहीं है, टुडेज मैच चेतन विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक फॉर इंडिया। कई अच्छे स्पिनर्स भी हैं बांग्लादेश के पास जो आपको पुश करेंगे, खास करके ऑन अ विकेट लाइक ओल्ड ट्रैफर्ड।
4: नहीं बिल्कुल, देखिए पीस ऑफ केक तो क्रिकेट में कुछ नहीं होता, आप जिस मर्जी टीम के, दिस इज इंटरनेशनल, दिस इज वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी आपकी सामने जो टीम है वो कमजोर आप नहीं हांक सकते उनको। देखिए जो विजय अभी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको और जोड़ने की कोशिश करूंगा। जब आपके बॉलिंग कोच ये स्टेटमेंट देते हैं ना, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो उसका ये मतलब होता है कि आपका जो बॉलिंग लाइनअप है वो सेटल नहीं है। तो वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे आके अगर आप ये कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, क्योंकि सबको मालूम है कंडीशंस कैसी है इंग्लैंड में, आप अपना लाइन वन लाइन टू हर समय तैयार रखते हैं गेंदबाजी, और गेंदबाजी एक आपकी ऐसी है जो आपको टूर्नामेंट्स जिताएंगी, जो आपको ट्रॉफीज जिताएंगी, और आप बेशक 200 रन 220 रन कर देंगे, अगर आपकी गेंदबाजी में दम नहीं है तो ऑपोजिशन 220 रन चेस कर लेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप किसी को भी हरा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को आराम से हरा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अपने सेटअप को थोड़ा ठीक कीजिए। मिडल ऑर्डर में इतने शफल की जरूरत नहीं है, जमीमा पीछे जाएगी, तीन नंबर खेलती आई है, आप जमीमा को पीछे नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं विच द इंडियन मैनेजमेंट हैज टू कीप इन ऑर्डर। हमारे लिए बहुत ईजी है यहाँ से बैठकर बोलना, आई डोंट नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, बट वी आर जस्ट होपिंग कि इंडियन टीम डू वेल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई वर्ड नहीं होता क्रिकेट के अंदर, बांग्लादेश के लिए बात करें या इंडिया के बात करें, Whoever plays a better cricket, definitely will.
1: एक बात बहुत आपने ठीक कही कि कम नहीं आ सकते बांग्लादेश को, क्योंकि भारतीय वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करने वाले जानते हैं कि 2018 में ये गलती हम कर चुके हैं, एशिया कप के फाइनल में इसी बांग्लादेश की टीम से हमें हार मिली थी। खैर, एक बड़ा रोचक विजुअल चेतन अभी हमने देखा, सू रेडफर्न जो कि रिजर्व अंपायर है वो एक बक्सा लेके आई और रेणुका ठाकुर को बोला उन्होंने कि आप गेंद का चयन कीजिए, किस गेंद से आप गेंदबाजी करना चाहेंगी। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या देखता है गेंदबाज जब गेंद का चयन करता है, क्या क्या वो चीजें होती है, क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिस पर वो ध्यान देता है।
3: इस सवाल पर हम आते हैं दर्पण, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अपना परिचय दीजिए और अपना सवाल पूछे। वेलकम बैक वेंकट रेड्डी जी, अपना सवाल पूछे।
2: सर, इंडियन टीम बोलिंग के बिना चल सकती है, लेकिन ये शो आपकी कॉल के बिना नहीं चल सकता है।
1: जी चेतन, मैं चाहूंगा आप दोनों सवाल को कंबाइन करके हमें एक जवाब दें, क्योंकि फास्ट बॉलिंग एक्सपर्ट आप ही हैं।
4: आज रेणुका यादव, रेणुका ठाकुर को मौका मिला है तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है, जो अभी हमारे कॉलर कह रहे थे कि गेंदबाजी में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा लग रहा है कि वीक है। और जहां तक आपने गेंद का बात की ना, देखिए आप तेज गेंदबाजों के हाथ में वो बॉक्स दे देते हैं, वो अपने आइडिए से कि उनके हाथ का साइज क्या, मतलब मैं अपने जमाने में तो ऐसा करता था कि मेरे हाथ में ग्रिप मेरा ठीक आ रहा है। कभी कभी होती है कि बॉल थोड़ी बड़ी होती है, आपके हाथ में वो सेटल नहीं होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ रेणुका ठाकुर नहीं करेंगी, वो दूसरे जो तेज गेंदबाज होंगे उनको भी दिखाई जाएगी। बट उसकी सीम पोजीशन की आप बात करें, कितना कंफर्टेबल आप उसको फील कर रहे हैं, हर समय आपने आपने देखा उल्टा ऐसे करके ऊपर फेंकते हैं कि वो सीम से वापस आ रहा है, कि कभी कभी होता है कि नहीं सीम से अच्छा आ रहा। तो ये गेंदबाजों की अपनी अपनी सोच रहती है सब।
2: इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं जोड़ूंगा आपको, इसमें एक खिलाड़ी टीम के अंदर रहता है, एक गेंदबाज रहता है जिसकी जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी रहती है कि आप जाके गेंद देखेंगे, तभी आप देखिए ज्यादा लोग नजर नहीं आते। वो एक फील रहता है, और सिर्फ एक नहीं, आजकल अगर आप देखें तो थर्ड अंपायर फोर्थ अंपायर जो आता है वो एक और बॉल आपको हमेशा बोलता है कि दो बॉल होनी चाहिए रखने के लिए। कई बार डी शेप हो जाती है, कई बार गेंद जाके कहीं टकराती है, तो उसके लिए दो बॉल आपको बोलते हैं हमेशा रखने के लिए। तो ये भी होता है, लेकिन चूज एक ही खिलाड़ी करता है और उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड ये करता है कि उसको किस तरीके से फील रहती है, और बाकी सारे उस पर विश्वास रखते हैं कि ये जो भी पिक करेगा ना वो हम सब उसके साथ चलेंगे।
4: तो मेरे समय में मैं कपिल पाजी को कभी बॉल उठाने नहीं देता था, कि मेरा हाथ और उनके हाथ में जमीन आसमान का फर्क था, और जब उनके हाथ की गेंद करते तो मेरे हाथ में फिट ही नहीं होती थी, तो मुझे बोला जाता था आप चूज करो, जैसे विजय बोल रहे हैं तो एक को ड्यूटी लगती है आपकी करने के लिए।
3: जी, और क्योंकि बॉलिंग की बात चल रही है, विजय, शेफाली वर्मा के रूप में भारत को एक नया ऑलराउंडर मिल गया है, ये जो सफलता मिल रही है शेफाली को बॉलिंग में, क्या वो इसलिए है कि शेफाली को रीड करना बैटर्स के लिए उतना इजी नहीं हो रहा है? वुड यू लाइक टू डीकोड शेफाली'स बॉलिंग फॉर आवर लिसनर्स?
2: इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डीकोड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज़ शी वाज नॉट बॉलिंग फोर ओवर्स ऑन द रेगुलर बेसिस अर्ली ऑन। आई मीन लाइक शी वाज यूज्ड एज अ पार्ट टाइमर एंड शी इज डन अ फिनोमिनल जॉब एज अ पार्ट टाइमर, शी इज अ विकेट टेकर, यू नॉर्मली सी दैट। व्हेन आई सी अ टॉप order batter bowling, I always feel you think like a batter and then you bowl. What I don't want to face, that's what you try to deliver, and I think that works in a favor when a top order batter is used as an all rounder.
1: चलिए, गेंदबाजी के विकल्पों की हमने बात की, but there's this thing called utilization of resources. शशांक, नंदिनी शर्मा बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल के लिए जानी जाती है, डेथ ओवर्स बॉलिंग के लिए जानी जाती है, पिछले मैच में हमने देखा डेथ ओवर्स में उनको गेंद नहीं थमाई गई। तो जिस तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, क्या आप उससे अभी तक सेटिस्फाइड हैं या इंडिया को उसमें अपना आउटलुक बदलने की जरूरत है?
0: यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ओके, यू नो आई थिंक इट्स अबाउट द परफॉर्मेंस of your resources. You know, so the entire middle order has not performed. You know, the captain herself, she came into the tournament on the back of a very good form, but hasn't been able to make her mark. Jemima has disappointed. Richa has not

0: her own self. So it's all the entire onus is now on Smriti and Shefali through the tournament to score runs, and on Sri Charani to take wickets.
1: Mm.
0: So these are the three players who have carried the team. But it's a game of 11 players, mm-hmm. you know. So only three players performing. And Deepti Sharma, of course, took 5 for 10 against Pakistan. But she gave 44 runs of her in her 4 overs mm-hmm. against South Africa. Mm-hmm. You know, as the leading all-rounder
1: mm-hmm.
0: in world cricket, she's supposed to, you know, do her best against the top teams.
1: Mm-hmm.
0: So there, she couldn't deliver the goods. So it's all about how the resources perform. And there is the problem. And because of that, there has been tinkering with the team. And as Chetan Bhai said, in a big tournament, it is very important to have a settled team, you know, because of injury or because of, you know, unexpected slump in form, you may change one player here and there. But in a big tournament, you need to have, you know, a settled army. So that has not been the case with India.
2: जी, और आज हम उम्मीद करते हैं कि उन सारी गलतियों को भारतीय टीम पीछे छोड़ाएगी. इस वक्त हम मैदान पर देख रहे हैं कि टीम्स लाइंड अप है नेशनल एंथम्स के लिए, और कोइंसिडेंटली दोनों ही देशों के नेशनल एंथम्स रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं. तो इस वक्त नेशनल एंथम्स की प्रक्रिया जारी है. मुझे तो आप कुछ पूछना चाह रही हैं.
3: जी बिल्कुल, क्योंकि विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है और इसी बीच में आईसीसी ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, रिटर्न टू प्ले पोस्ट प्रेगनेंसी गाइडलाइंस जो है, और वो साफ कह रहे हैं कि मदरहुड इज not the end of the innings, it's just a pause. प्रेगनेंसी की वजह से अभी तक हम जो देखते थे कि महिला क्रिकेटर्स को करियर ब्रेक या रिटायरमेंट लेना पड़ता था, लेकिन अब आईसीसी ने फीमेल क्रिकेटर्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए गाइडलाइंस बनाई है. 16 हफ्तों का पूरा फ्रेमवर्क बनाया है जिससे मां बनने के बाद खिलाड़ियों पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं हो, बल्कि स्टेप बाय स्टेप रिकवरी, मेडिकल सपोर्ट और ग्रेजुअल कमबैक हो सके. आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह ने कहा कि किसी भी प्लेयर को मां बनने और देश के लिए खेलने के बीच चुनाव न करना पड़े, इसलिए ये गाइडलाइंस लाई गई है. विजय, एक्सेप्शनल स्ट्रोक बाय द आईसीसी.
4: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है. अभी आपने कहा कि मदरहुड स्टॉपेज नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक पॉज है. बिल्कुल, मुझे लगता है, और ये चीज ऐसी है जहां पर आप ये एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करें कि किस तरीके से आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट की तरफ देखता है और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है.
3: जी बिल्कुल. चेतन, मिडिल ऑर्डर की क्योंकि आप बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, वहां एक जो और हमने पहले भी बात की, स्ट्राइक रोटेशन जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हमको. पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पावर प्ले में 59 रन्स, डेथ ओवर्स में 36, जो कि साउथ अफ्रीका ने 39 जहां पर स्कोर किया था, और पावर प्ले में 25 रन बनाए थे. असली फर्क जो बना जाकर के वो मिडिल ओवर्स का था. भारत ने जहां पर 63 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, वहीं साउथ अफ्रीका ने 97 रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान पर.
5: देखिए, आपने विकेट्स गंवाए हैं, आप सेट होकर आउट हुए हैं. अगर आप जमीमा की बात करें, 36 रन बनाकर आप आउट हो रहे हैं, 47 रन बनाकर हरमनप्रीत कौर आउट हुई है. तो अगर आप यहां से दोनों में से एक भी आखिर तक अगर इंडियन टीम को ले जाता लास्ट ओवर्स तक, तो ऑब्वियसली आपके 15-20 रन एक्स्ट्रा जुड़ते हैं. देखिए, हर समय क्रिकेट के अंदर ये है, जैसे ही आप विकेट्स गंवाएंगे, कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश लगेगा. वो कहीं आपको आएगा, नया बैटर अंदर आएगा, आपको सेटल होने के लिए समय लगेगा. तो देयर कपल ऑफ थिंग्स विच आई थिंक, देखिए, जो चीज गई उसके ऊपर ज्यादा सोचने का अब जरूरत नहीं है. आज जो है, डिफरेंट ग्राउंड, डिफरेंट टीम, डिफरेंट एटमोसफेयर ऑल टुगेदर, आप अपनी जाकर नॉर्मल क्रिकेट खेलिए एंड कॉन्सेंट्रेट कि आगे क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो बहुत दूर है. आज आपके सामने क्या चीज है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, प्ले योर बेस्ट क्रिकेट एंड रेस्ट. अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, आप अपने आप जीतेंगे. जी
3: जी बिल्कुल, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और आप जीतेंगे. तो चलते चलते आप लोगों से हम प्रेडिक्शंस लेना चाहेंगे कि बांग्लादेश का क्या आपको लग रहा है, कि क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप स्कोर?
5: आपको लगता है कि हम उस तरफ जाएंगे? इंडिया का मैच है तो ऑब्वियसली इंडिया ऑल द वे.
3: तो कहां पर रोकना चाहिए भारत को, बांग्लादेश की टीम को?
4: मुझे लगता है कि अगर बहुत अच्छा बांग्लादेश अगर खेलेगी तो कहीं शायद 100-110.
3: जी शशांक, आप भी इसके आसपास ही?
0: 120 उन्होंने 124 बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ.
3: जी
0: मुझे लगता है उससे कम में हिंदुस्तान को उन्हें रोक देना चाहिए.
3: जी बिल्कुल, उससे कम में रोक देना चाहिए. तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत. सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया. हम फिर से हाजिर होंगे मिड इनिंग्स ब्रेक में, और आप चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम की ओर.
6: फर्स्ट बॉल 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: 2020 महिला विश्व कप में आज भारत का बहुत बड़ा मुकाबला बांग्लादेश के साथ, और भारतीय टीम को ये मैच जीतना ही होगा अगर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बनाए रखना है। बहुत जरूरी है भारत के लिए इस मुकाबले में जीत, क्योंकि साउथ अफ्रीका से हार के बाद भारत का समीकरण थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। स्वागत है आप सभी का भारत और बांग्लादेश के बीच T20 विश्व कप के इस मुकाबले में, जो ग्रुप ए का मुकाबला है, और मैं हूं आपके साथ हिंदी कमेंट्री के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश। हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर हैं देवायन सेन, स्टैटिस्टिशियन हैं रमेश अर्जुन परब, स्कोरर वेंकट बालरेड्डी। तो ये मुकाबला आज बहुत जरूरी है भारत के लिहाज से, बहुत जरूरी है इस सेमीफाइनल की रेस को बनाए रखने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए। देवायन स्वागत आपका, बहुत जरूरी ये मैच भारत के लिए।
2: Absolutely. Thanks for the warm welcome and a very good evening to everybody who's tuning in as well. It's an important match. It's being played on the same pitch on which India played their last match as well, against South Africa at Old Trafford, Manchester. And of course, the toss has been won by the Bangladesh team, which is unchanged from their last match, which featured a good victory against Pakistan. So technically, even Bangladesh in the running for a spot in the final four. And India with two interesting changes, because they brought in the experience of Renuka Singh and Radha Yadav and left out Prema Rawat, as well as the seamer from the previous game, Arundhati Reddy. So those are the two changes. One would have thought that maybe they would have thought of including an extra bowler, but they've gone in with those five specialist bowling options and Shefali Verma, of course, also as a backup.
1: Yeah, or
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आंखों देखा हाल। लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुनियादी प्रशिक्षुओं के पारण परेड समारोह का किया निरीक्षण। कहा, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पुलिस विभाग के लिए है उत्साहजनक। झारखंड के दो नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों झामुमो के वैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नाथवानी को आज राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। मुहर्रम को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर राज्य भर में प्रशासनिक तैयारी पूरी। रांची में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में किए गए बदलाव। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में किया संशोधन। नकली दवाओं की रोकथाम और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए पैकेट पर लगाना होगा QR कोड। और मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में बादल गर्जन, वज्रपात और बारिश की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के जैप वन ग्राउंड में आयोजित बुनियादी प्रशिक्षुओं के पारण परेड समारोह में शामिल होकर परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। समारोह में 4 पुलिस उपाधीक्षक और 336 नवनियुक्त आरक्षियों ने प्रशिक्षण पूरा कर शपथ ली तथा मार्च पास्ट और कदम ताल के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण, आवासीय विद्यालयों और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है तथा महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पुलिस विभाग के लिए उत्साहजनक है।
1: सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ तनखे के लिए नहीं हम पुलिसों में बहाली होते हैं या विशेषकर सरकारी संस्थानों में आते हैं, बल्कि कुछ कर्तव्यों के साथ हम बन जाते हैं। अलग अलग चुनौतियां हम सबों के बीच में रहती है, उन चुनौतियों को भी हमें खत्म करने की आवश्यकता है, उसको समाधान करने की आवश्यकता है।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नाथवानी के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा गुजरात से चुने गए सदस्यों ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। मुहर्रम को लेकर रांची में विभिन्न स्थानों से जुलूस निकाले जाने के कारण पुलिस अधीक्षक यातायात ने कल सुबह 11 बजे से जुलूस समाप्ति तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई है। किशोरी सिंह यादव चौक से अपर बाजार से महावीर मंदिर होते हुए शहीद चौक, सुभाष चौक, कचहरी चौक, चटरी तालाब, प्लाजा चौक, पुरुलिया रोड, सुजाता चौक, करबला चौक, कडरू और मैकॉन चौक समेत 15 से अधिक मार्गों पर सामान्य वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा। ट्रैफिक SP राकेश सिंह ने बताया कि मुहर्रम जुलूस के मद्देनजर अन्य मार्गों पर भी जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा सकता है, इसलिए नागरिक वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।
2: 26 तारीख को जो ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा वो 1 बजे से मेन रोड पे जो सर्जना चौक है वहाँ से लेके रतन पीटी तक पूरा रूट डाइवर्ट रहेगा। जो जाने वाला रास्ता है वो वन वे रहेगा। और जो 27 को है वो मेन जुलूस 27 को निकाला जा रहा है।
0: धनबाद में शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम संपन्न कराने को लेकर पुलिस सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। त्योहार के दौरान आम लोगों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में मेजर जनरल सज्जन सिंह मान और डोरंड कप के नोडल अधिकारी कर्नल हेमचंद्र ने शिष्टाचार मुलाकात की। रांची में पहली बार आयोजित होने जा रहे डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी झारखंड के लिए गौरव की बात है और इससे राज्य के खिलाड़ियों को प्रेरणा और बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने और खिलाड़ियों, टीम प्रबंधन तथा खेल प्रेमियों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है।
3: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
4: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। नकली दवाओं की रोकथाम और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष दवा ब्रांडों की प्राथमिक पैकेजिंग पर बारकोड या क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्यूआर कोड आधारित पहचान की आवश्यकता पहले देश के शीर्ष 300 दवा ब्रांडों तक ही सीमित थी। टीके, मादक और मनोरोगी दवाओं और कैंसर रोधी दवाओं से संबंधित प्रावधान अगले वर्ष 1 जुलाई से लागू होंगे, जबकि रोगाणु रोधी दवाओं से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई 2028 से प्रभावी होंगे। मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हजारीबाग समाहरणालय भवन परिसर में हेल्प डेस्क का शुभारंभ उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने किया। इस अवसर पर हेल्प डेस्क मैनेजर राजेश पांडे ने जानकारी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता हेल्प डेस्क के माध्यम से टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर मतदाता पंजीकरण, नाम संशोधन, मतदाता सूची से नाम हटाना तथा निर्वाचन संबंधी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
5: हम लोग यहाँ मतदाता सहायता के लिए उपलब्ध है कि किसी तरह का अगर पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी को ढूंढना है 2003 में अपना वोटर लिस्ट में नाम सर्च करना है, उनको नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो हम लोग वो प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे। 2003 से रिलेटेड हो गया, वोटर कार्ड से रिलेटेड जानकारियाँ हैं वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं।
0: मौसम विभाग ने चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के 18 जिलों में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे के बादल गर्जन, वज्रपात और बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। रांची में 24 से 26 जुलाई तक आयोजित होने वाली 16वीं झारखंड राज्य जूनियर एवं सब जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के लिए रांची जिला तैराकी संघ 28 जून को होटवार स्थित वीर बुधु भगत एक्वेटिक स्टेडियम में चयन परीक्षण आयोजित करेगा। चयन ट्रायल में रांची जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिकाएं भाग लेंगे। तैराकों के लिए SFI UID अनिवार्य है तथा प्रतिभागियों को जन्म प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुनियादी प्रशिक्षुओं के पारण परेड समारोह का किया निरीक्षण। कहा, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पुलिस विभाग के लिए है उत्साहजनक। झारखंड के 2 नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों झाबुमो के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नाथवानी को आज राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। मुहर्रम को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर राज्यभर में प्रशासनिक तैयारियां पूरी। रांची में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में किए गए बदलाव। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में किया संशोधन। नकली दवाओं की रोकथाम और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए पैकेट पर लगाना होगा QR कोड। और मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में बादल गर्जन, वज्रपात और बारिश की दी चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे पश्चिम सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाताओं के गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच जिले के 94% मतदाताओं की मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है। आगामी 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी BLO लोगों के घर घर जाकर SIR के फॉर्म वितरित करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने इस बारे में बताया कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधितों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में भी सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं।
2: हमारे यहाँ कुल लगभग 10,84,238 वोटर हैं, जिसमें से हम लोगों ने 9,37,081 वोटर्स को मैप कर लिया है। जो मैपिंग परसेंटेज है हम लोग का 86.43 हो चुका है आज के दिन में, जो कि अभी 87 के आसपास पहुंच गया होगा। लगभग हमारे ASDD की जो सूची है 7.5% वोटर थे ASDD, तो ओवरऑल हम लोगों ने लगभग 94% लोगों को या तो मैप कर लिया या तो ASDD की सूची में नामांकित कर लिया है। तो अब हमारे पास जो अनमैप्ड इलेक्टर्स बचे हैं वो सिर्फ 6% के आसपास अनमैप्ड या तो ASDD में जो नहीं है वो बचे हैं। हम लोगों की 20 तारीख से सभी स्तर पर ट्रेनिंग चालू हो गई है।
1: पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस सिलसिले में पिछले दिनों प्रदेश
3: में हमें जो है संपूर्ण क्रांति जैसा संदेश देकर लोगों को जो है जगाया, लोगों के अंदर आजादी की अलख जगाई, उनको इस अत्याचार और दुराचार के खिलाफ लोगों को तैयार किया, मानसिकता तैयार की, और उसका नतीजा हुआ कि
4: Singh coming back into the Indian 11 after a little bit of a hiatus, hasn't played too many matches. If I recall correctly, last probably played against South Africa in April of this year when India had toured there. And because of that, she has been left out of the 11, but she's just gone back to her experience. The next ball again swinging in, just seaming in off the pitch and then driven very nicely straight down the ground, but fielded by Shefali Verma. In fact, a bit too well, because it went so fast to Shefali Verma at mid-on that there was no possibility of a run at all. So yet another dot ball, 3.4 overs completed, 18-1, Bangladesh winning the toss, electing to bat in this significant encounter for both teams on a significant date, may I remind all the viewers, 25th June, synonymous with Indian cricket on two counts. We'll come back to that after the next ball. Again, action goes straight towards Shefali Verma. 1932, 25th June, of course, India's first ever test match, which was played in England. And then 1983, 25th June. That's a date that we cannot forget, Dharmendra.
5: Yes, and today's day is also big for India. So, Bharat's hands win.
4: Absolutely. The last shot, in fact, just taking a little bit of a deflection of the non-striker, Shobhana. And that's what made it go a little quicker and faster straight towards Shefali. May well have found the gap otherwise. Three dot balls. Renuka will be looking to finish this over tightly. The next one is thwarted away but played on the onside, dropped by Radha Yadav. It goes for four.
6: Ye laga abha ka chauka.
4: India are being very, very generous with Firdaus. Dropped on three and now on nine as Radha Yadav shells a pretty simple one at deep mid wicket and it leads to a boundary. And that finishes the over at 22 for one.
5: जी हाँ, ये एक मौका राधा यादव के हाथ से और फिसलता हुआ। पिछले मुकाबले को अगर याद करते हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वहां पर भी राधा यादव से दो कैच छूटे थे और दो महत्वपूर्ण कैच छूटे थे, उसकी वजह से उस मुकाबले में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये कैच छोड़ना भारत के लिए कितना भारी पड़ेगा ये जरूर देखना होगा। राधा यादव थोड़े से मानसिक दबाव में निश्चित रूप से दिखाई दे रही हैं। पिछले मुकाबले में वो अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में मैदान पर थी, इस मैच में वो 11 में शामिल हैं, उनको गेंदबाजी भी करनी है, लेकिन ये कैच भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ा सकता है। दो कैच अभी तक भारत के छूट चुके हैं इस मुकाबले में। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और श्री चरणी की पहली गेंद को सुरक्षित तरीके से शॉर्ट कवर की तरफ खेला, कोई रन नहीं। बहुत हड़बड़ाहट में बांग्लादेश की टीम है नहीं, लेकिन मौके निश्चित रूप से दो दिए हैं और अगर आप मौकों को लपकेंगे नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है, मुश्किलें आपके लिए और ज्यादा हो सकती हैं। अगली गेंद को इस बार बाहर निकलकर ड्राइव करने का प्रयास, कवर में गई थी गेंद, हवा में थी थोड़ी देर के लिए, क्या ये मौका भी छूटा है? जी हाँ, एक और कैच छूटता हुआ फील्डर वहां पर फिर से, अगर हम कहें तो एक रन जरूर लिया है। ये दे इस बार इस कैच को हवा में खेला था, सीधा एक आसान सा कैच था, मुश्किल ज्यादा नहीं थी और एक और कैच जमीन पर टपकता हुआ।
4: I think this one may have been नंदिनी शर्मा at covers।
5: अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, फिर से हवा में गेंद, फिर से कैच छूटाएगा और कैच छूटता हुआ भारत के लिए चौथा ये मौका जब भारत ने कैच छोड़ा है, भारत के खिलाड़ियों ने कैच छोड़ा है, नंदिनी से यह कैच छूटा है।
4: Second successive ball and second successive catch which has gone to Nandini and the ball is following around because she's been moved now to short third and that's exactly where the ball went off the outside edge and she made a good effort this time actually getting across to it and having got there she'll be disappointed that it came out.
5: जी हाँ, भारतीय ड्रेसिंग रूम के चेहरे भी मायूस क्योंकि इस तरह के मौके नहीं छोड़े जा सकते। अगली गेंद इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला चैलेंज के लिए,
6: ये लगा आभा का चौका।
5: फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया फिर दौस ने और सीधे बल्ले से अपने सामने की तरफ खेला, सुरक्षित स्ट्रोक, कोई फील्डर वहां पर थी नहीं और ये चौका एक और आता हुआ बांग्लादेश के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 27 एक विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर चल रहा है, दो गेंदें अभी भी बची हुई हैं और इस ओवर में दो मौके भारतीय फील्डर नंदिनी के हाथ से फिसले हैं। अगली गेंद इस बार स्वीप करने का प्रयास कामयाब हुई है, फील्डर हालांकि डीप में है, एक रन से ज्यादा मिलेगा नहीं, एक रन से स्कोर में और इजाफा होता हुआ बांग्लादेश के लिए और स्कोर बढ़ता हुआ 28 एक विकेट के नुकसान पर। अगर चारों कैच पकड़ लिए गए होते अभी तक तो क्या स्थिति होती बांग्लादेश की।
4: Yeah, and especially the three in succession which have come off the last couple of overs, including two of them off Sri Charani's over.
5: अगली गेंद इस बार हवा में फिर से खेला, हालांकि फील्डर को बीट करने में कामयाब हुए। गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चार रन के लिए,
6: आभा का चौका।
5: तो इस तरह से चौके के साथ पांचवें ओवर की समाप्ति और इस समय बांग्लादेश का स्कोर 32 रन एक विकेट के नुकसान पर।
4: Yes, for the first time, I think, in this innings, Bangladesh and their run rate going over 6 runs per over. So that's a little bit of a danger sign from the Indian perspective because they've still got some batting up firepower to come. The likes of Sharmeen Akhtar, they've got the skipper, Nigar Sultana, they've got Ritu Moni, Shorna Akhtar who can whack the ball around as well. Then some of the all-rounders, Rabia Khan who can also wield the long handle. So India need to start taking those catches to begin with. Lots of chances shelled. Juwaria Firdaus will believe that she can go and buy a lottery ticket tonight because she's been dropped 3 times by India. Dropped on 3 by Yastika Bhatia, dropped on 9 by Radha Yadav and dropped on 13 by Nandini Sharma. Nandini Sharma also letting Shobhana Mustari get away when she was on 1 herself. So this partnership also beginning to look a little bit threatening. 24 runs realized between the two of them. And more importantly, over the last couple of overs, we are seeing the boundaries beginning to come. Some chances taken, especially by Firdaus, the way that she's going across the line, trying to exploit the gaps on the onside. We are still inside the power play. One more over of the power play to come. Only two fielders allowed outside the inner ring. And the Bangladeshi batters are looking to maximize those scoring opportunities as much as possible. India desperate for wickets. Who do they turn to? They have Deepti Sharma. But for the moment, they've gone back to Shefali Verma. And Shefali Verma, the very first ball is played away.

0: proved to be a safe shot, Dharmendra.
1: जी हाँ, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया ये शॉट खेला था, बिल्कुल खाली जगह में.
0: The next ball just outside off stump, looking to cut it away, very close to the outside edge as it is consumed by the gloves of Richa Ghosh. Richa thus far has done a good job, has come up with an indifferent performance in this tournament. Every now and then she plucks out some great catches, some terrific stumpings, but also tends to miss a few chances. And today, India don't want that to happen because they're already getting a lot of those from the outfielders. Straight on the stumps, this time played away on the offside, looking for a quick single, but very quick to pounce on the ball was Jemima Rodrigues, coming in from point and getting a little bit of support along with one of her teammates as well. Shefali Verma operating with two fielders on the onside. Deep mid-wicket is Radha Yadav and Smriti Mandhana is fielding at long on. The next ball worked away on the onside. Deep mid-wicket should come into play. It's been played quite nicely, so it will only result in one. Firdaus was pushing hard, but Mustari was very quick to turn her down and tell her that let's keep it down to one. One ball left in the power play. It's been a tidy performance from Bangladesh, although India have missed so many chances, and that's proved to be their undoing in a sense. However, considering all of that, 39 for one is a good score. 7 runs already of this over. How do they try to finish off this final over in the power play? Shefali Verma just looking to make a few adjustments in the field, possibly a strong offside ring. There's a mid-off, there's a cover, there's a point as well as a backward point. This time pulled away on the onside, but there is a fielder in the deep. It goes straight towards Radha Yadav. Only a single conceded. 6 overs done. 40 for one. The power play is over with Shefali's over producing 8 runs.
1: The power play Bangladesh ke liye kul milakar achha raha hai. एक विकेट सिर्फ गवाए हैं, 40 रन इन 6 ओवरों में बनाए हैं बांग्लादेश ने. हालांकि मौके अगर भारत ने भुनाए होते तो निश्चित रूप से स्थिति बांग्लादेश के लिए मुश्किलों भरी हो सकती थी, लेकिन फिरदौस ने जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया. उन्होंने अभी तक 23 गेंदों में 25 रन बनाए हैं, 4 चौके लगाए हैं. बांग्लादेश की तरफ से अभी तक कोई छक्का आया नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी शुरुआत कही जा सकती है बांग्लादेश के लिए. शेफाली वर्मा का ये दूसरा ओवर था. कुल मिलाकर अभी तक उन्होंने 2 ओवर किए हैं, 11 रन खर्च किए हैं, 5.50 की औसत से रन दिए हैं, किफायती रही हैं. श्री चरणी ने 2 ओवरों में 14 रन दिए. क्या उस छोर से गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होगा जहां से श्री चरणी अभी तक गेंदबाजी कर रही थी? उनका पिछला ओवर काफी अच्छा रहा था, जिसमें 2 मौके भारत के पास आए थे, हालांकि दोनों फिसल गए थे नंदिनी के हाथों से. नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है. ये मुकाबला काफी अहम है दोनों ही टीमों के लिए. अगर बांग्लादेश की टीम इस मैच को जीतती है तो सेमीफाइनल में रेस उसका भी बना रहेगा, और अगर भारत की टीम इस मैच को जीतने में कामयाब होती है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे और सेमीफाइनल की रेस में मजबूती से बनी रहेगी भारतीय टीम. दक्षिण अफ्रीका का भी आज मुकाबला होना है भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से नीदरलैंड के साथ, और उस मैच में ऐसा माना जा रहा है कि फेवरेट है दक्षिण अफ्रीका की टीम. आसानी से वो मैच जीत सकती है और अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकती है. दिबायन
0: Absolutely, and for India, one believes that perhaps the crunch game will be the Sunday at Lord's when they face the Australians. And one thing's for sure, while Australia are a mighty team, history has shown that one team which has upset them a few times has been the Indians. So India need to perhaps just play a slightly braver brand of cricket. Thus far, they've seemed a little confused about the ideal 11. Even today, 2 changes. So if that continues, then that gives a little bit of an advantage to Australia. But I personally believe if they can rope in one more bowling option, that can do them a world of good. At the moment, they're playing an extra batter. In the initial matches, it was Bharti Fulmali. Since then, they've gone back to Yastika Bhatia. But if they drop one of those or both of those and play a bowler instead or a bowling all-rounder, then that just enables them to play Jemima Rodrigues at 3, Harmanpreet at 4, and then maybe go from there. Maybe have a Deepthi Sharma or a Richa Ghosh at 5 and 6 respectively. And then the bowlers, all-rounders and the rest of them can get the runs.
1: Shayad ballebazon ki taraf se aatmavishwas abhi tak team management ko mila nahi hai. Agar hum मिडिल ऑर्डर की बात करें या उससे नीचे की बात करें तो उतना सफल अभी तक भारत का सफर रहा नहीं है. टॉप ऑर्डर ने अगर बल्लेबाजी की है तो भारत ने अच्छे स्कोर खड़े किए हैं, भारत को जीत मिली है, तो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं इस मैच से भारत को वापस लाना होगा अगर सेमीफाइनल और आगे का रास्ता तय करना है तो. बहुत जरूरी है भारत के लिए मुकाबला हर लिहाज से. और अब नए ओवर की शुरुआत हो रही है. नंदिनी शर्मा गेंदबाजी के लिए आ रही है. 6 मैचों का अनुभव, 6 विकेट ही उनके

0: नाम पर हैं और शिचरणी की जगह उनको मोर्चे पर लगाया गया है। 6 ओवरों में बांग्लादेश ने बनाए हैं 40 रन एक विकेट के नुकसान पर। फिरदौस 25 रन बनाकर खेल रही हैं, 23 गेंदों का सामना किया है। स्ट्राइक पर मुस्तारी जिन्होंने 5 गेंदों में 7 रन बनाए। पहली गेंद को सामने की तरफ खेला सीधे बल्ले से और मिड ऑफ से जब तक फील्डर पहुंचे वहां पर शेफाली वर्मा तब तक एक रन लेने का मौका था। इस एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। स्कोर हो गया 41 एक विकेट के नुकसान पर। 102.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये गेंद थी, बहुत ज्यादा रफ्तार थी नहीं लेकिन अपनी स्विंग से थोड़ा सा परेशान कर सकती है। हवा भी चल रही है इस समय मैनचेस्टर में। अगली गेंद को जरा ड्राइव किया कवर की तरफ, मिसफील्डिंग हुई है। एक रन जहां पर नहीं होना चाहिए था वहां पर एक रन हुआ है और इस एक रन से स्कोर बढ़कर हो गया 42 एक विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग का स्तर भारत का इस पूरे टूर्नामेंट में उतना अच्छा रहा नहीं है।
1: यस एंड टुडे दे बिगन वेल बट one just feels that it's probably been a cascading effect. Since that dropped catch, there have been a few errors creeping into the fielding.
0: Teesri gend is over ki. Nandini Sharma ki. Is baar opposition ke bahar ki gend ko steer kiya. Third man ki taraf fielder bhaag rahi. Koi fayda nahi hoga. 4 run.
2: Ye laga Abha ka chauka.
0: बल्लेबाज मुस्तारी ने देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर जगह है, थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ हटी, अपने आप को सफल किया और उसके बाद बल्ले का मुंह भर खोल दिया। फील्डर हालांकि थर्ड मैन पर शॉर्ट थर्ड मैन पर थी लेकिन उनसे काफी दूर जानबूझकर खेला गया स्ट्रोक और यह बढ़िया चौका आता हुआ इस समय बांग्लादेश के लिए। इस चौके के साथ मुस्तारी पहुंच गई 12 रन पर और बांग्लादेश का स्कोर हो गया 46 रन एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज और कप्तान के बीच में थोड़ी सी बातचीत, क्या यहां पर निर्देश मिला है कप्तान की तरफ से वो देखना होगा अगली गेंद पर। और इस बार ये गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास, बैकफुट पॉइंट पर फील्डिंग अच्छी हुई इस मौके पर, हालांकि हाथ में गेंद आने के बाद फिसली जरूर लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं था। अच्छा ओवर चलता हुआ बांग्लादेश के लिए। इस ओवर में अभी तक कुल मिलाकर 6 रन आए हैं। रन रेट बांग्लादेश ने दिवाइन अच्छा खासा बनाकर रखा है और इस रन रेट से अगर रन बनते रहे तो भारत के लिए मुश्किलें हो सकती हैं।
1: यस दिस कैन कैरी देम समवेयर इन द विसिनिटी ऑफ 140-145 व्हिच विल बी अ वेरी गुड टोटल कंसीडरिंग दीज कंडीशंस।
0: 6.90 का रन रेट इस समय। पांचवी गेंद इस ओवर की। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेला है स्वीपर कवर की तरफ, गेंद को जब तक फील्ड करके वापस किया जाए। एक रन और मुस्तारी के बल्ले से, मुस्तारी पहुंच गई 13 पर और बांग्लादेश का स्कोर 47 रन एक विकेट के नुकसान पर। ग्रुप ए का ये मुकाबला T20 विश्व कप जो महिलाओं का चल रहा है उसका बेहद अहम मुकाबला, हर एक की निगाह इस मुकाबले पर टिकी हुई है। ग्रुप में हर कोई इस मैच पर नजर बनाए हुआ है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें इस मैच पर टिकी हुई हैं, बांग्लादेश की उम्मीदें इस मैच पर टिकी हुई हैं और ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं नजर टिकाए हुआ होगा क्योंकि वो 4 मैचों में 4 जीत के बाद सबसे ऊपर जरूर है लेकिन सुरक्षित पूरी तरह से अभी भी नहीं है। अगली गेंद को इस बार पुल करने का प्रयास, उछालते इस गेंद में लेकिन बीट हुई बल्लेबाज। और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 47 एक विकेट के नुकसान पर।
1: 47 for 1 after 7 overs. Tidy start from Bangladesh and this partnership also looking quite good. 39 already realized between Juwaria Firdaus. Dilara Akhtar, the only batter to be dismissed, was caught by Sri Charani against a score of 4 when the bowler was Renuka. Since then, India have dropped 4 catches, 4 chances, which probably cost them a few runs. Shobhana Mustari is looking good. She was dropped on 1 as well. And in the course of this innings, she's also become the third Bangladeshi batter to cross the 1,000-run mark in T20Is for women. So a landmark achievement for her and a good decision to send her in, the experience of her at number 3. What's also interesting, Dharmendra, is that this entire Bangladesh 11 and the squad, in fact, is almost exclusively the batters are all right-handed. So that might explain the delayed arrival of Deepti Sharma, who now begins a fresh over, comes in for a first over in the 8th. Deepti Sharma is also chasing a milestone. If she picks up 1 wicket, then she will overtake Jhulan Goswami, the great Jhulan Goswami, as the bowler with the maximum international wickets across all formats, currently tied with Jhulan Goswami at 355. She's also the highest T20 wicket taker in the women's game with 167. The first ball was played away on the onside. The second one, short of a length, pulled away. There's a fielder in the deep though, Smriti Mandana, and that just results in a single for Mustari. For Firdaus rather. So 2 singles from the first 2 balls of Deepti Sharma in the 8th over.

0: innings. India desperately looking for some breakthroughs after that early wicket. They've been just pegged back a little, and Bangladesh have that batting firepower coming up that they can accelerate if they have some wickets in hand. Mustari shaping up to play. This one just around off stump, playing from the crease, just going back in fact, and eventually just forced to tap it back towards Deepthi, who fields, and there's no possibility of a run. Just walking around the crease at the moment, Mustari, perhaps thinking about when she wants to pull the trigger and go for a slightly more aggressive option. This time on the pads, just shuffles across, works it away on the onside. Even though there is a short mid-wicket, she picks up a comfortable single to the right of skipper Harmanpreet Kaur. That brings up the 50 for Bangladesh, 50 for one, 7.4 overs, relatively unhurried comfort. And while they have had those chances, it must be said, in through all of that, there have been some good strokes played by both Firdaus as well as Mustari. Perhaps the pick was that late cut in the previous over by Mustari. The next ball, outside off stump, a little overpitched and punched away towards long on, where Jemima Rodrigues is the fielder. This single takes Firdaus on to 28, Mustari back on strike, Bangladesh at 51 for 1, 4 singles from this over and a dot ball, one ball coming up. Deepthi Sharma looking for that 168th T20 wicket if she can get there. This time, shuffles across and picks it pretty much from the stumps, very close to an LBW had she missed, but plays it straight to short, fine, no possibility of a run. 8 overs completed, 51 for 1, 4 runs of the first over by Deepthi Sharma.
1: Jiyan Bangladesh के एक और विकेट की तलाश में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर अभी तक 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुकी हैं, लेकिन दूसरा विकेट अभी तक भारत को मिला नहीं है। 8 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। शेफाली वर्मा ने 2 ओवर किए, रेणुका सिंह ने 2 ओवर किए, शिचरणी ने 2 ओवर किए, नंदिनी शर्मा ने 1 ओवर किया और अभी अभी दीप्ति शर्मा का 1 ओवर समाप्त हुआ है। एकमात्र सफल गेंदबाज भारत की तरफ से अभी तक रेणुका सिंह, जिन्होंने 2 ओवर में 15 रन देकर 1 सफलता अर्जित की है। दूसरे विकेट की तलाश भारत के लिए, बांग्लादेश ने सिर्फ 1 विकेट दिलारा अख्तर का गंवाया, जिन्होंने 8 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुई थी। नए ओवर की शुरुआत, नंदिनी की पहली गेंद पैट पर टकराई, एक हल्की सी अपील, थोड़ी सी बातचीत इस समय कप्तान और गेंदबाज के बीच, विकेटकीपर भी इस बातचीत में शामिल हुई और वरिष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा भी पहुंच गई हैं। डीआरएस क्या लेंगी, एक लंबी बातचीत चलती हुई, ऐसा लग नहीं रहा कि डीआरएस लिया जाएगा क्योंकि संभवतः गेंद लेग स्टंप को छोड़ रही थी।
0: या एग्जैक्टली व्हाट ऋचा घोष अपीयर्ड टू बी इंडिकेटिंग व्हेन शी वाज कॉल्ड इन फॉर दैट लिटिल कॉन्फ्रेंस, नंदिनी वाज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड दैट दैट वाज गोइंग ऑन टू हिट लेग स्टंप, but it would have started around middle and leg and was also shaping down the leg side. So at best it might have stayed marginal because the on-field decision was not out. At best it probably would have been an umpire's call. So maybe it was just okay that they didn't go for it eventually. And the umpire Kim Cotton now just having a word with Harmanpreet Kaur about something. Maybe about follow-through perhaps, just running onto the danger area or something, because she was also pointing towards Nandini Sharma in the process. But it's a dot ball to begin with.
1: Nandini Sharma ka ye over aage badhta hua, dusri gend is over ki karne ke liye taiyar, over the wicket gendbazi kar rahi hai samay aur is baar gend ko khelna chahti thi on side mein, balle ka kinara liya aur gend 4 run ke liye.
2: Ye laga aabha ka chauka.
1: ये आत्मविश्वास वाला स्ट्रोक था नहीं, खेलना चाहती थी लॉन्ग ऑन की तरफ, बल्ले का मुंह उसी तरफ था लेकिन बल्ले का किनारा लिया इस गेंद ने, थर्ड मैन पर गई ये गेंद, फील्डर थी वहां पर लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर थी और 4 रन उपयोगी इस समय आता हुआ बांग्लादेश के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पर चिंता की लकीरें भारतीय खेमे में गहरी होती हुई। 7वां चौका था बांग्लादेश की इस पारी का, 55 1 विकेट के नुकसान पर। नंदिनी शर्मा इस ओवर की अगली गेंद के साथ, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को हवा में खेला है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, खाली जगह में, नो मैंस लैंड में ये गेंद गिरी है और इस पर 1 रन आया है बांग्लादेश के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 56 1 विकेट के नुकसान पर। आसमान पूरी तरह से साफ, बादलों का कहीं नामोशान नहीं और इस बीच में अंपायर इशारा आता हुआ नो बॉल का, यानी फ्री हिट बांग्लादेश के लिए तोहफा।
0: एब्सोल्युटली द इंडियन डिसिप्लिन नाउ एक्सटेंडिंग टू द बॉलिंग एज वेल। इट्स अ वेरी मार्जिनल कॉल बट इट्स अ कॉल नॉनदलेस, इट इज अ नो बॉल, इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दैट्स वेयर नंदिनी'स फुट, नॉट एनफ ऑफ इट वाज जस्ट बिहाइंड द क्रीज, द लाइन आल्सो बिलोंगिंग टू द अंपायर। सो नाउ दिस पुट्स प्रेशर ऑन Mustari, because she was not on strike but she has the license to really go for it and just rub some salt into the Indian wounds.
1: बांग्लादेश की पारी का ये अतिरिक्त पांचवां रन जरूर था, लेकिन फ्री हिट ही भी अब

0: मिला है और उस पर क्या कुछ होगा, मुस्तारी की प्रतिक्रिया। और इस बार बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप की ये गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक और अतिरिक्त रन और जो वो फ्री हिट है वो जारी रहेगा। तो अतिरिक्त रन तोहफे में जरूर आया है और जिस गेंद की हम चर्चा कर रहे थे कि लेग स्टंप वो गेंद छोड़ सकती थी, जहां पर बातचीत हुई थी थोड़ी सी कप्तान और गेंदबाज के बीच में, निश्चित रूप से वो गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। 41 गेंदों में 50 रन की ये साझेदारी हो चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी है बांग्लादेश के लिए। भारत का आक्रमण इस समय उतना प्रभावी साबित नहीं हो रहा है और इसकी वजह वो कैचेस भी हैं जो भारत की तरफ से छूटे हैं, 4 कैच इस मुकाबले में अब तक छूट चुके हैं। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेलना चाहती थी विकेट कीपर के सिर के ऊपर से, धीमी रफ्तार की गेंद थी, चकमा खा गई, उछाल थी इस गेंद में और इस गेंद पर जो फ्री हिट था उसका कोई फायदा हुआ नहीं बांग्लादेश को।
1: Yeah, very close to actually being a wide, and the batter will feel a little hard done by. It was a short bouncer. It was one for the over, called one for the over, but seemed to have gone over the head height even as the batter was trying to get up and get up to it. So, just a little unlucky on that occasion.
0: 58 एक विकेट के नुकसान पर इस बार फिर से धीमी रफ्तार की गेंद, लेग और मिडिल स्टंप पर जिसको हल्के हाथों से खेला, गेंदबाज खुद गेंद के पीछे भागी, लेकिन एक रन लेने का पूरा मौका था। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट और उस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 59 एक विकेट के नुकसान पर। हालांकि रन रेट की बात करें तो थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है उसमें, जिस रफ्तार से 7 के आसपास रन रेट था उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। बातचीत इस समय एक बार फिर से अंपायर, कप्तान और गेंदबाज के बीच में कुछ बताया है और जो वो डेंजर जोन है वहां पर बार बार गेंदबाज जा रही हैं, वार्निंग अभी तक दी गई है।
1: Second verbal warning, perhaps official effectively, because that is definitely a source of concern. If it continues, then Nandini will not be able to bowl at all in this innings.
0: Nandini ke liye thodi chinta ki baat, dhyan rakhna hoga Nandini ko. Agli gend karne ke liye taiyar, is over ki 5th gend, aur is baar is gend ko follow through mein khela, seedhe gendbaz ki taraf, out! Badhiya catch lapka hai Nandini ne.
1: Yes, and she's made up for her own lapses because a couple of those lifelines were given by her as a fielder and this time she holds on. So that's the breaking news that Firdaus finally has had to go back to the dugout after a catch was taken. Just a little change in pace perhaps, and she was looking to smack it straight down the ground but just went off the toe end of the bat, and Nandini in her follow through did very well to just get across to it. So fine innings of 33 comes to an end. That excellent partnership between the two of them, Shobhana Mustari and Zuaria Firdaus, also comes to a close. But you would think that Firdaus has done her damage with this innings. 33 from 31 balls. It's laid a good solid foundation for the skipper to walk in at number 4. 59 for 2 Bangladesh with one ball still to come in the 9th over.
0: Ji haan, aur strike rate 106 ka raha. Achha khasa strike rate bana kar unhone rakha. Ek aisi pitch par jahan par run banana itna aasan hai nahi. दबाव में थी गेंदबाज नंदिनी क्योंकि उनको अंपायर की तरफ से वार्निंग भी मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। इस बार गेंद थोड़ी सी धीमी रफ्तार की डाली, जितना अनुमान कर रही थी बल्लेबाज उस रफ्तार से गेंद आई नहीं, बल्ला चलाया, थोड़ा सा रुक कर आई गेंद और बल्ला पहले चल गया, गेंद देर से आई और ऊपरी हिस्से पर बल्ले के टकरा के गेंदबाज की तरफ वापस गई। बहुत सही पोजीशन पर थी गेंदबाज और उन्होंने आसानी से उस कैच को लपका। बांग्लादेश को दूसरे विकेट का नुकसान हुआ है और अब भारतीय टीम यहां से कोशिश करेगी कि इस दबाव को बनाए रखा जा सके। 59 रन पर दूसरा विकेट गंवाया, नवा ओवर चल रहा है, एक गेंद अभी भी इस ओवर में आनी बाकी है और गेंदबाजी कर रही है नंदिनी शर्मा, भारत की दूसरी सफल गेंदबाज, अपनी अंतिम गेंद करने के लिए तैयार। और फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, ऑन साइड में जो स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थी उसको थोड़ा सा और बैकवर्ड भेजा गया है। अगली गेंद करने की तैयारी, इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर धीमी रफ्तार की, एक बार फिर से गेंद उसको खेला बैकवर्ड पॉइंट पर, रन नहीं मिलेगा, ओवर की समाप्ति। 9 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर, रन रेट 6.56 का।
1: Much needed breakthrough for the Indians, and it comes from the youngster who's just made a debut just about a month or so ago when the Indians were touring England. In fact, got off to an outstanding start in her international career, 3 for 34 in the very first match. that she played against England. And since then, she's had a little bit of a dip in wicket-taking form, but this is her overall fourth wicket in this World Cup itself. 2 for 22 against Netherlands, and now backs it up with an important wicket, that of Firdaus, who was looking quite good for Bangladesh. So Bangladesh, 2 wickets lost. Dilara Akhtar, the opener, 4 from 8 balls. She was caught by Sri Charani of the bowling of Renuka. And then the other seamer coming in and picking up a wicket, that of Firdaus. As Deepthi begins a fresh over, it's Mustari who works it away on the onside towards deep square leg, picks up an easy single and brings the skipper on strike. Nigar Sultana Jyoti, who's actually had a very good international career. She's their all-time top scorer, captained in 2022, first appearance at the ODI World Cup for Bangladesh on that occasion. And 127th match, 121st innings, 2,589 runs at an average of 27.54. Has 100 against her name, has 13 50s as well. And that's why she is the prime batter for this team. And will be expected to try and shepherd them towards a good score. This time playing it with one hand, just surprised by the turn. The ball pitching around off stump and then biting a little bit into her body. Plays it away towards square leg and it doesn't fetch any single. 60 for 2, 9.2 overs. Now it's time for India to just bring in some of those economical overs. Get some dot ball pressure in. That's exactly what they're looking to do. Played away towards short mid-wicket, where Harmanpreet Kaur shows off her ambidextrous skills because she has the ball in her left hand and threatens to throw. But the batters anyway aren't going anywhere. 1 followed by 2 dots in this over. 9.3 overs bowled. India coming back into this innings. Bangladesh at 60 for 2. This time working it away. Just a tad to the left of Harmanpreet at short mid-wicket. Fielded at long on, and that enables Jyoti to open her account, the skipper. She moves on to 1. It takes Bangladesh along to 61 for 2. This is the 10th over in progress. We have just seen the completion of a 51-run partnership, which was looking quite threatening until it was broken by Nandini in a very eventful over, where the umpires had a couple of chats with her as well as Harmanpreet Kaur about running onto the pitch. And there was also that no ball and the free hit, which seemed like a wide but wasn't given. This time full ball down the leg side, goes for the sweep. Did she get an edge perhaps? Yes, just picking up the one for that. And that enables Bangladesh to move along to 62 for 2. Brings Nigar Sultana Jyoti back on strike. 1 from 4 for the skipper, who's come in at number 4 today, her familiar position. So Sharmeen Akhtar has been held back. She'll likely play a closing role in the final overs for the Bangladesh team. Fuller ball, punched away on the onside, able to beat Harmanpreet Kaur this time, but in fact Harmanpreet now has moved along to long on and she does the cleanup. 4 singles of this over, 63 for 2 after 10 at the halfway stage, and I suspect it will be time for a drinks break.
0: Aadha over is inning ka samapt ho chuka hai. 20 over ka ye mukabla, 10 overon ki samapti, 63 run, 2 wicket ke nuksan par Bangladesh ka score. पिछले 5 ओवर्स की बात करें तो भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की है. कुल मिलाकर 31 रन खर्च किए हैं अंतिम 5 ओवरों में और 1 विकेट भी झटकने में कामयाबी मिली है. रन रेट में भी गिरावट आई है पिछले 5 ओवर्स में, 6.20 का रन रेट रहा है. तो अच्छी वापसी और ये दबाव भारत को बनाए रखना होगा. कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में कम से कम स्कोर पर रोकना होगा, ताकि भारत न सिर्फ इस मुकाबले को जीतने की बेहतर स्थिति में रहे बल्कि नेट रन रेट भी भारत का और ज्यादा बेहतर हो सके, इसकी भी गुंजाइश बनाए रखनी होगी. 11वें ओवर की शुरुआत, राधा आई है नई गेंदबाज, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने का प्रयास और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, तो राधा ने शुरुआत की है वाइड गेंद के साथ. अतिरिक्त रन बांग्लादेश के खाते में जाता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन, 2 विकेट के नुकसान पर. राधा यादव आज के मैच में शामिल की गई है. इस बार थोड़ी सी फ्लाइट दी थी गेंद को, क्रीज से बाहर निकली और इस गेंद को आत्मविश्वास के साथ धकेल दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ. फील्डर भागी उसके पीछे, लेकिन आसानी के साथ 2 रन पूरे हुए और इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 66, 2 विकेट के नुकसान पर. रेणुका सिंह ठाकुर थी फील्डर, अच्छी दौड़ उन्होंने लगाई थी और निश्चित रूप से 1 रन तो बचाए ही थे. इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को अपने सामने की तरफ खेला. लॉन्ग ऑन पर गेंद जा रही है, फील्ड किया गया इस गेंद को, 1 रन और आता हुआ. राधा यादव अभी तक को कुछ खास प्रभाव नहीं डाल सकी है इस ओवर में. सीधी सीधी गेंद स्टंप्स पर डालती हुई, हालांकि पहली गेंद उनकी ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी. इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद की लाइन को मिस किया बल्लेबाज ने पूरी तरह से. एक मौका चुका है मुस्तारी ने, क्योंकि इस गेंद को वो चाहती तो आराम से कहीं भी खेल सकती थी,
1: Yeah, I just got surprised. I almost got yorked by the length of it, playing from the crease, and that's been the problem when playing against spinners.
0: अगली गेंद इस बार फिर से फ्लाइट थी गेंद में क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को खेलने का प्रयास लेकिन फिर से शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ इस गेंद को खेला फिर से कोई रन नहीं मिलेगा अच्छा ओवर पहला गेंद वाइड डालने के बाद थोड़ा सा दबाव था राधा के ऊपर लेकिन वापसी की है उन्होंने इस ओवर में और इस ओवर की उनकी ये पांचवी गेंद इसको हवा में उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर वहां पर पहुंच पाएंगे जी हां शेफाली वर्मा पहुंची है सिर्फ एक रन मिलेगा और इस एक रन से स्कोर हो गया अब 68 दो विकेट के नुकसान पर अच्छा ओवर चलता हुआ राधा यादव का कुल मिलाकर अभी तक उन्होंने 5 रन खर्च किए हैं और एक गेंद अभी आनी बाकी है अंतिम गेंद इस ओवर की राधा यादव की इस बार फिर से फ्लाइट थी गेंद में उसको सामने खेला है फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन मिलेगा इस रन के साथ ओवर की समाप्ति 11 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 69 रन दो विकेट के नुकसान पर
1: Yeah, those middle overs, that phase where teams often look to consolidate, just look to milk the bowling, try and work around the pitch for those ones and twos and the odd boundaries if available. And that's where the Indians have to be careful. They cannot let that big partnership prosper because these two batters are perhaps the most senior batters, the two players in this 11 in any case who have more than 1,000 runs in this format. And that's why if they get set, then they can push on and punish those final few overs. India need to consistently keep looking for wickets in that sense. And that's why Radha Yadav will be a little bit disappointed with that first over, while she was able to put some of those Yorkers in. But apart from that, she was also slightly wavered with her line on a couple of occasions. However, 6 runs conceded of that first over. She's also not had too much exposure in the 11 in this World Cup. As Renuka now comes back for a third over, 2 overs, one of which produced a wicket. Very first ball outside off stump. Negar plays it with the outside edge of the bat and it runs away for 4 towards third.
2: Ye laga, abha ka choka.
1: Both these batters, Dharmendra, they have shown that they know how to use the pace, especially off seam, and work it behind the wicket.
0: Yes, absolutely. This time, Jan Bhujkar ek tarah se khela gaya stroke tha, kyunki pata tha ballebaz ko ki khali jagah hai third man par, aur uska pura fayda uthakar 4 run jutane mein kamyab rahi.
1: Bangladesh moving along to 73 for 2, and Nigar Sultana Jyoti very quickly has moved into double figures, 10 of 9 balls. Mustari is also batting well, 19 of 20 balls. This partnership at the moment, 15 or 14 runs, in fact, they came together at 59 for 2. Just outside off stump, opening the face of the blade, playing it away towards Deepthi Sharma, who's fielding at point. No possibility of a run, as Deepthi rifles that throw in straight into the gloves of Richa Ghosh. India also looking around the field for some kind of inspiration. Bangladesh still consistently scoring at more than 6 runs per over, which is a positive for them. If they can keep that going towards at least the 14th or 15th over, we know that they have the firepower to go possibly at 10 or even 12 runs per over in those phases. The next ball just jags in and she didn't know a lot about that. Goes off the inside edge and they think about coming in for a second, but that's exceptional fielding from Radha Yadav. Comes in from deep square leg and fields it in front of mid-wicket and is able to keep the run scoring down to just that single. So Nigar Sultana Jyoti moves along to 11 of 11 balls. Bangladesh at 74 for 2 as it brings Shubhana Mustari back on strike. The senior pros out in the middle for Bangladesh, desperately looking to forge some partnership from where which will put them into a position from where they can dictate terms, especially considering the fact that they won the toss and elected to bat. Outside off stump yet again looking for that cut but cannot beat Yastika Bhatia who's fielding at short third this time around. It goes straight to her. It was a good shot but not placed well enough. 2 dot balls already in this over in addition to 1-4 and a single. And that has meant that Bangladesh are at 74 for 2, continue to be at 74 for 2 after 11.4 overs. 2 balls left in the 12th over if there are no wides or no balls. We have seen a few wides from Renuka. Richa Ghosh is standing up to the stumps, almost on cue, almost a wide but played away on the onside but straight towards Sri Charani who's fielding at short fine and it's gone so quickly that there's no possibility of a run. Mustari now just standing with a half teapot, one hand on her waist, the other alongside her bat, just looking away, thinking about where she needs to get the runs away from because in the last couple of balls she's played a couple of good shots but straight to the fielders. And that has meant that Renuka Singh has bowled dot balls. This time a slower ball just outside of stump, cutting it away towards Deepthi Sharma. But as she dives, they have enough time to cut through for a single. 12 overs completed. Bangladesh at 6.25 runs per over have gone up to 75 for 2.
0: Renuka ka ek aur badhiya over samapt hua. Halanki pehli gend par jab unko chauka laga tha, to thoda sa dabav tha unke upar. Lekin achhi wapsi ki unhone us dabav ke bawajood aur इस ओवर में ज्यादा आजादी दी नहीं बांग्लादेश की बल्लेबाजों को शोभना मुस्तारी 23 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रही है, दो चौके अभी तक उनकी इस पारी में, और निगार सुल्ताना ने 11 गेंदों में 11

0: इस तरह से इस बीच की ओवरों में वापसी की है। अभी तक अगर पिछले 5 ओवर के आंकड़ों को देखें तो 28 रन सिर्फ खर्च किए हैं, एक सफलता अर्जित की है, 5.80 की औसत से रन बने। अगली गेंद नए ओवर की शुरुआत राधा यादव की तरफ से, पहली गेंद और इस गेंद को खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, एक रन और मिलेगा, इस एक रन से स्कोर में इजाफा और होता हुआ बांग्लादेश के 76 हो गया स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। खास बात दिबायन ये भी है कि अभी तक जो 2 सफलता मिली है भारत को दोनों 30 गेंदबाजों की तरफ से मिली है, जबकि हम बार बार चर्चा कर रही हैं कि स्पिनर्स के लिए ये पिच काफी मददगार है, उस लिहाज से अभी तो कुछ कामयाबी आई नहीं है। अगली गेंद इस बार खेला है ऑन साइड में डीप मिड विकेट से, जब तक फील्डर आगे की तरफ आए उठाकर गेंद को वापस करें, एक रन और आता हुआ।
1: Yes, and it's also a function of how well Bangladesh, in a sense, have played against the spinners. Not too many risks taken, played from the crease, allowed the ball to turn, but things could be different in the second innings.
0: अगली गेंद इस बार सुरक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से खेला, गेंद को रन को चुरा लिया फील्डर के सामने से, थोड़ी सी धीमी रफ्तार से फील्डर तक गेंद पहुंच रही थी और उसका पूरा अनुमान लगाते हुए इस मौके पर रन को चुराया, एक रन और जुड़ता हुआ इस समय बांग्लादेश के लिए 78 2 विकेट का नुकसान पर। कैच जो आज भारत ने छोड़े हैं 4, उसका क्या नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दबाव निश्चित रूप से भारतीय गेंदबाजों के ऊपर था, वापसी की है भारतीय गेंदबाजों ने, एक रन और इस बीच में आया है, स्कोर हुआ 79 2 विकेट के नुकसान पर, रन रेट 6.24 का। 13वां ओवर चल रहा है, राधा यादव गेंदबाजी कर रही हैं जिन्हें आज खास तौर पर टीम में शामिल किया गया, 4 गेंदों में 4 रन अभी तक उन्होंने दिए हैं और इस गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर लाभ किया, सीधे फील्डर के हाथों में एक कैच, आसान सा मिड ओवर और दीप्ति शर्मा ने यह कैच लपकाया, भारत की अनुभवी फील्डर, बहुत आसान सा कैच।
1: Yes, very well taken and well bowled by Radha, just changing the length of it. For a change, we saw Mustari using her feet, trying to be positive, just skipping down the wicket and almost pulling it off. But I suspect that's what made Radha just change, alter the length a little bit, and that's forced her to almost yawk herself and not quite get the right kind of elevation. The idea was right, the execution not quite so. Wanted to clear mid-off, but ended up chipping it straight to Deepthi Sharma. Big wicket because she was looking dangerous and she was dropped on one. So that will make Nandini Sharma feel a lot better now that Shobhana Mustari has to go back. 22 from 26 balls, caught Deepthi, bowled Radha.
0: जी हाँ, ये तीसरी सफलता भारत के लिए और हम चर्चा कर रहे थे कि स्पिनर्स को अभी तक भारत की तरफ से कोई कामयाबी नहीं मिली है, राधा यादव ने वो सफलता स्पिनर्स की तरफ से भारत को दिलाई है और तीसरा विकेट भारत के लिए उन्होंने झटका है। अगर इस मुकाबले के अभी तक सभी विकेटों की बात करें, एक विकेट मिला था रेणुका सिंह यादव को, नंदिनी शर्मा ने दूसरा विकेट लिया था और अब राधा यादव के खाते में एक विकेट, तो थोड़ी सी परेशानी इस समय बांग्लादेश के लिए बढ़ती हुई। और मुस्तारी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, अभी तक 26 गेंदों में 22 रन उन्होंने बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से दूसरे विकेट के लिए साझेदारी उन्होंने की थी फिरदौस के साथ, एक और साझेदारी अपनी कप्तान निगार सुल्ताना के साथ अगर करने में कामयाब रही तो बांग्लादेश एक अच्छा खासा टोटल खड़ा कर सकता है। हालांकि तारीफ भारतीय फील्डिंग की, भारतीय गेंदबाजों की और भारतीय कप्तान की करनी होगी। ये 13वां ओवर चल रहा है, 79 रन है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, अंतिम गेंद राधा यादव के इस ओवर की और इस गेंद को नई बल्लेबाज शर्मिन ने खेला, पॉइंट की तरफ रन नहीं मिलेगा, ओवर की समाप्ति, 13 ओवरों के बाद स्कोर 79 3 विकेट के नुकसान पर, बांग्लादेश का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए।
1: 79 for 3, successful over. The first spinner to have success, as Dharmendra was mentioning, Radha Yadav, 1 for 10 from her 2 overs. And the new batter in, also one of their most experienced players, Sharmeen Akhtar Shupta, 30 years of age, right-hand bat, 37th match for her, 605 runs. Has a high score of 63, scored that against USA in January this year. And in the same month also scored a 52 against Ireland. So those 250 in T20 internationals. A lot of these women, particularly for Bangladesh, have played a number of matches against India. But India have had the better share of all those results. 23 the head-to-head and 3-0 in terms of World Cups alone. So India have that wood over them, but 2018 famously the Asia Cup where Bangladesh beat India first in the league stages and then in the final as well, a dramatic match which was won in the final. Now Nandini Sharma in for a third over, outside off stump, played away with the open face of the bat, it's running away for 4, there's no chasing this one, 4 more for Nigar.
2: Ye laga abha ka choka.
1: Such a good batter when she uses the pace of the bowler, just opens the face of the blade, standing, just shuffling across, covering her stumps and forcing Nandini to go.

0: slightly wider, and knowing that there's a gap between short third and backward point, just guiding the ball into that. And once it went away on that, there was absolutely no stopping it from the Indians on this very fast outfield at Manchester. It must be said, this time it's been an unusually hot summer in England. Outside off stump, slower ball, back of the hand, played away on the offside. This is running away towards four, but it's well fielded by Renuka Singh. Gets across from a deep point and restricts the scoring just to two. But the skipper is getting a move on. Now she's moved along to 19 from 15 balls, and Bangladesh are at 85 for three. Well placed to go for that final assault, but she will need some support from the other end, that's for sure. And Sharmeen Akhtar, the batters to follow, Ritu Moni, Shodna Akhtar, Rabia Khan, Nahida Akhtar, all of them will have a vital role to play if they are to get somewhere in the vicinity of 140 or 150, which is what they should be aiming for. Fuller length, just outside off stump, played away on the onside, straight towards Jemima Rodrigues at long on. And that takes Nigar off strike. She's 20 of 16 balls. And it brings the new batter on strike, Shobana, or Sharmeen Akhtar rather. Sharmeen Akhtar has batted at number 3 in the past in some of the matches in this tournament, so it's not unfamiliar territory for her now, walking in at in the 14th over with a consolidation job required. Just faced the one ball from Radha Yadav in the previous over, and she comes back on strike. 13.3 overs completed. Bangladesh 86 for 3 as Nandini Sharma comes in. Third over of hers. Short pitch, outside off stump. Will it be called wide? Yes, it is. Similar, not dissimilar, one should say, to the one that was bowled in that free hit. But on that occasion, the decision had gone in Nandini's favour. But this one was relatively much shorter. Just a comfortable decision for the umpire. Not such a comfortable take for Richa, who had to pretty much put on her flying skates and get to that ball well over her head. Standing right up to the stumps, as she often tends to do against the Indian seamers. Richa Ghosh with that helmet in place. Slow ball, played up, looped up, but just beyond Nandini in her follow-through. And she turns back, and that allows Sharmeen Akhtar to rotate the strike and get her first single. This over proving to be a good one from a Bangladesh perspective. 9 runs already off it. They started this over at 79 for 3, and from there they moved along to 88 for 3 with still 2 legal balls to go in this over. A 4, a 2, then 2 singles and a wide as well, which has meant that Nandini is a little under pressure. In her third over, 2.4 overs bowled, 1 for 24. Comes in outside off stump, yet again guided through that gap between backward point and short third. This will also run away for 4 more for Nigar Sultana Jyoti. Ye laga, abha ka choka. Really exceptional at this shot, Dharmendra.
1: Bilkul. खाली जगह है बिल्कुल तलाशी और बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ बहुत बढ़िया प्लेसमेंट के साथ लगाया गया ये स्ट्रोक 4 रन आए हैं इस ओवर में एक और दबाव नंदिनी के ऊपर
0: एंड जस्ट द वे दैट पर्टिकुलरली यास्तिका भाटिया हैज बीन रनिंग आफ्टर द बॉल शी हैज जस्ट रिकवर्ड नॉट टू लॉन्ग अगो फ्रॉम अ नी इंजरी इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट शी इज नॉट 100% फिट व्हिच बेग्स द क्वेश्चन व्हाई आर इंडिया कंटिन्यूअली इन्वेस्टिंग ऑन हर दिस टाइम इट्स अ फुल टॉस ऑन द पैड्स एंड इट्स बीन व्हिप्ड अवे टुवर्ड्स डीप स्क्वायर लेग फॉर येट अनदर 4
2: ये लगा आभा का चौका
0: मैसिव ओवर द 17 ऑफ इट इट्स 96 फॉर 3 आफ्टर द 14th
1: बहुत महंगा ओवर ये भारत के लिहाज से नंदिनी का हालांकि नंदिनी ने एक सफलता जरूर दिलाई थी लेकिन ये ओवर एक तरह से वापसी कराने में बांग्लादेश को कामयाब रहा है इस मैच में एक दबाव बढ़ रहा था बन रहा था बांग्लादेश के ऊपर लेकिन नंदिनी के इस ओवर से जो 17 रन का ओवर रहा है वो दबाव काफी हद तक हटता हुआ और स्कोर बांग्लादेश का बढ़ता हुआ 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस मुकाबले में अगर 140 के आसपास स्कोर हो गया तो इतना आसान होगा नहीं भारतीय टीम के लिए भी हालांकि स्पिनर्स को अभी तक कुछ खास मदद भारतीय स्पिनर्स को खासतौर पर नहीं मिली है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दूसरी पारी में ज्यादा गेंदबाजों के लिए मदद होगी इस पिच में
0: Absolutely, and the other concern, Dharmendra, is that India shouldn't start thinking about the net run rate. First aim should be whatever Bangladesh make, their first aim should be to try and get past that, irrespective of how many overs it takes, because if they start obsessing over trying to get there in a specific number of overs, then there's every likelihood that they'll bring some of the Bangladesh bowlers into this particular equation. And on this pitch, I suspect the Bangladesh attack, which is quite spin-heavy, will also enjoy themselves. There's a lot of experience in their spinners. And just the one experienced off-spinner which they didn't pick today, Sultana Khatun, who has a very good record against India. I was expecting them to perhaps pick her, but they've gone with the combination which won or did the trick against Pakistan in the previous match.
1: जहां तक इस मुकाबले की बात है, टॉस बांग्लादेश ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिलारा अख्तर और जुआरिया फिरदौस ने पारी की शुरुआत की। जल्दी आउट हो गई अख्तर, जिन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए, और रेणुका सिंह की शिकार हुई। शिचरणी ने उनका कैच लपका था। उसके बाद एक अच्छी साझेदारी हुई 50 से अधिक रनों की फिरदौस और शोभना मुस्तारी के बीच में। दूसरा विकेट बांग्लादेश ने जब गंवाया तो वो विकेट था फिरदौस का, जो 33 रन बनाकर आउट हुई। अच्छी पारी उन्होंने खेली, 31 गेंदों में 5 चौके उन्होंने लगाए थे, 106.45 की स्ट्राइक से रन रेट बनाए। और उसके बाद शोभना मुस्तारी तीसरा शिकार भारत के लिए हुई, और भारत की तरफ से उनको राधा यादव ने आउट किया। दीप्ति शर्मा ने उनका कैच लपका था, 26 गेंदों में 22 रन बनाए थे, 2 चौके लगाए थे। इस समय क्रीज पर कप्तान निगार सुल्ताना और उनके साथ शर्मिन अख्तर दोनों इस समय बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं, और इस पहली गेंद का नए ओवर की शुरुआत कर रही हैं श्रीचरणी के शर्मिन, और इस गेंद को स्वीप किया है स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे की तरफ। 1 रन और जोड़ने में कामयाब रही हैं इस नए ओवर की पहली गेंद पर। स्कोर बढ़ता हुआ 97, 3 विकेट के नुकसान पर। 15वां ओवर शुरू हुआ है, अभी भी बहुत सारे ओवर बचे हुए हैं बांग्लादेश के लिए, और इस अंदाज में अगर बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करती रही, विकेट सुरक्षित रहे, तो 150 तक बेस्कोर जा सकता है। दूसरी गेंद इस बार धीमी रफ्तार की गेंद, हवा में थोड़ी सी ज्यादा गेंद को छोड़ा था इस मौके पर श्रीचरणी ने, और अंत में सिर्फ आगे आकर बल्ले को दिखाते हुए मुंह उसका खोलते हुए सामने की तरफ खेला। कोई रन इस मौके पर नहीं बनेगा। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेला है सामने की तरफ सुरक्षात्मक तरीके से फॉलो थ्रू में। 7 से 14 ओवरों के बीच की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 56 रन बनाए बांग्लादेश की टीम ने और 2 विकेट गवाए थे। धन्यवाद स्कोरर हमारे वेंकट बाला रेड्डी इस जानकारी के लिए। अगली गेंद इस ओवर की, और इस बार क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का प्रयास पूरी तरह से गेंद की पिच तक नहीं पहुंच सकी। अंत में बल्ला भर अड़ाया, अंदरूनी निगी किनारा लिया इस गेंद ने बल्ले का, और मिड ऑन की तरफ गेंद गई 1 रन के लिए। धीरे धीरे बांग्लादेश 100 रन के आंकड़े की तरफ बढ़ता हुआ, ये 15वां ओवर चल रहा है। लक्ष्य निश्चित रूप से बांग्लादेश के दिमाग में, उनके बल्लेबाजों के दिमाग में 150 का होगा। अगली गेंद इस बार बल्ले का मुंह खोला, थर्ड मैन की तरफ खेला, फील्डर भाग रही है उसके पीछे, गेंद को क्या रोक पाएंगी एक तेज रफ्तार से जाती हुई गेंद। हालांकि टाइम लगाकर इस गेंद को रोकने में कामयाबी, और निश्चित रूप से 4 रन बचाए हैं, 2 रन ही मिलेंगे इस मौके पर। इन 2 रनों से स्कोर जा पहुंचा बांग्लादेश का ठीक 100 रन, 3 विकेट के नुकसान पर इस 15वें ओवर में। अच्छी गेंदबाजी श्रीचरणी की तरफ से, लेकिन शर्मिन की तरफ से भी अच्छी बल्लेबाजी। उन्होंने देखा कि ऑफस्टंप के बाहर थोड़ी सी जगह है, उन्होंने बल्ले का मुंह खोला और उस खाली जगह में गेंद को प्लेस सा कर दिया। 2 रन के साथ 100 रन हो गए स्कोर। अगली गेंद, और इस बार बीट हुई है पूरी तरह से ऑफस्टंप के बाहर, हल्की सी टर्न हुई थी गेंद, ओवर समाप्त हुआ 15 ओवरों के बाद। स्कोर बांग्लादेश का 100 रन, 3 विकेट के नुकसान पर।
0: Yeah, it's a good position to be in, 100 for 3 after 15. You would think that from here, Bangladesh with those wickets in hand can aim for somewhere in the vicinity of 140 to 150, which we have right from the start said that will be a competitive total irrespective of how mighty the Indian batting lineup certainly is. And the key in many respects is their skipper, who's batting quite exceptionally on her part. And that's why a lot will rest on how well Nigar Sultana Jyoti goes from here. But it's been smart play because they've not taken too many chances against N. Sreecharani, who's been India's and the entire tournament's top wicket taker. Outstanding figures for her before today. 3 for 21 against Pakistan, 4 for 19 against the Netherlands, and then 3 for 24, even in that defeat against South Africa in the last match. Deepti Sharma comes back in, goes for the reverse. It does Nigar Sultana Jyoti, but doesn't quite make the right contact. A little smile, wry smile from her, a smile from Deepti as well. This is good to see the match being played in exceptional spirits. Bangladesh have been a very persistent rival for the Indians, even though the head-to-head is skewed in India's favour, but they've given India a few anxious moments across formats in recent years. The next ball punched down the ground and goes straight towards Jemima Rodrigues, who's fielding at long on. That single takes the score along to 101 for 3. It's another single for Nigar Sultana Jyoti, who moves along to 30, and it's also been called a no ball. So overstepping from Deepti Sharma leads to a free hit with Sharmin Akhtar on strike. 102 for 3 now, 15.1 overs. just undoing the good job from that first ball which Deepthi had bowled so beautifully. Skips down the wicket, strikes it down the ground, but there is a fielder in the deep. It is Jemima who does quite easy picking up for that particular shot. Would have been better off perhaps trying to make room and looking to go inside out, but just doesn't have that kind of strength at the moment, Sharmeen. 103 for 3, 15.2 overs bowled. Deepthi into her third over, no wicket thus far for 11. Looking for that elusive 356th international wicket, which will take her one clear of Jhulan. Next ball, back of a length, punched away towards deep mid-wicket, where Smriti Mandana does the cleaning up. Now, just to remind a lot of listeners that in women's cricket, unlike in men's cricket, it's a maximum of four fielders outside the inner ring. So that is the maximum that they can have, which means that there are five fielders mandatory inside the 30-yard circle at all times, even in these post-power play overs. The next ball worked away on the onside with the turn, and it will be fielded at deep backward square leg. Will fetch a single for the skipper, and that will take the score along to 105 for 3. 16th over in progress. Certainly they will be looking to launch in these last four overs which are coming up after this, and that is what they are slowly building towards. The skipper to play a big role in that. Sharmeen Akhtar currently on 6, Nigar Sultana Jyoti, the skipper, on strike, as Deepthi changes that angle, comes round the wicket, and yet again played away on the offside, but straight towards Nandini Sharma, who's fielding at point now. No possibility of a run. A very tidy comeback from Deepthi after that no ball. In spite of that, she's hardly given any runs in this over. Just the four singles and a no ball combining for 5 runs in this over. Comes in one final time. It's Jyoti who skips down the wicket and works it away towards Jemima at long on to pick up a single. 106 for 3 after 16 overs. 6 runs from that Deepthi Sharma over.
1: Kul milakar ye over kahen to Deepthi Sharma ka kafi कसा हुआ रहा. हालांकि एक नो बॉल थी, फ्री हिट भी थी, लेकिन उसका कुछ खास फायदा मिला नहीं बांग्लादेश की टीम को. आज गेंदबाजी की शुरुआत भारत की तरफ से शेफाली वर्मा ने की थी और उन्होंने कुल मिलाकर 2 ओवर किए हैं 11 रन खर्च करके. कोई सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी की. पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, हालांकि खुद को नियमित गेंदबाज मानती जरूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मौके उनको गेंदबाजी के मिलते नहीं. अब तक भारत ने इस मैच में 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है. शिफाली वर्मा, रेणुका सिंह, श्रीचरणी, नंदिनी शर्मा, दीप्ति शर्मा और राधा यादव. नए ओवर की शुरुआत और पहली गेंद पर ही भारत को सफलता मिली है. राधा यादव ने बल्लेबाज को निमंत्रण दिया आगे निकलने का. इस मौके पर कप्तान निगार सुल्ताना क्रीज से बाहर निकली बड़े स्ट्रोक के लिए. पूरी तरह से लाइन को चूकी और विकेट के पीछे ऋचा घोष ने कोई गलती नहीं की. स्टंप बिखेर दिया, गिल्लियां बिखेर दी, फ्लाइट से पूरी तरह से इस मौके पर चकमा खा गई और भारत के लिए 4th सफलता एक अहम मौके पर.
0: Yeah, this was that intent, that aggressive intent shown by the skipper, looking to skip down the wicket, but Radha may have spotted that, just fired it in a little quicker, a little wider, and that's what made the difference. She missed it altogether, sweeping it under the bat, and she goes for 32 from 27. It's been a quality innings, but the first mistake has led to her wicket, and it's a smart bit of keeping and stumping as well from Richa Ghosh. And now that she is gone, a lot of responsibility now on the remaining batters to try and get them to somewhere in the vicinity of 140, even a 135 from here looks like it could be a good total. But this has probably meant the difference between 140 and 150. Had Nigar Sultana Jyoti been out there, the chances of that extra 15 or 20 runs would always have loomed over the Indians.
1: निश्चित रूप से यहाँ पर एक मौका जरूर इस विकेट के बाद बांग्लादेश ने गंवाया है. कप्तान का आउट होना परेशानी का कारण बन सकता है और वो जो रन है 10 से 15 रन पे रह सकती है बांग्लादेश की टीम. और अगली गेंद को इस बार नई बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेला 1 रन के लिए. शोरना अख्तर नई बल्लेबाज आई है और इस 1 रन से अपना खाता खोला. स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन 4 विकेट के नुकसान पर. शर्मिन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी अब आन पड़ी है. इस बार उन्होंने लेग स्टंप की तरफ हटकर थोड़ा सा स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी. खेला इस गेंद को स्वीपर कवर की तरफ. 1 रन इस मौके पर उनको मिला है और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर. राधा यादव की अच्छी गेंदबाजी, अभी तक भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज. हालांकि एक कैच आज भी उनसे छूटा था, लेकिन उस दबाव से बाहर निकलते हुए 2 सफलताएं अब तक अर्जित की. अगली गेंद को इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला. 1 रन दूसरे रन के लिए पलटना चाहती थी, लेकिन फील्डर तेजी के साथ इस गेंद पर हावी हुई. दूसरे रन की संभावना को तत्काल समाप्त किया. इससे एक रन से स्कोर हो गया 109 रन चार विकेट का नुकसान पर। राधा यादव को थोड़ी सी मदद मिली है, जब गेंद को उन्होंने हवा में छोड़ा है, फ्लाइट दी है, तो टर्न भी थोड़ी बहुत उनको हासिल हुई है। इस बार लगभग फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया, एक रन और आता हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन चार विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने सफलता अर्जित की थी और अभी तक स्कोर 110 हुआ है। एक गेंद अभी भी इस ओवर की आनी बाकी है। इस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से खेला, एक रन के लिए भागी गेंदबाज, खुद पहुंची गेंद तक, थ्रो किया स्टंप्स की तरफ, लेकिन स्टंप पर गेंद टकराई नहीं, सुरक्षित अपनी क्रीज में दोनों बल्लेबाज। इसके साथ ही 17वें ओवर की समाप्ति, स्कोर 111 है चार विकेट के नुकसान पर। रन रेट इस समय बांग्लादेश का 6.53 का, और ये जो विकेट गंवाया बांग्लादेश ने पिछले ओवर में कप्तान का, ये कुछ रनों में कटौती कर सकता है बांग्लादेश के लिए।
0: इट सर्टनली कुड एब्सोल्युटली, बट लेट्स नॉट फॉरगेट शोना अख्तर इज द प्लेयर इन फॉर्म इन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, स्कोर 39 नॉट आउट फ्रॉम 22 बॉल्स, जस्ट 19 ईयर्स ऑफ एज, प्राइमरली प्लेज एज अ लेग स्पिनर बट हैज द एबिलिटी टू हिट इट लॉन्ग एंड वाइड, एंड दैट्स व्हाट द इंडियंस मस्ट बी वेरी ऑफ। एंड हु न्यू राधा यादव रिस्टोर्ड टू द टीम टुडे इज करेंटली द बेस्ट बोलर विद 2 विकेट्स अगेंस्ट हर नेम। Those wickets coming off Shobana Mustari for 22 and Nigar Sultana Jyoti, the skipper, for 32. One of them caught by Deepti Sharma and the other stumped by Richa Ghosh. So India, in spite of some lapses in the field, now seem to have got their house in order as Deepti Sharma now comes in for her third, or for her fourth and final over, the 18th of the innings. Perhaps we'll be looking to finish with Seam then, with one over each left for Renuka as well as Nandini after this. This one was played in towards deep mid wicket, which picks up another single and takes the score with that particular single along to 112 now for those loss of 4 wickets that they have lost in the past. 112 for 4, 17.1 overs bowled. The maximum that they have ever managed against India was 142, but that was chasing one of those 2 victories or one of those 3 victories that they have had against the Indians in this format. That was in the 2018 Women's Asia Cup. Next ball played away on the onside, picks up a single. The boundaries certainly have dried up, almost 4 overs since the last boundary was scored. And that's meant that the Indian discipline has been in evidence, especially from the bowlers. And the spinners in particular doing a very good job. Deepti Sharma into her fourth and final over, none for 16 from her. Radha Yadav 2 for 15 from her 3 overs. And N. Sri Charani 3 tidy overs for 18, no wickets taken. Next ball played away on the onside, but Deepti is very quick across the turf. Very good fielder as it is, but especially of her own bowling. Gets across to it and makes sure that there's no possibility of any runs. If there are no wides or no balls, there are still 15 balls to come. And how well can Bangladesh maximize this? Oh no, in the meantime, another no ball signaled, which will mean that despite a dot ball, it is a free hit now for Shorna Akhtar, and she needs no second invitation, but this will probably just help her free herself up a little bit more. The youngster, the teenager, 19 years of age, takes strike, skips down the wicket, plays it away on the offside, and it's just got in through the infield, and this is running away for a four after a long time. India have bowled a few no balls and this is the first one perhaps which has been properly punished.
1: बिल्कुल, और खासतौर पर दीप्ति शर्मा का ये दूसरा नो बॉल था और इस मौके पर जरूर फायदा उठाने में बांग्लादेश की बल्लेबाज कामयाब रही हैं।
0: Shorna Akhtar is a danger woman in this situation because she can wield the long handle effectively as she showed. She was able to access the offside with a strong ring of fielders. This time looking to go leg side with the turn and plays it away on the onside. Wants to, but very quick fielding yet again from the Indians. N. Sri Charani was very quick to get across from square leg, and that single takes the score along to 119 in the process. 119 for 4 at the moment. And thanks to that no ball, this is turning out to be a remarkably good over from the Bangladeshi perspective because they've already picked up 8 runs and there are still 2 balls, legal balls to come. Deepti round the wicket, worked away on the onside, almost returning to her on the bounce. And then she whips in a throw at the striker's end, almost as if to tell Sharmeen Akhtar that there's no getting away from me. Let's not think about pinching a single of that one. Last ball of the spell from Deepti. Remember, poised on 355 international wickets, needs that one wicket to move ahead of Julan Goswami. But looks like the legend will hold on to that record, joint record for the moment, unless something happens of this last ball. Deepti comes down the wicket, just past Deepti, and this has been struck nicely enough, but it won't run away for 4 because Jemima Rodriguez is very good to clean up and restrict the scoring to just one. 120 for four, 18 overs bowled, just two overs to come.
1: तो दो ओवरों की बल्लेबाजी और बांग्लादेश की टीम को करनी है और इस समय बांग्लादेश की टीम अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है. रनों के लिहाज से अगर बात करें 120 रन बना लिए हैं चार विकेट के नुकसान पर. दीप्ति शर्मा को इस मैच में कोई भी विकेट नहीं मिला. चार ओवरों की गेंदबाजी उन्होंने कर ली है जो अधिकतम गेंदबाजी की जा सकती है. 23 रन खर्च किए, कोई सफलता उनके खाते में आई नहीं. इकॉनमी उनकी 5.75 की रही. राधा यादव सबसे सफल गेंदबाज, तीन ओवरों में 15 रन देकर उन्होंने दो विकेट लिए हैं. लेकिन अब जो ये नया ओवर होगा 19वां ओवर बांग्लादेश की पारी का, ये जिम्मेदारी किसके कंधे पर होगी? क्या राधा यादव पर दाव लगाएंगे कप्तान हरमनप्रीत कौर? ये देखना दिलचस्प होगा इस समय, क्योंकि अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो उसमें रेणुका सिंह ठाकुर का ओवर भी बचा हुआ है और नंदिनी शर्मा का भी ओवर बचा हुआ है. तो इंतजार इस बात का कि गेंदबाजी किसके हाथों में सौंपी जाती है. शर्मिन अख्तर 12 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं और शोरना अख्तर ने 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं. कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता इस समय बांग्लादेश के लिए अगर उनको स्कोर को 230 से 240 के बीच में कहीं पहुंचाना है. 250 का लक्ष्य अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहां से दो ओवरों में 30 रन बनाने होंगे अगर 250 तक पहुंचना है, और 15 रन प्रति ओवर थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर लग रहा है.
0: एब्सोल्युटली, इट लुक्स लाइक इट विल प्रोबब्ली बी इन द विसिनिटी ऑफ 130-135 एट द मोमेंट, एंड दैट विल बी अ गुड टोटल कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बांग्लादेश लाइज इन स्पिनर्स. हाउएवर, इंडिया हैज अ पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप एज वेल, मेक नो मिस्टेक. इन दैट टॉप सिक्स और टॉप सेवन देर आर एटलीस्ट सिक्स प्लेयर्स हु हैव मोर देन 1000 रन्स इन दिस फॉर्मेट.
1: और नए ओवर की शुरुआत, और पहली गेंद पर ही भारत को क्या यहां पर कामयाबी मिली है? अगली गेंद की तैयारी, और इस गेंद को खेला है ऑन साइड में एक रन के लिए. 122 पांच विकेट के नुकसान पर. तेजी के साथ ये रन पूरा किया, थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई थी लेकिन तेजी के साथ रन के लिए भागी. 122 सात विकेट के नुकसान पर. 19वें ओवर की ये दूसरी गेंद, हवा में इस गेंद को उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर थी लेकिन अनुमान उतना सही था नहीं. एक रन और फिर दूसरे रन के लिए भी तेजी के साथ पलटी, दो रन, और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 124 पांच विकेट के नुकसान पर. राधा यादव के हाथ में ही गेंदबाजी है. राधा की अगली गेंद को इस बार खेला है ऑन साइड में, फील्डर पहुंच पाएंगी क्या? नहीं, जी नहीं, इस मौके पर नहीं पहुंच पाए. चार रन आता हुआ.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: Yeah, it looks like an interesting decision because from the look of things, Sharmeen Akhtar has been retired out. So that has meant that Ritu Moni has come in and she's been more than effective. 8 of 3 balls. So perfect start for this little cameo from Ritu.
1: Yeah, so one wicket, we can say that Bangladesh has not lost the gendwaz, but has been retired out. बल्लेबाज अगली गेंद, और इस बार स्टंप्स पर जाकर सीधी टकराई है गेंद. एक और सफलता इस समय राधा यादव के लिए, भारत के लिए एक और कामयाबी, और बांग्लादेश ने इस बीच अपना छठा विकेट गंवाया.
0: राधा फायरिंग इट इन, शी इज डन दिस वेल. शी इज एक्चुअली स्टक टू दिस फुलर लेंथ, ऑलमोस्ट अ ब्लॉक होल डिलीवरी, एंड रितु मोनी वॉज जस्ट लुकिंग टू मेक सम रूम एंड एक्सेस द ऑफ साइड, बट एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बॉल, इट्स द ओल्ड डिक्टम, यू मिस आई हिट, एंड दैट्स एक्जैक्टली वॉट हैपन. लिटिल बिट ऑफ टर्न एंड दैट पुट पेड टू ऑल होप्स ऑफ रितु, बट शी इज डन अ गुड जॉब. शी स्कोर्ड 8 of 4 एंड इट्स जस्ट द काइंड ऑफ फिनिशिंग किक विच दिस बांग्लादेश इनिंग्स नीडेड एज द 6 विकेट फॉल्स इवेंचुअली फॉर 128.
1: तो रितु मोनी इस गेंद को यॉर्क बैठी और अपना विकेट उन्होंने गंवाया है. बहुत जोरदार वापसी भारत की कुल मिलाकर. हालांकि रन पिछले 5 ओवर में बांग्लादेश ने तेज गति के साथ बनाए हैं, 42 रन बनाए हैं, 3 विकेट भी गंवाए हैं. इस वजह से थोड़ा सा दबाव बढ़ा है बांग्लादेश के ऊपर. क्या लक्ष्य होगा भारत के लिए इस मुकाबले में, यह देखना दिलचस्प होगा. शोरना अख्तर अभी भी मैदान पर मौजूद हैं, 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं. नई बल्लेबाज राबिया आई है मैदान पर, राधा यादव की गेंदबाजी का सामना करेंगी. 3 विकेट ले चुकी है राधा यादव. अगली गेंद, इस बार स्वीप किया है इस गेंद को बैकवर्ड स्कारले की तरफ, फील्डर पीछे मौजूद हैं. 1 रन

0: कप्तान निगार सुल्ताना के 32 रन और ओपनिंग बैटर फिरदौस के 33 रन की बदौलत बांग्लादेश ने भारत को लक्ष्य दिया है 137 रन का। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण टिकिया
1: और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा मौजूद है। चेतन, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका।
2: धन्यवाद।
1: विजय धैया हमारे साथ मौजूद है जो एक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर है और आजकल आपको कोचिंग के रूप में एक बतौर एक कोच T20 सर्किट में बड़े सक्रिय नजर आते हैं, कॉमेंटेटर है, ब्रॉडकास्टर है और आज हमारे एक्सपर्ट पैनल में मौजूद है। विजय, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: शुक्रिया।
1: और साथ साथ जाने माने खेल पत्रकार शशांक शेखर भी हमारे साथ मौजूद है। शशांक, बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद।
1: सो 136/8 इज व्हाट बांग्लादेश हैव मैनेज्ड। चेतन, सबसे पहले आपके तरफ योर फर्स्ट रिएक्शंस टू दिस स्कोर एंड हाउ द इनिंग्स पैंड आउट।
2: देखिए, अगर आप बात करें बीच में एक आधा बॉलर तो ऐसा होता है जो रन ज्यादा लौटाता है। अगर आप बात करें, नंदिनी काफी एक्सपेंसिव आज रही लेकिन जैसी फील्डिंग भारतीय टीम की थी, अगर आप 136 की बात करें, 137 का टारगेट है, ये कम से कम 115-120 के आसपास का टारगेट होता है अगर सारे कैचेस पकड़े जाते। देखिए, कैचेस विन मैचेस, ये हर समय कहा जाता है, कैचेस ही हैं, विकेट्स गिरेंगी, रनों पे अंकुश लगेगा। तो आज मुझे लगता है कि भारतीय टीम अपनी फील्डिंग से बिल्कुल नाखुश होगी। जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी भारतीय टीम ने कैचेस छोड़े थे, हमने देखा नतीजा क्या हुआ और आज हमने कैचेस छोड़े हैं और कोई एक दो कैचेस नहीं, मैं कहता हूं पूरा बैग भर के आज कैचेस छोड़े हैं। एक हो मतलब चार गेंदों में आपने तीन कैचेस छोड़ दिए, तो वो कहीं ना ड्रेसिंग रूम में चीजें जाती हैं, वो आपको आपके बैक ऑफ योर माइंड रहती है। जिसने कैच छोड़ा वो अगर बल्लेबाज है तो उसको वो चीजें अफेक्ट करती है। लक्ष्य 136 रन, 137 का टारगेट, भारतीय टीम आराम से इसको पूरा कर ले।
0: जी बिल्कुल, ड्रॉप कैचेस भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से चिंता का विषय है। लेकिन विजय, एक जो पॉजिटिव आज देखने को मिला है वो है राधा यादव की वापसी। अपने पहले ही मैच में उन्होंने तीन विकेट, वो भी तीन इंपॉर्टेंट विकेट, पहला शोभना मुस्तारी का, उसके बाद कप्तान निगार सुल्ताना का विकेट और फिर बाद में रितु मोनी का विकेट। शानदार कमबैक।
3: बहुत ही बढ़िया कमबैक और आई थिंक ये एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा बहुत बढ़िया रहता है और इसी वजह से शायद जो भारतीय थिंक टैंक है उन्होंने ये सोचा होगा कि आप एक उस खिलाड़ी को जिसका कॉन्फिडेंस एक अपोजिशन के खिलाफ बढ़िया रहता है उनको आप ये मौका दें। लेकिन एक और चीज़ की फिर से यहाँ पर पुष्टि हुई है कि एक स्पिनर को खिलाया गया इस मैच में, जो इस टूर्नामेंट में उनका पहला मैच है, वो आके अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप बॉलिंग कार्ड की तरफ नजर डालेंगे तो दो मीडियम पेसर्स आपके आपको वहाँ दिखेंगे जिन्होंने अपने चार ओवर पूरे नहीं किए, तो जो चिंता का सबब आपके लिए बना हुआ है आज, वो प्रेशर जो आप हम बात कर रहे हैं वो पहले छह ओवरों में बहुत बढ़िया बैटर्स ने जो थे बांग्लादेश के, उन्होंने भारतीय टीम के ऊपर डाला। मुझे लगता है कि अगर आप मैच शुरू होने से पहले उन्हें इतने रन देते तो शायद वो ले लेते, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी जहां पर वो ये डिसअपॉइंटेड होंगे कि उन्होंने 150 का आंकड़ा पार नहीं किया।
1: और इसी चीज की हम चर्चा पहले प्रोग्राम में भी कर रहे थे। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 16 खिलाड़ियों का इस्तेमाल भारतीय टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में कर चुकी है। 15 का स्क्वाड होता है, श्रेयंका पाटिल चोट के चलते बाहर हो गई, 16 खिलाड़ियों का प्रयोग भारतीय टीम कर चुकी है। और शशांक, हमने देखा कि कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने अपने 15 के 15 खिलाड़ी अभी तक इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल किए हों। कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि शायद अभी भी हम खोज कर रहे हैं उस परफेक्ट कॉम्बिनेशन की।
4: डेफिनेटली बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इससे ये भी पता चलता है कि प्रिपरेशन के लेवल पे कुछ कमियां रह गई थी, सिलेक्शन और प्रिपरेशन और एक वेल इंटीग्रेटेड विजन के साथ इस टूर्नामेंट में हम शायद नहीं आ पाए, या पहले मैचेस में खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो था उम्मीद से नीचे रह गया। तो ये तय बात है कि आप इतने सारे खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं, मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, तो एक तो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी घटता है, दूसरा कि वो एक जो 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन होता है जो सब एक साथ टीम में मैदान में उतरती हैं और फिर खेलती हैं, वो भी कई बार वो ब्रेक होता है। तो कुल मिलाकर के ये कहीं से भी आदर्श स्थिति नहीं है और चैंपियन टीम्स इस तरह से तो डेफिनेटली नहीं उतरती हैं मैदान में।
0: जी चेतन, आपने बात करी क्योंकि ड्रॉप कैचेस हमारी फील्डिंग की, लेकिन तारीफ करनी होगी बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना की भी। कई सारे रिकॉर्ड्स हैं टी20 में उनके नाम, बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड उनके नाम है, सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है, और टी20 में शतक जड़ने वाली पहली बांग्लादेशी खिलाड़ी भी है वो।
2: देखिए आज 32 रन बनाए, और अगर हम उनका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 118 के स्ट्राइक रेट से जब आप रन्स बनाते हैं वहां से आप अनुमान लगा सकते हैं मिडल ऑर्डर की तरफ से रन्स बने हैं। देखिए हर समय कहते हैं कि अगर ऊपर से अगर आपको रन ना मिले, जैसे पहली विकेट 8 रन पर गिर गई थी, उसके बाद आपको एक स्टेबिलिटी की जरूरत थी, साझेदारियों की जरूरत थी, साझेदारियों को आप बुनेंगे तभी आप मैच में आगे जा पाएंगे। और आप बांग्लादेश की बैटिंग देखें, नंबर 2, 3, 4 सबने आके रन बनाए हैं, बेशक 33, 22, 32, तो अगर आप उस स्थिति में टीम को लाकर खड़ा कर देते हैं, जैसे विजय ने भी कहा कि 15 रन 14 और 15 रन, 150 साइकोलॉजिकल आपके मतलब जहन में चीज चलती रहती है कि 150 का टारगेट है, बट 137 जो चेज करना है वो भी चीजें इतनी आसान होगी नहीं। देखिए बनाना पड़ेगा, उन्होंने रन ऑन बोर्ड लगा दिए हैं, आपको करने पड़ेंगे, और चेज हर समय प्रेशर में चीजें आसान नहीं होती। तो लेट्स होप एक अच्छी साझेदारी ऊपर से पन पे, अगर आप एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे मिडल ऑर्डर के लिए, यू विल डेफिनेटली विन दिस गेम।
3: मैं एक बार ये चीज ऐड करना चाहूंगा, आपने बांग्लादेशी कप्तान के बारे में बात करी, कुछ लोग कप्तान होते हैं और कुछ लोग नायक होते हैं, ये उनमें से हैं। इनकी तरफ अगर आप देखेंगे तो इनका रोल सिर्फ वही नहीं है जो फील्ड में नजर आता है, इनका रोल फील्ड के बाहर भी है। कुछ ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जो आप जिनको आप आदर्श मानकर वो इंस्पायर करते हैं। तो अगर बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट के बारे में आप बात करेंगे तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी यंग लड़कियों को वहां पर इंस्पायर किया है इस गेम को खेलने के लिए। तो इनका जो कद है वो और ज्यादा बड़ा है उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर, और वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी जब आप बात करते हैं कुछ नायकों की तो इनका वहां जिक्र होता है, ये उस तरीके की खिलाड़ी है।
0: जी नायकों पर हम फिर से आएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपना सवाल पूछे।
1: जी तो भारत ने कैच ड्रॉप किए, लगातार ये चर्चा का विषय है, और शशांक आपकी तरफ आऊंगा मैं। पहले 6 ओवर में हमने देखा 4 कैच ड्रॉप हुए, पाकिस्तान के खिलाफ भी 3 कैच ड्रॉप हुए थे, कैसे देखते हैं आप इसको, और ऐसे में फील्डिंग कोच की भूमिका को कैसे देखते हैं?
4: ये बड़ा दिस इज रियली ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक भारत की टीम डेफिनेटली 3-4 जो बड़ी टीम्स हैं महिला क्रिकेट में वर्ल्ड में, उनमें से एक टीम है, इस प्रकार की फील्डिंग का प्रदर्शन जो है, मुझे लगता है कि पहले भी कैचेस छूटते हैं मैचेस में और मिसफील्डिंग्स होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा खराब प्रदर्शन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी राघव यादव जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स हैं उन्होंने 2 कैच छोड़े थे, और आज भी उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ा, तो और बहुत सारी मिसफील्डिंग्स हुई, तो इससे ये क्यों हो रहा है ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता ही है फील्डिंग कोच पे। लेकिन इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, बड़े मैचेस का इनको अनुभव है, तो ये और ये एक ऐसी टीम से खेल रही है जहाँ पे इनके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं है, दे आर बिग फेवरेट्स टू विन दिस मैच, और बांग्लादेश को 23 में 20 मैचेस में हराया हुआ है इंडिया ने इसके पहले, तो इससे मुझे लगता है कि जिसको डिस्पिरिटेड टीम बोलते हैं ना, डिस्पिरिटेड और ये हारी हुई टीम, जैसे कि इनको लगता है कि अब ये टूर्नामेंट में इनका कोई भविष्य नहीं है, और जो फील्डिंग प्रदर्शन है इस मैच में उनकी बैटिंग पे शायद असर पड़ सकता है, और ये 137 रन जो है वो उतने आसान नहीं होंगे, और यही अगर ऐसा ही प्रदर्शन भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा तब तो कोई मतलब क्या कहें आप, समझ सकते हैं जो सबसे अच्छी टीम है
1: जी। तो अपने श्रोताओं को बता दें कि बांग्लादेश के द्वारा बनाया गया भारतीय टीम के खिलाफ ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है टी20 आईज में, तो 137 की चुनौती है। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं डिस्कस करने लायक, विजय फटाफट उन पर नजर डालेंगे। श्री चरणी ने आज एक बार फिर इंप्रेस किया, फिर दो विकेटें ली है और इसी के साथ टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाली वो खिलाड़ी बन गई है।
3: पहला वर्ल्ड कप खेल रही हैं अपने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप है उनकी तरफ अगर नजर डालेंगे तो वो कौन सी ओवर डालती हैं, सबसे मुश्किल ओवर आपको डालती हुई नजर आती हैं।
1: पावर
3: पहले 6 ओवर में डालती हैं और उसके बाद बहुत कम है वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखें कि आखिरी ओवरों में टी20 क्रिकेट के अंदर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी करते हुए देखे, और वो भी एक ऐसी खिलाड़ी जो अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आई है, नंबर वन बॉलर है इस समय टी20 क्रिकेट में। जहां तक वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में बात करें, ये सिर्फ स्किल के बारे में नहीं बताता है, ये इस यंगस्टर के माइंडसेट के बारे में भी बताता है कि वो रूप से भी कितनी मजबूत है।
0: जी जितन, अभी बात की विजय ने नायकों की, जैसे आज निगार सुल्ताना की परफॉर्मेंस रही है, और पिछले कुछ मैचेस में हम और खिलाड़ियों को देख चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए मारिजान काप ने वो काम किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिस पेरी ने वो काम किया पाकिस्तान के विरुद्ध अपने मैच में। अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो भारत की सबसे अनुभवी प्लेयर हरमनप्रीत कौर, 201वां टी20 उनका ये होगा, उनको स्टार्ट हर बार मिल रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं, एंड शी इज नॉट प्लेइंग हर नेचुरल गेम, एक शेल में दिख रही हैं।
2: देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोशिश करते हो, कोशिशें आपकी कामयाब होती नहीं है। हरमनप्रीत मतलब 200, अभी आपने अपने भी कहा 201 इंटरनेशनल गेम्स खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, वर्ल्ड कप का प्रेशर है और ये एक प्लेयर आपको मैचेस जिता नहीं पाएगा, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं ला पाएगा। देखिए, इट हैज़ टू बी ए कलेक्टिव एफर्ट। स्मृति की आप बात करें, शेफाली की बात करें, जमीमा की बात करें, दे हैव टू कम कलेक्टिव। देखिए, बहुत भरोसा है, मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि ऊपर के क्रम के बल्लेबाज जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे ना, आप मैचेस नहीं जीत पाएंगे। आज भी ये अप्लाई करता है भारतीय टीम को, आप जाइए ऊपर से रन्स बनाइए, शेफाली और स्मृति की जैसे हम बात करते हैं ऊपर से अच्छा स्टार्ट दें, देन ऑटोमेटिकली आपके पास जमीमा है, उसके बाद आपके पास हरमनप्रीत है। आप देखिए, ऊपर से स्टार्ट मिलेगा हर समय मिडिल ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन करेगा, जब ऊपर से स्टार्ट नहीं मिलता ना, देन स्ट्रगल शुरू होता है टीम्स का।
1: जी, तो अच्छे शुरुआत की हम उम्मीद कर रहे हैं। एंड विजय, once again we have to talk about Smriti and Shefali because they are the one who have to set the tone. How do you see this pan out, and who do you think is going to be the biggest threat from Bangladesh for these two players?
3: I think if you look at their bowling, they've got opening bowlers. That's one thing. If you want to defend this, you have to take early wickets, especially in first six overs. You have to at least take three wickets to put some sort of a pressure on the Indian side, because the strength is a top order. You put pressure on the top order, then you can challenge this Indian batting lineup. You talked about both the openers, completely different right hand left hand combination. We all know how they go about the business in first six overs.
5: भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट टी20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा।
6: अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के
5: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
7: Partnership with UK is taking many more dimensions.
8: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
5: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग

0: 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया, तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hiked to 2,500 rupees from 1st of July. Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from July 15. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
4: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
3: Venezuela's acting president, Delcy Rodriguez, today said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes rocked the country. The acting president had said earlier that at least 32 people had died after last night's 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes and that the toll was expected to rise. The quakes were among the strongest to strike Venezuela in more than a century and could be fell throughout the region. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. Government has hiked the fees for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passports Amendment Rules 2026 will come into force with effect from 1st of July. In a notification, the Minister of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. The existing fee for a 36-page passport is 1,500 rupees and for a 60-page passport is 2,000 rupees. In case of an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 36 pages, a sum of 5,000 rupees would be charged. For an ordinary passport, in lieu of lost or damaged passport containing 60 pages, the cost will be 6,000 rupees. India Today hosted the 11th BRICS Energy Ministers meeting in Gurugram, Haryana, under its BRICS Chairship 2026. The Ministry of Power said that the meeting brought together energy ministers, vice ministers and senior officials from BRICS member countries to discuss key global energy challenges and strengthen cooperation in the energy sector. It added that the meeting concluded with the adoption of the 11th BRICS Energy Ministers Joint Communique, reaffirming cooperation in energy security, sustainability, innovation, resilient infrastructure and capacity building. Addressing the meeting, Union Minister of Power Manohar Lal said, energy remains fundamental to economic growth, social progress and human development. He emphasized that developing countries need adequate time, resources and policy space to pursue sustainable development while meeting the aspirations of their people.
5: Energy remains fundamental to economic growth, social progress and human development. Affordable, reliable and sustainable energy is indispensable for achieving our developmental aspirations and the sustainable development goals. India assumes the BRICS chairship at a time when the global energy landscape is undergoing a profound transformation.
3: Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today met Minister of Petroleum of Iran Mohsin Paknijat on the sidelines of BRICS Energy Ministers meeting in Gurugram, Haryana today. In a social media post, Mr. Puri said that during the meeting, both leaders explored opportunities to cooperate in the energy sector. He noted that India remains committed to enhancing energy security through dialogue, partnership and mutually beneficial engagement. Uttar Pradesh government has taken action in the alleged Ram Temple donation anomaly case in Ayodhya and arrested three persons. ADG Lucknow Zone Praveen Kumar told Akashwani News that three persons have been arrested. He said that an FIR has been registered at Ayodhya police station on the complaint of Krishna Mohan, a member of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. The case has been registered under sections 306, 306.5 and 317. Of the Bharatiya Nyaya Samhita BNS. A total of eight people have been named as accused in the FIR, though no major or prominent name has been included. Six of the accused are reportedly cashiers. The action comes after the special investigation team submitted its investigation report. The probe was related to alleged irregularities in the handling of donations received for the Ram Temple. Railway Minister Ashwini Vaishnav held a review meeting today with senior railway officials where reforms aimed at making Indian railways the preferred mode of freight transport for various types of commodities were discussed. The meeting also highlighted that the success of recently developed specialized wagons for commodities such as cement and salt has demonstrated the importance of designing wagons in accordance with industry operational requirements. Commodity-specific wagons have improved loading, unloading and transportation efficiency, thereby enhancing the attractiveness of rail logistics. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. India's newly appointed High Commissioner to Bangladesh, Dinesh Trivedi, formally assumed office today after presenting his credentials to Bangladeshi President Mohammad Shahabuddin at Bangabhavan in Dhaka. Following the credential presentation ceremony at the Presidential Palace, Trivedi visited the Indian Visa Application Center, IVAC, in Dhaka to inspect its operations and interact with officials. Expressing satisfaction over the large number of applicants at the center, the High Commissioner announced the resumption of normal visa operations for Bangladeshi citizens. He said applications for tourist visas will be accepted from the 28th of this month.
6: I am very happy to announce that we are resuming our normal visa applications for tourist visas, which can

वर्तमान में खसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए भारतीय फजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने मुल्क में ही तैयार करदा इस निजाम की तारीफ करते हुए कहा कि इसने बालाकोट कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मिशनों में अपनी काबिल एतमाद कारकर्दगी को साबित कर दिया है। बांग्लादेश में भारत के नए तकर्रुकर्दा हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में वाकई बंगा भवन में बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपनी सिफारती असनाद पेश करने के बाद बाजाब्ता तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सदारती महल में असनाद पेश करने की तकरीब के बाद दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में भारतीय वीजा दरखास्त मरकज IVAC का दौरा किया, जहां उन्होंने मरकज के कामकाज का जायजा लिया और हुक्काम से मुलाकात की। इस मरकज में वीजा दरखास्त गुजारों की बड़ी तादाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हाई कमिश्नर ने देश के शहरियों के लिए मामूल की वीजा खिदमात दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सियाहती वीजा के लिए दरखास्तें इस माह की 28 तारीख से कबूल की जाएंगी। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने का दिन है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थी। नायब सर CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज उन सभी को खिराज अकीदत पेश किया जो इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अख्तियार के दिफा में साबित कदम रहे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि इमरजेंसी आईन पर बराह रास्त एक हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान सिविल आजादियों को मुअत्तल कर दिया गया था, इजहार राय की आजादी को खत्म कर दिया गया था और सियासी रहनुमाओं, सहाफियों और सामाजिक कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जोर देकर कहा है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 की निकात के दौरान किसी भी ऑपरेशनल कोताही के खिलाफ बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी होनी चाहिए। वो आज अनंतनाग जिले के पहलगाम में एक आला सतही मीटिंग की सदारत कर रहे थे जिसमें सालाना यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हिफाजती इकदाम, आफात से निपटने के इंतजाम और दिगर अहम इकदाम के लिए एक जामे और मजबूत मंसूबाबंदी का तरीकेकार अपनाने पर जोर दिया ताकि यात्रियों के लिए एक महफूज और यादगार यात्रा को यकीनी बनाया सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 4 दिन के लिए ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं शदीद और कहीं बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक बिहार, आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और शिमाल मशरकी रियासतों में कल मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में आज देर रात अमरीका के शहर फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मैच में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। ग्रुप ई के एक दिगर मैच में अमरीका में ईस्ट रूदरफोर्ड के मकाम पर जर्मनी और इक्वाडोर आमने सामने होंगे। ये दोनों मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 बजे शुरू होंगे। बाद में कल सुबह सवेरे अमरीका के शहर आर्लिंगटन में ग्रुप एफ के एक मैच में जापान का मुकाबला स्वीडन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक कल सुबह सवेरे 4:30 पर शुरू होगा। इससे पहले आज सुबह मोंटेरे के मकाम पर जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया पर 1-0 से जीत दर्ज की। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन अपनी पहली इनिंग्स में 4 विकेट के नुकसान पर 333 रन बना लिए हैं। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तजारती मुआहदा अब तक का सबसे जामे मुआहदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ताजियत के इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाईयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अतियात में खुर्द बुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। 1 जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5,000 रुपए होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: جنب. It's also available on a YouTube channel,
1: Countrywide.
0: News AIR Official.
1: Spotlight. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सोनू शर्मा।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत एक वैश्विक टेक पावर बनकर उठा है। पहले जहां भारत को केवल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाओं के एक विशाल उपभोक्ता के रूप में देखा जाता था, वहीं आज हमारा
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइज। इसके अंतर्गत
2: स्वदेशी
1: विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सोनू शर्मा।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत एक वैश्विक वरिष्ठ पावर आईटी विशेषज्ञ, पहले जहां भारत को केवल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाओं के एक विशाल उपभोक्ता के रूप में देखा जाता था, वहीं आज हमारा देश अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वदेशी, जो भारत की टेक्नोलॉजिकल मजबूती है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उसके क्या बेनिफिट्स हैं।
3: भारत ने पिछले 15 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, साइबर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की है। आज भारत में 100 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हैं। मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले जो मोबाइल फोन में स्मार्टफोन की जो संख्या होती थी वो करीब करीब 32-33% होती थी, आज वो 57% मोबाइल फोन स्मार्टफोन है। हर हाथ में देखेंगे स्मार्टफोन है और हर बच्चा, हर इंसान स्मार्टफोन लेना चाहता है। ये नहीं कहता मैं कि वो फीचर्स फोन नहीं लिए जाते, वो भी लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर क्लास में या गवर्नमेंट में भी लिए जाते हैं जो कि एक किस्म का क्लासिफाइड काम करते हैं, पर ज्यादातर लोग स्मार्टफोन लेते हैं। अब उस स्मार्टफोन लेने की वजह से देखिए पिछले 15 साल में इंटरनेट की स्पीड कितनी बढ़ गई है। आज करीब करीब 25 GB पर मंथ की दाब से डेटा एक यूजर लेता है। 25% कॉस्ट गिर गई है, 8-10 रुपए की कॉस्ट है पर जीबी। मैं अगर ये कहूँ कि भारत जो है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका नतीजा एडवांटेज काफी है भारत को कि भारत के पास कंजम्पशन हर प्रोडक्ट की है और हर प्रोडक्ट हर सोसाइटी के लिए चाहिए। तो पिछले 15 साल में काफी प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मैंने कंज्यूमर की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कहेंगे तो कहां हम 200 मेगावाट की वो डेटा सेंटर्स थे, क्लाउड थे, आज 1500 गीगावाट का क्लाउड हमारे पास इंस्टॉल्ड है भारत के अंदर, और वो 3000 गीगावाट टारगेट है अगले 5 साल में उसको करने का। आज विश्व का कोई भी क्लाउड मैन्युफैक्चरर नहीं है जो भारत में नहीं, हर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का डिजाइन सेंटर भारत में है। एक TSMC जो वर्ल्ड की एक प्रोडक्शन कंपनी है, सबसे बड़ी फैब कंपनी है, उसका भी डिजाइन सेंटर भारत में है। तो हर चीज में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो कंजम्पशन है, ये जो एक्सपेंशन है, ये हमको प्रोडक्ट्स की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत तेजी से ले जा रहा है। एक टाइम में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट काफी थी, बीच में फिर एक थोड़ा सा स्लंप आ गया। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है। हम सोचते भी नहीं थे, हम सोचते थे कीबोर्ड आपको भेजेंगे या हम छोटे मॉनिटर भेजेंगे, आज हम बहुत सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं।
2: सो जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही अपनी कहें कि फोकस्ड जो नीतियां हैं और जो रणनीतिक निवेश है उसके साथ देश की तकनीकी क्षमता को डेवलप किया है, जिसके साथ साथ विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है भारत में। अगर हम जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है, जिसे इंडिया स्टैक कहा जाता है, उसकी बात करें तो उसके बारे में आप बताएं कि उसमें जो एग्रीमेंट हुई है 23 देशों के साथ, हमारी तरफ से जो तकनीक वहां तक पहुंचाई जा रही है, ये कितना इम्पोर्टेंट एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए।
3: देखिए एक जमाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी और भारत ने उसको निकाला। और इसका बैकग्राउंड देखिए कि हमने एक यूपीआई सिस्टम निकाला। भारत जो हो उस अग्रणी देश है जिसमें यूपीआई सिस्टम चालू हुआ। आज दिन भर में बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं और जितने भी बड़ी कार्ड कंपनीज हैं ये सब यूपीआई को मानने को रिकॉग्निशन करने को तैयार नहीं थे। आज जितनी भी संसार की विश्व की सब कार्ड कंपनीज हैं वो सब यूपीआई इंटरफेस पे आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉमन इंटरफेस हमने बनाया है और हर विश्व की कंपनी उस इंटरफेस से लेके हमारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जुड़ जाती। इसको एग्जांपल जब हमारा सक्सेसफुल हो गया फिर हमने इस भारत ने कहा कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो पूरे देश में या विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज सब कनेक्टेड रहते हैं। आप उस पे ई कॉमर्स की एप्लीकेशन लगा लीजिए, कोई और किसी किस्म की एप्लीकेशन लगा लीजिए, तो पर्पस ये था कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक कॉमन इंटरफेस पे रहना है ताकि किसी को कनेक्टिविटी की जरूरत ना पड़े और कहीं मोनोपोली की जरूरत ना पड़े और हर देश हर ऑर्गेनाइजेशन हर कंपनी उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर रह के उसका इस्तेमाल वैसा ही हो एक्सपेंशन हो जैसे यूपीआई के एक्सपेंशन।
2: और बिल्कुल इसमें डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज भी एफिशिएंट हुई है और सिक्योर हुई है और लार्ज स्केल पर संभव हो पाई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है
3: क्योंकि हम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप यूपीआई देखिए ना, मैं स्टेट बैंक में हूँ, दूसरा आंध्रा बैंक में है, तीसरा किसी और बैंक में है, पांचवा यूनियन बैंक में है, छठा सेंट्रल बैंक में है, किसी में भी है, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। कहा हमने 2000 में से चालू किया था, आप 1,00,000 रुपए तक यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया। तो ऐसा ही इम्पैक्ट इंडिया स्टेक जो बना रहा है वो ही इम्पैक्ट है उसका। एक कॉमन लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा जिससे एप्लीकेशन का एक्सेस एप्लीकेशन का रिट्रीवल एक बहुत ही आसान हो जाता है और मोनोपोली टूट जाती है। आज की डेट में अगर प्रोप्राइटरी लेंगे तो एक बारी प्रोप्राइटरी आप टेंडर करके ले लेंगे, दूसरी बारी आपके दाम ज्यादा लेगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा लेगा, प्रोप्राइटरी हो जाता है। एक कॉमन इंटरफेस पे आ जाते हैं तो उसमें प्रोप्राइटरीनेस की बात खत्म हो जाती है। एक तो यूसेज में आसान मिलती है, एप्लीकेशन में आसान हो जाता है, उसके अलावा आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है।
2: आपने शुरुआत में ही बात करी थी जो एडवांस टेक क्षमताएं हैं उनके विकास की, जो फ्यूचर रेडीनेस के लिए इम्पोर्टेंट सरकार ने आइडेंटिफाई की है, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी जो उभरती हुई तकनीकें हैं उनके लिए जो जो ये फोकस्ड स्कीम्स लाई गई हैं उनको मिशन मोड में जिस तरह से अप्लाई किया गया है और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के लिए भी जो बहुत कंसर्टेड बहुत ही मजबूत एफर्ट्स किए गए हैं कि पूरे देश में AI स्किलिंग हो या जो और टेक्नोलॉजीज हैं उनमें स्किलिंग हो, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है ये फ्यूचर रेडीनेस के लिए प्रिपेयर्डनेस पर कार्य हो रहा है?
3: आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम का कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी टेक्नोलॉजी आइटम हो, नॉन टेक्नोलॉजी आइटम हो, इंडस्ट्रियल आइटम हो, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन, ये इनबिल्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। आप बैंक में जाइए, बैंक में आज कुछ जाता नहीं है और टेक्नोलॉजी है बैंक में, सिर्फ फाइनेंस दूर की बात है, सिर्फ आज बैंक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चलता है। पावर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम है पर टेक्नोलॉजी जो ड्राइव करती है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, पावर सेक्टर को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रोल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको देखते हुए ही भारत ने पिछले 5 साल से इस पे प्लानिंग चालू कर दी थी। सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में बनाया भारत ने, उसका आउटले 76,000 करोड़ रखा, उसके बाद 1,000 करोड़ 2025 में और ऐड कर दिया उसमें। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने एक सेमीकंडक्टर मिशन में हमारा गुजरात में धुलेरा जो है उसको फोकस किया ताकि हम उसको सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ से उसको बनाएंगे। और भी एरिया है जैसे असम में सेमीकंडक्टर को आगे करने के लिए उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया। उन्होंने आज भारत में कोई भी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है उसका R&D सेंटर, जहां R&D डिजाइन यही होते हैं। आप इंटेल ले लीजिए, आप ARM ARM ले लीजिए, आप TSMC ले लीजिएगा, जो भी

0: कंपनी आप देंगे वर्ल्ड की फेमस कंपनी सबका यहाँ डिजाइन सेंटर, तो उसी हिसाब से सेमीकंडक्टर मिशन लगाया गया। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया एआई मिशन भारत ने बनाया, जिसमें हमने आउटले 10,000 करोड़ रखा। उसके अंदर हमने एक 6 को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बैंगलोर, और उनको 1400 करोड़ रुपया आवंटन भी किया कि आप इसको आगे काम करिए, उनका डिफाइन करिए। जी, जितने भी 6 सेंटर्स हैं, इन 6 सेंटर्स का अपना अलग रोल है। हमारा एआई की स्पेशलाइजेशन आज के भारत में एक हम एप्लीकेशन की तरह हमारा बहुत स्पेशलाइजेशन है, और उसमें हमारे पास 4.5 लाख ट्रेन मैन पावर है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमें एक सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए हमें और एआई के दूसरे सेक्टर भी चाहिए, तो हमें एआई टूल्स भी बनाने हैं और हमें ऐसी दूसरे और एप्लीकेशन करनी है। देखिए, संसार में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास एआई की कुछ कंपोनेंट्स हैं, और एआई कंपोनेंट्स में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। भारत, चीन और अमेरिका, इन 3 देशों के पास बहुत डेटा है, सारा डेटा इन्हीं कंट्रीज के पास है। पॉपुलेशन अमेरिका के पास सारी आईटी कंपनीज वहां पे बैठी हुई हैं, चाइना की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत है। तो इंडिया एआई के क्षेत्र में एक यूनिक पोजीशन रखता है कि हमारे पास बहुत डेटा है। एआई क्वांटम मिशन पे आइए, क्वांटम इतना जरूरी हो गया है, इंटरनेट पे जो ट्रैफिक चलता है वो 99% इंक्रिप्टेड होता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी से, ताकि कोई इंफॉर्मेशन बीच में टैप ना कर पाए, उस पर अटैक ना कर पाए, तो इंक्रिप्ट करके चलते हैं। आपका वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ HTTPS, इसका मतलब है सिक्योर, सिक्योर का मतलब है इंक्रिप्टेड डेटा है। अब इसके साथ एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी भारत सरकार ने बनाया, जिसका आउटले भी करीब करीब 350 करोड़ पर रखा। उनका काम था एक अग्रणी के तौर पे एक R&D प्रोडक्ट डेवलप करें। अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन किया। आप देखिए कि जो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट है, हम इस वक्त 38वें पायदान पे हैं, और 2015 में 81वें थे। अब उसपे हम इम्प्रूव करके 38वें हो गया। अब अगले आप 5 साल में आप देखेंगे कि ये 38 जो है हम फर्स्ट 10 में आ जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी के इंडेक्स में जो यूएन यूनाइटेड नेशन इंडेक्स देता है, हम पहले 10 में आते हैं इम्प्रूवमेंट। पिछले 5-6 साल में हम 17वें नंबर से इम्प्रूव करके 10 के अंदर आ गए, जो सेफ कंट्री मानी जाती है हम उसके अंदर आ गए। अगले 5 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि भारत एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के एक मैच्योर नेशन निकल के निकलेगा।
1: डॉक्टर राय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस समग्र चर्चा के लिए, जिसमें आपने हमें बताया कि भारत कैसे एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में उभर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से हमारी फ्यूचर रेडी स्किलिंग हुई है, फ्यूचर रेडी हमारी टेक्नोलॉजीज है उनकी डेवलपमेंट हुई है सरकार के एफर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट्स, स्टार्टअप्स के एफर्ट्स के द्वारा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कंट्री वाइड।

0: the left-handed Deepthi and the rest of the bowlers into the equation, and if they can get them out in the crease, then they have a chance of putting a little bit more pressure on this Indian team. Yet again, Harmanpreet goes onto the back foot and plays it with soft hands, and this is disappointing fielding from Bangladesh. They should expect this from these Indian batters. They're under pressure. They will look to try and rotate the strike as often as possible. The fielders inside the ring need to be aware of that and need to take a little bit of a start, because it's no point hanging around and allowing these singles to be pinched from under their noses, as was the case here. Three balls, three singles. The first one was fraught with risk, but considerably better since then. Fuller ball. Jemima goes big, goes down the ground, and she clears long on for a massive six. Ye laga, aabha ka chakka. So the decision to come back to Sanjida Akhtar perhaps backfiring this time around for Nigar Sultana Jyoti. On the haunches and just playing that slog sweep to perfection, going much straighter than normally you would with that shot, and it's covered a six distance of 74 meters. It's a massive shot and it's brought the equation considerably better for India. 24 from 32 now. Jemima on strike, this time goes inside out. Has she cleared the infield for sure, but not able to find the boundary. However, some quick running brings two, and suddenly this has turned it into a massive over. 11 runs of this over already. India at 115 for 4. Jemima on 14 from 11 balls. Harmanpreet 6 from 8. 22 runs required of 31 now. And Jyoti knows that this over is perhaps that turning point which is slowly taking this chase away from her grasp. Would she have been better off perhaps going to one of her more frontline bowlers and leaving that gamble for Sanjida Akhtar later in this innings? Sanjida comes in once again. Jemima walks across the stumps, accesses it outside off stump, and will pick up four more, making this a massive over. Ye laga, aabha ka chauka. 15 runs of this over. India finish it at 119 for 4, and now the finish line is definitely inside, Dharmendra.
1: Ji haan, ab to bilkul aasan sa dikh raha hai lakshya Bharat ke liye. Khaas taur par pichle over mein jo 15 run aaye, isse भारतीय टीम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ चली है, और जेमिमा रॉड्रिग्स जिनको फॉर्म की तलाश थी उन्होंने एक तरह से वापसी की, आत्मविश्वास को अपने वापस संजोया है, और भारत का स्कोर पहुंचा दिया 119 रन चार विकेट के नुकसान पर। अब 30 गेंदों में भारत को चाहिए 18 रन, अभी भी 6 विकेट सुरक्षित है। रिक्वायर्ड रन रेट 3.60 का, और स्ट्राइक पर अब कप्तान हरमनप्रीत कौर, रितु मोनी गेंदबाज के तौर पर आई है एक बार फिर से आक्रमण के लिए। बांग्लादेश की टीम चाह रही है कि साझेदारी को तोड़कर थोड़ा सा वापस लौटा जा सके इस मैच में। उम्मीदें लगभग समाप्त होती हुई थी बांग्लादेश के लिए। ये पहली गेंद और इसको एक रन के लिए खेल दिया। फिर से एक बार विकेटों के बीच में खराब दौड़ दोनों खिलाड़ियों के बीच में, आपस में टकराते टकराते दोनों बची हैं। निगाह बिल्कुल एक दूसरे पर नहीं, गेंद पर दोनों की निगाह, और वहां पर टक्कर होते होते बची है। ये तीसरा मौका है जब रन लेने के दौरान दोनों के बीच तालमेल की काफी कमी दिखाई है देवायन।
0: एब्सोल्युटली, एंड टू सीनियर प्लेयर्स एंड हरमनप्रीत इन पर्टिकुलर जस्ट लुकिंग सो ऑफ कलर। शी इज गोइंग फॉर रिस्की सिंगल्स, शी इज रनिंग अ लिटिल ऑल ओवर द प्लेस, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट इनिंग्स फॉर हर। इफ शी स्टेज नॉट आउट देन इट विल डू हर कॉन्फिडेंस अ लॉट ऑफ गुड।
1: अगली गेंद, और इस बार सीधे बल्ले से सामने की तरफ, गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला है गेंद को, मिसफील्डिंग चारन। ये लगा आभा का चौका। सीधे बल्ले से खेला था इस मौके पर जेमिमा ने, और जेमिमा ने यह ठान लिया है कि अब कुछ भी हो बड़े स्ट्रोक्स लगाने ही है, जल्दी से जल्दी मैच को समाप्त करना है। इस बार लगभग ओवर पिच गेंद थी, गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला। रोका जा सकता था इस गेंद को, लेकिन थोड़ी सी गेंद घूम गई पड़ने के बाद, और गेंदबाज काफी निराश थी। इस चौके के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 128 चार विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, और इस गेंद को फिर से चार रन के लिए खेला है। ये लगा आभा का चौका। फिर से सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक सामने की तरफ लगभग उसी दिशा में, और ये चौका एक और आता हुआ जेमिमा के बल्ले से। स्कोर भारत का बढ़ता हुआ 128 चार विकेट के नुकसान पर। अब सिर्फ 9 रन चाहिए, 27 गेंदें बची हुई हैं। महंगा ओवर एक और चलता हुआ इस समय रितु मोनी का। रितु मोनी को एक सफलता जरूर मिली है, लेकिन इस ओवर में अभी तक दो शानदार चौके जेमिमा ने जड़ने में कामयाबी हासिल की है। दबाव गेंदबाज के ऊपर। कुल मिलाकर इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं और अब अगली गेंद खेलने के लिए तैयार जेमी मा। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी इस समय जेमी मा की तरफ से। दोनों के बीच अभी तक 19 गेंदों में 30 रन की साझेदारी, बहुत तेज तर्रार साझेदारी।
0: Absolutely, and 24 of the last 9 balls, but that first run of that 9 balls could have resulted in a run out.
1: अगली गेंद को इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, हवा में गेंद और ये कैच लपका गया। जेमी मा का विकेट आखिरकार भारत ने गवाया है। खेलना चाहती थी ऑन साइड में, बल्ले का बाहरी किनारा लिया गेंद ने, पॉइंट पर गई गेंद और एक आसान सा कैच। इस तरह से जेमी मा की एक तेज तर्रार पारी का समापन हुआ है। जेमी मा रॉयल्स कुल मिलाकर 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए हैं। 3 चौके और 1 छक्का उनकी इस पारी में। लग रहा था कि उन्होंने जो निराशा का दौर था उससे पार पा लिया है, लेकिन उनकी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी मैच जीत कर भारत को नेट रन रेट में और बेहतर स्थिति में लाया जा सके, उसी कोशिश में उन्होंने अपना विकेट गंवाया है। हालांकि भारत के सामने अभी भी कोई खास परेशानी नहीं, 26 गेंदों में अब सिर्फ 9 रन चाहिए। 128 पर भारत ने 5वां विकेट गंवाया है।
0: Absolutely unselfish batting from Jemima, going for the big hit, and it looked initially that she had absolutely middled it, but went off the leading edge and was gleefully accepted at backward point inside the circle by Maruf Akhtar, and that brings the all-rounder Deepti. Didn't quite get that 356th international wicket today with the ball. It was more than handy, 4 overs, none for 23, and now has a chance to put the finishing touches. But what Jemima, especially in that last short burst across the last 2 overs, has done is made this a much, much more favorable equation. Had Harmanpreet's wicket fallen when she went for that almost suicidal-looking single, then things would have been completely different. But Bangladesh have missed a lot of opportunities today.
1: अगली गेंद दीप्ति शर्मा के लिए। दीप्ति ने इसको हल्के हाथों से खेला है 1 रन के लिए और फिर दूसरे रन को तलाश रही थी, लेकिन उसकी संभावना थी नहीं। 1 रन से और बढ़ता हुआ स्कोर भारत का 129, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 8 रन चाहिए 25 गेंदों में, 1 अभी भी इस ओवर की बची हुई है। दीप्ति शर्मा ने पहली गेंद पर ही अपना खाता खोला। जेमी मा एक अच्छा बल्ले का जोर दिखाते हुए वापस मैदान से लौटी है। इस गेंद को 1 रन के लिए अंतिम गेंद को खेला है इस मौके पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, और इस 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति हुई। कुल मिलाकर 130 भारत का स्कोर 16 ओवरों के बाद, 5 विकेट के नुकसान पर। हरमनप्रीत कौर 8 रन बनाकर खेल रही है, दीप्ति शर्मा ने 1 रन बनाया है। स्ट्राइक पर एक बार फिर से हरमनप्रीत रहेंगे।
0: So just 7 runs to win as Ritu Moni becomes the first bowler to bowl out her complete spell, 2 for 29, the most successful among the Bangladesh bowlers. Wickets also for Maruf Akhtar, Rabia Khan and Nahida Akhtar. But the left-arm spinner Nahida coming on very late, and that's probably one tactical error that they made. Had she come on earlier, maybe they could have had a way of stopping Shefali before she had done all that initial damage. So Shefali Verma with 53 from 34. Impressive also from Yastika, 23 from 18. And Jemima with a neat little innings, 26 from 15 balls. The three chief architects of this Indian chase. 7 runs required, 130 at the moment for 5. With 4 overs still in play for India. And a victory here will also definitely improve their net run rate. As the next ball, Nahida Akhtar begins a 4th and final over. First ball cut away, but fielded straight at point. No possibility of a run for Harmanpreet. It's been a very scratchy effort from the Indian skipper, and it's a reflection of the kind of recent form that she's had. 8 of 11 is what she's batting on. As she faces up once again, Nahida outside off stump looking for the drive and also extending her front foot in the process, but the back foot inside the crease as she misses. And Jyoti has a quick look at the stumps to see if she can effect a stumping, but there's nothing forthcoming on this occasion. Yet again, Harmanpreet facing up. The big shot surely is coming at some stage. She goes with her trusted sweep and sweeps it all the way for 4.
2: Ye laga abha ka choka.
0: Clever from the Indian captain, just accessing that leg side by shuffling across, and Nahida also helping her by pitching it on the full, not allowing it to bounce at all. And then she just says thank you very much and sweeps it away with a roll of the wrists. A wry smile, because she also knows that she's just struggled for rhythm, but that boundary will do her a lot of good in terms of her confidence. 12 of 13 at the moment for her, as India are now 3 runs away, 134 for 5. on the verge of making it 4-0 in terms of head-to-head in World Cups against their Southern Asian neighbors. Oh, direct hit would have had Harmanpreet in a little bit of trouble this time, just tapping it on the offside and setting off for a single. Nahira was very quick to get across and have a shy at the stumps, and this one would have been close, Dharmendra.
1: बहुत नजदीकी मामला हो सकता था एक बार फिर से ये अगर सीधा थ्रो स्टंप्स पर टकराता लेकिन एक रन लेकर जीत के और करीब पहुंचती हुई भारतीय टीम.
0: She would have been out. She would have absolutely been out because it was played to the strong hand. Nahira is left-handed and just needed to turn around and have a shy at the stumps. But all's well that ends well from an Indian perspective. 135 for 5. Looks like Harmanpreet will probably finish with a red anchor against a name. 13 of 14. Deepthi on strike. 1 of 1. 5 runs of this over. Just 2 runs to get. 2 balls left. Nahid Akhtar, their senior spinner, their most experienced and highest wicket taker, brought on as the fifth bowler. So perhaps sometimes matchups really are overrated because they didn't really want her to be exposed against Yastika Bhatia. Deepthi Sharma swats it away on the onside, all the way for 4.
2: Ye laga, abha ka choka.
0: And those are the winning runs as well as India win by 5 wickets, 139 for 5 with 3.1 overs to spare. And that is something which will give them a lot of confidence moving forward for that all-important clash on Sunday against Australia, Dharmendra. But a good professional performance by India.
1: बहुत जबरदस्त प्रदर्शन भारत की तरफ से और दो महत्वपूर्ण अंक भारत ने जुटा लिए हैं और भारतीय टीम की ये जीत निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ग्रुप का अंतिम मैच होना है भारत का 28 तारीख को उससे पहले मनोबल बढ़ाने वाला और भारतीय टीम निश्चित रूप से सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूती से अपने आप को उपस्थित कराने में कामयाब रही है.
0: It was a rapid start, specially one provided by Shefali Verma. The first wicket partnership producing 31. Smriti Mandana was first to go. She was caught by Rabia Khan of the bowling of Maruf Akhtar for 8. Second to go, Shefali Verma, after completing 53 from 34 balls. She was stumped by Jyoti of the bowling of Nahira Akhtar, who was introduced as the fifth bowler by skipper Nigar Sultana Jyoti. Yastika Bhatia was caught by Rabia of the bowling of Ritu Moni for 23. That was 94 for 3. Richa Ghosh was LBW to Rabia Khan for 10. And the score then was 98 for 4. And Jemima Rodrigues was the fifth out after an explosive little innings, 26 from 15 balls. And of course, Harmanpreet Kaur and Deepthi Sharma, the two not-out batters at the end. So, 2 wickets for Ritu and 1 wicket for Nahida, 1 wicket for Maruf Akhtar and 1 wicket for the leg spinner Rabia Khan. India win this match by 5 wickets and move along to 6 points in this World T20 as well. And now, we'll take you through to the post-match show. Kaun Banega Player of the Match?
3: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात.
4: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मन की बात में आप सबका स्वागत है.
3: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर घर पेड़ तक की बात. आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है और के लिए हौसला. बात देश की, सबके मन की.
5: मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
3: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार, और देश कहे चलो सुने मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
6: प्लेयर ऑफ द मैच
7: शफाली वर्मा के 53 रनों की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर
8: मैच जीता है। शफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच से भी नवाजा गया है। सीधा चलेंगे मैनचेस्टर, जहां पर सुनेंगे कि क्या कह रही है प्लेयर ऑफ द मैच शफाली वर्मा।
9: 3 of 34, top scored in the last game and in this one. How pleased are you with your batting this tournament?
10: Yeah, of course, very happy the way I batted today. But if I will be no doubt, that will be so happier for me. But yeah, good confidence today and so happy I can grab some runs.
9: 136, I think it's fair to say you might have thought you'd be chasing a little less. What was the chat when you went out to chase and what was the plan in the power play?
10: Nothing much, just backing our batting, just whatever loose ball will come, we'll just go for the 4 or maybe 6, or otherwise we'll go for 1 run. So it's just a normal talks, not the different thing.
9: Any particular shots that you've been working on that you feel are now coming out very nicely?
10: Well, just try to, choose the right ball, whatever come in my in my zone, just go for that. Otherwise, take single. It's just a very simple thing, but sometimes it's complicated a lot. But I just talk to myself a lot this time, and yeah, it's going good. I'm so happy for that.
9: What did you feel about when you got out and how you got out?
10: Of course, sad. The way I got out, as I said earlier, if I will be the not out, and that will be more happier for me.
9: I want to ask you one quick question on your bowling. You're now India's opening bowler as well. How much are you working on your bowling? At what point did this become a regular plan that, yes, Shifu's going to play a big role with the ball?
10: Well, of course, in the nets, I used to bowl with the new ball and with the old ball. Sometimes I laugh a lot. But in the end, what our team need, I'm there for that. And thanks to Harmandi, she always, give me a lot of confidence when I bowl, give me a lot of very good field set. So just thanks to her.
9: Ready for Australia?
10: Yeah, of course. We'll go to London and see them.
9: All right. Well done today. Good luck for that one, Shefali.
10: Thank you.
7: ये थी प्लेयर ऑफ द मैच शफाली वर्मा, और हम हाजिर हैं इसी कार्यक्रम में इसी नाम से प्लेयर ऑफ द मैच, जो अब आप सबको पता है कि कौन है। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण तिखिया।
8: बहुत बहुत शुक्रिया मुदिता। और हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का एक पैनल, जिसमें हमारे साथ आज जुड़े हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व भारतीय सेलेक्टर चेतन शर्मा। बहुत बहुत स्वागत चेतन, एक बार फिर आपका
11: धन्यवाद।
8: साथ में साथ के साथ हमारे साथ जुड़े हैं विजय धैया, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। विजय, वेलकम टू द शो वंस अगेन।
12: थैंक यू सो मच।
8: और उसके साथ साथ क्रिकेट जगत पर अपनी पहनी नगा दशकों से रखने वाले शशांक शेखर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने खेल पत्रकार। शशांक, बहुत बहुत स्वागत आपका भी।
13: धन्यवाद।
8: चेतन जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे और वहीं से उठाएंगे जहां पर शेफाली ने छोड़ा। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। उन्होंने कहा बड़े हरफन मौला अंदाज में कि विल गो टू लंदन एंड देन वी विल सी देम। ये जो एटीट्यूड है, ये कितना जरूरी है?
11: मैं कॉन्फिडेंस कहूंगा इसको। देखिए, बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस है। जब जीत, देखिए हर समय इंपॉर्टेंट है कि आप जीतते हैं, जीत से सीखते हैं। क्या भारतीय टीम ने सीखा ये तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रेसिंग रूम की बातें हैं, वो बाहर आएंगी नहीं। लेकिन एक कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत अच्छी बात लगी। मतलब शेफाली, मैं पहले से बात कर रहा था, जब हम मिड शो में बात कर रहे थे, ऊपर से स्टार्ट मिलेगा आप इस मैच को जल्दी खत्म कर देंगे। नेट रन रेट का मुझे चिंता ज्यादा नहीं है। देखिए, आप मैच जीतते चले जाएंगे, नेट रन रेट तो आएगा ही नहीं सामने। तो अब आपने बांग्लादेश को मात दी, अब आपकी ऑस्ट्रेलिया की बारी, आपको रणनीति प्लान करना है। अच्छी बात है, कुछ जो मुझे समझ आई है, जमीमा का बल्ला चला आज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेफाली ने ऊपर से रन बनाए, स्मृति की कोई टेंशन नहीं है। देखिए, वो अपना रन बना देती है, वन ऑफ आप आउट हो गए आज। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो रन्स बने हैं आपके, तो जब रन्स बनते हैं तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ चीज़ें जो बीच में हुई हैं, रनआउट्स, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, जो आप तालमेल आपका नहीं है, वो थोड़ा सा बना के रखिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको ऐसे मौके नहीं देगा जो बांग्लादेश ने आपको मौके दिए। ऐसे रनआउट्स कभी वो छोड़ेगा नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें इंप्रूवमेंट है। हर समय क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आप करते हैं। देखिए, कभी आप परफेक्ट नहीं है, आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। इंप्रूव करते जाइए, जीतते चले जाइए।
7: जी बिल्कुल, शेफाली खुश नहीं थी आउट होने से और उन्होंने कहा कि मैं तो चाहती हूँ मैच फिनिश करके जाऊं, शायद ये हम सब भी देखना चाहते हैं। विजय चेतन ने बात की शेफाली के कॉन्फिडेंस की, इसके अलावा मैच्योरिटी और इंटेंट भी दिखता है अब उनकी इनिंग में।
6: आई थिंक इंटेंट आपको हमेशा नजर आएगा, पर जिस तरीके से जो स्ट्रोक प्लेयर होते हैं ना, जब ये खेलते हैं तो मिलियन डॉलर लगते हैं, जब आउट होते हैं तो कई बार आपको लगता है कि इस नादानी की जरूरत थी क्या, पर वो खेलते ही इसी तरीके से हैं। आप किस इस फॉर्मेट में किसी भी तरीके को खिलाड़ी के देखेंगे जो इस इंटेंट से खेलेगा, जो आपको पारी की इस तरीके की शुरुआत देगा, उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी कम नजर आएगी क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क उठाते हुए आपको नजर आते हैं, वो इस तरीके की क्रिकेट ज़्यादा खेलते हुए नजर आते हैं। आप जब इस स्टेज पे लगातार रन बनाने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, उनको कॉन्फिडेंस शायद इस बात से भी अब देखने को लग रहा है कि जिस तरीके से उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिंग में भी दी जा रही है। सिर्फ यही है कि प्लेयर सारे बढ़िया ही होते हैं, उनको किस तरीके से आप महसूस कराते हैं और उनसे बेस्ट कैसे ले सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और फिर वो अपने आप को एक प्रमुख अंग उस टीम का मानने लगते हैं, जो मुझे लगता है धीरे धीरे शेफाली को वो महसूस हो रहा है कि मैं सिर्फ इस टीम में खेल नहीं रही हूँ, मैं एक प्रमुख उस तरीके की खिलाड़ी हूँ कि जिसके ऊपर सबकी नज़र रहती है और मेरा योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।
8: और नजर हो भी क्यों ना, नोवा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है उनका और वुमेन्स टी20 आईज में सिर्फ हरमनप्रीत कौर, मिथाली राज और स्मृति मांधना के पास उनसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं। लिव बाय द स्वॉर्ड, डाई बाय द स्वॉर्ड, दैट्स व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर शी इज। बट अनदर गुड पॉइंट दैट चेतन रेज्ड शशांक वॉज जेमिमा स्कोरिंग दोज रन्स, बिकॉज अर्लियर वी सॉ इन द लास्ट थ्री मैचेस शी लुक्ड अ लिटिल बिट स्क्रैची बट द बाउंड्री स्टार्टेड फ्लोइंग टुवर्ड्स द एंड।
12: यस, दैट boots well for India as they take on Australia come Sunday. Jemima, you know, she looked as if she wants to finish the match as early as possible, also keeping in mind probably the run rate. But she took on the spinners and hit some lusty blows, and she was trying another which got her out. So this is not a typical Jemima innings. It was a breezy cameo, but it came at the right time for India and it helped India finish the match well before the final over. So that's, and she was timing the ball well. She came in the middle order. Earlier she used to bat at number 3 where she had more time to build an innings and all, but if she's coming at 4 or 5 or even 6, then she needs to start hitting from the word go, and she tried to do that and she was successful to a large extent today, which is good for India.
7: जी, और अगर हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके पास भी हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स है 2342-1083 और 2342-1085, इसके पहले दिल्ली का कोड 011 लगाना ना भूले। बैटिंग की बात चल रही है विजय, तो यस्तिका भाटिया इस मैच में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है, जो कहा जा रहा था कि जिसकी वजह से हम उनको प्रेफरेंस दे रहे थे कि एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनता है और पावर प्ले में बढ़िया प्रदर्शन वो कर सकती हैं। क्या लगता है कि अगले मैच के लिए उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है आज की परफॉर्मेंस के बाद?
6: जिस तरीके से अगर आप देखेंगे, पिछले कुछ समय में इंजरी के बाद उनकी वापसी हुई है, उनके ऊपर जो विश्वास दिखाया गया है, वो टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं वो आपके लिए, और उनके जगह भी वही हैं, वो टॉप 3 में ही बल्लेबाजी आपको करती हुई नजर आएंगी क्योंकि बहुत सारे बदलाव आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जमेमा के हम बारे में बात करते हैं, जिस तरीके का उनका खेलने का तरीका है, वो जितने ज़्यादा नीचे बैटिंग ऑर्डर में जाएंगे उतनी ज़्यादा उनके लिए और ज़्यादा चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की खिलाड़ी हैं कि थोड़ा सा समय ज़रूर लेती हैं लेकिन फिर वो समय लेने की भरपाई आखिरी में आके ज़रूर कर लेती हैं। वो वैसे खिलाड़ी के लिए शुरू से ही अटैकिंग खेलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। रिचा उस नंबर पर नहीं आती जिस नंबर पर आज बल्लेबाजी करने आई थी, नॉर्मली आप उन्हें 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखती, वो एक फिनिशर का रोल उनका रहता है। तो शायद आज टीम टैंक है, जो थिंक टैंक है, उनका ये सोचना था कि शायद इस मैच में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। रिचा के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बढ़िया नंबर हैं, तो शायद इस वजह से आप चाहते थे कि थोड़ा सा गेम टाइम उनको और ज़्यादा मिल जाए इस मैच के अंदर, पर वो खेलती एक ही तरीके से, उनको ये नहीं रहता अपोजिशन क्या है, उनको ये रहता है कि अगर बॉल मेरे हाफ में है तो वो अपने आप को बैक करती हैं, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना है तो 3-4 प्रमुख जो खिलाड़ी हैं आपके बल्लेबाजी में, उनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा उस दिन।
8: जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनौती होने वाली है कड़ी, और मस्ट विन चुनौती होने वाली है। खैर मस्ट चीजों की हम बात कर रहे हैं, मस्ट इज आर कॉलर्स एंड यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन आर नंबर्स एंड जॉइन इन इन द शो। वी हैव वन कॉलर ऑनलाइन, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, अपना नाम बताइए जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अपना सवाल बताइए।

0: आज के मैच में भारत ने ये किया है, पावर प्ले में अब तक का मैक्सिमम स्कोर आज बनाया है। खुश हैं आप?
1: जी, खुश तो हैं, लेकिन अब अगला मैच जो है, जो ऑल इम्पोर्टेंट क्रिटिकल मैच है, वो ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट में है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो बॉलिंग अटैक है, उनकी उनकी अटैक में क्या है, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, पेसर्स भी अच्छे हैं, न्यू बॉल बॉलर्स भी अच्छे हैं, तो वहाँ पे इतनी आसानी नहीं होगी। वो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी विल बी मच हायर जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसे पोजीशन से खेलते हैं। तो लेकिन फिर भी पावर प्ले में परफॉर्मेंस अच्छा था। शेफाली ने कैरी किया टीम को, बहुत अच्छी पारी खेली, बहुत एग्रेशन और बहुत इंटेंट के साथ, जो अक्सर हमेशा खेलती हैं वो। उसके बाद थोड़ा सा एक डाउन डाउन स्पाइरल आया, बाद में फिर जमीमा ने किया। बट कुल मिलाकर के मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत खुश होगी टीम मैनेजमेंट आज के परफॉर्मेंस से। सारी चीज़ों को हम इवन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट में हमारी जो फील्डिंग थी, बॉलिंग थी और बैटिंग थी, तीनों में कुछ कुछ कमी नजर आ रही थी, तीनों डिपार्टमेंट्स में, जिसकी वजह से हम वो मैच हारे थे। आज भी कुछ कमियां नजर आई हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये कैसे करते हैं, जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है उनके खिलाफ।
2: जी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्तर उठाना पड़ेगा। एंड एन इंटरेस्टिंग थिंग विजय, हरमन सेड दैट आवर कॉन्फिडेंस हैज चेंज्ड सिंस दैट विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन नवी मुंबई। शी इज टॉकिंग अबाउट द 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑब्वियसली, बट हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दे मस्ट बी सीदिंग अबाउट लूजिंग दैट गेम एज वेल एंड दे लुक हंग्री। सो हाउ डू यू सी दैट कॉन्टेस्ट पैनिंग आउट?
3: Every time they come into the ground, I'm talking about Australia, their hunger is always there. And they set the tone. In early 2000, their men team has set the tone for the rest of the world to catch up. The way they have played Test match cricket around that time, everybody is trying to do the same thing. And then their men's team winning 3 World Cups is absolutely evident that kind of cricket they love playing. Same goes for the women's side as well. They're the most dominating side as far as the women cricket is concerned. And they take pride in that. I think they're not going to forget what happened in the Mumbai. They'll come with that sort of a mindset that they're not going to give an inch as far as the Indian team is concerned. And let's not forget, if you keep an opponent like India alive, if they beat Australia, they might meet them again.
2: Right.
3: So Australia must be thinking, let's finish one opponent here in the league stage itself. So I think the pressure is going to be on the Indian side playing against the top side, plus everything on stake.
2: एवरीथिंग ऑन स्टेक। और आपको ये बता दें कि उससे पहले एक और मुकाबला होने वाला है जो भारतीय दृष्टिकोण से अहम है, वो है दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच जो मुकाबला अब से कुछ देर में होने वाला है। ब्रिस्टल में ये मुकाबला है जिसका टॉस हो चुका है। नेदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। चेतन भाजी, ये थोड़ा सा भारत के लिए खतरे की घंटी है क्या, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के पास मौका है बड़ा स्कोर बनाने का और वो बड़ा नेट रन रेट बूस्ट पाने का?
4: देखिए, मुझे मैं अगर आप मेरी अपनी सोच से मैं बात करूं, तो मुझे दूसरे मैच में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने मैच के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अगर एंड ऑफ द डे साउथ अफ्रीका हार जाते हैं, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन आप उसके ऊपर वो नहीं कर सकते, आप निर्भर मत रहिए। देखिए, दूसरे के ऊपर निर्भरता और देन आप सोच रहे हैं वो हारेगा मैं जीतूंगा, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। आपने आज अच्छी क्रिकेट खेली, यू डिड वेल, आप क्या यहां से सीख कर गए हैं, आपने क्या गलतियां की, उस पर सुधार कीजिए। एंड अगर जो नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का होना, वो मालूम पड़ जाएगा आपको 3 घंटे के अंदर, लेकिन आप अपनी तैयारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कीजिए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, वैसे ही आप थ्रू हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो जो आपके हाथ में जो आपको करना है वो आप कीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
3: मुझे लगता है कि रन रेट तस्वीर में नहीं आने वाला है।
4: बहुत
3: हाँ, जिस तरीके से आप पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डाल रहे हैं, उसमें रन रेट बहुत बहुत मुश्किल है कि रन रेट वहां पर आए। सीधा सीधा है दोनों टीमों के लिए, आप अपने बचे हुए मैचेस जीतिए और जिंदा रहिए।
0: जी, और अगला मैच नॉकआउट मैच हो सकता है भारत के लिए। विजय, अभी आप बात कर रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक्सल तो कर ही रहा है इस टूर्नामेंट में भी, लेकिन साथ ही साथ वो जिस किलर इंस्टिंक्ट के साथ खेलने उतरता है, तो यू नीड दैट मेंटल स्ट्रेंथ, दैट माइंडसेट टू बीट देम।
3: वो मेंटालिटी ओवरनाइट नहीं बन सकती है, आपको उसकी तरफ अग्रसर होना पड़ता है। और जैसे ही हमने प्री शो में भी ये बात करी थी कि ये टीम एक बनती हुई टीम है, इस तरफ की तरफ आप नज़र डालें, बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम के अंदर ऐसे हैं जिनके लिए पहला वर्ल्ड कप है। T20 वर्ल्ड कप से हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, अगर आप उस तरफ नज़र डालेंगे, तो उसमें आप कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे बॉक्सेस हैं जिनको टिक करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ आप अगर उस टीम की तरफ नजर डालेंगे ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपको ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे नजर आएंगे जिनके पास बड़े मैचेस खेलने का अनुभव है। तो जब आप बड़े मैचेस खेलते हैं वो तभी खेलते हैं जब लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और वो सिर्फ स्किल सेट नहीं है, एक बहुत चीज आपने यहाँ पर जिक्र की मेंटालिटी। आई थिंक वो जिस मेंटालिटी से उतरते हैं वो एक विनिंग मेंटालिटी है। आप उनसे खेलते वक्त सिर्फ ये नहीं सोच रहे होते हैं कि हम अपने अच्छे दिन पे जीतेंगे, कई बार आप ये भी सोच रहे होते हैं कि हमारा अच्छा दिन तो होगा, क्या उस दिन ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा खराब दिन हो सकता है जहां पर हम उनको पकड़ सकते हैं। इस तरीके की धाक कुछ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पिछले कुछ समय में जमाई है, और इसी वजह से आप सिर्फ उनको स्किल से नहीं हरा सकते, आपके उस दिन मानसिकता भी उनसे बेहतर होनी चाहिए।
2: खैर, हम ये बैठे बैठे आकाशवाणी के स्टूडियो में ये सोच रहे हैं कि हमारे लिसनर्स क्या सोच रहे हैं, सीधा जुड़ते हैं एक लिसनर्स के साथ और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि आज की जीत पर। नमस्कार, अपना नाम बताइए। राम अवतार जी, क्या सवाल करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से?
5: सर, पहले तीनों क्रिकेट के तरफ से लोगों को नमस्कार मेरा।
1: नमस्कार जी।
4: नमस्कार, नमस्कार जी।
2: जी जी जी तो जी शशांक, आई कम टू यू विद दिस क्वेश्चन। भारती फूलमली स्टार्टेड ऑफ इन इंडियाज फर्स्ट प्लेइंग 11 व्हेन दे फीचर अगेंस्ट पाकिस्तान, नाउ फाइंड्स हरसेल्फ आउट ऑफ द प्लेइंग 11, हाउ डू यू सी इट?
1: सो अभी जैसा कि हमारी कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि अब आपने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने मैचेस में इस वर्ल्ड कप में, और 15 खिलाड़ियों को आपने खिलाया है, तो सारे खिलाड़ियों को आपने टेस्ट किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने शुरू में ही ये सोच रखा था कि शुरू से ही कि जैसे मैच हम खेलेंगे हमारी अपोजिशन जैसी होगी उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से हम अपनी टीम चुनेंगे, जिसको हम हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कहते हैं। तो उस फुलवनी ने पहला तो मैच खेला, उसके बाद इनको लगा कि शायद वो कॉम्बिनेशन जो वो उतारना चाहते हैं वहाँ पे उनकी जगह नहीं बनती है। इसका अर्थ कहीं से भी ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी खिलाड़ी नहीं है, इंडियन टीम में है, इंडियन स्क्वाड में है, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मर है। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में हम देखें उनको खेलते हुए, ये संभव है।
2: विजय, कुड इट बी द लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम स्मृति एंड दीप्ति देयर इज नो अदर लेफ्ट हैंडर इन दैट ऑर्डर, डू यू थिंक दैट इज व्हाई दे हैव हेज्ड देयर बेट्स ऑन यास्तिका भाटिया?
3: I think before left-hand, right-hand combination need to understand, or as the team management for us sitting here need to understand what they feel, who they think is can give you the best. At the moment they feel that Yastika Bhatia can give them what they're looking for. Then comes the combination, left-hand, right-hand combination. You have to pick up the best batter in the side. In their eyes at the moment it's Yastika Bhatia, and that's the reason why they're going with them. It's very simple to understand sometimes. You know what happens is whoever is not playing, it's very easy to advocate and say that person can play as well. But the people who matter at the moment, they think that this is the person who can do the job for us and they back that person.
0: जी, और विजय थोड़ी देर पहले आपने रिचा घोष की बात की, रिचा नीड सम टाइम एंड देन शी एक्सप्लोड्स, व्हेन शी गेट्स मोर टाइम शी प्रूव्स टू बी मोर इम्पैक्टफुल एंड ऑलमोस्ट सेम एज विद जेमी आल्सो, शी परफॉर्म्स बेस्ट व्हेन शी हैज टाइम टू रोटेट द स्ट्राइक एंड देन एक्सेलरेट। आज के मैच में रिचा घोष को ऑर्डर में पहले भेजा गया, क्या ऐसा ही कुछ आप अगले मैच में एक्सपेक्ट करेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो डिसीजन लेगी?
3: अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही है, क्योंकि आज रिचा का उस नंबर पे आना आप नॉर्मली उन्हें देखते नहीं है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें कोई भी फॉर्मेट रहा है, चाहे 50 ओवर की बात करें या T20 की बात करें, आपने हमेशा उनको एक फिनिशर के रूप में इस्तेमाल किया और उन्होंने वो काम किया भी है। लेकिन कई मैचेस ऐसे भी रहे हैं जहां पर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे थे और आपकी उतनी विकेटें नहीं गिरी थी, लेकिन वो मोमेंटम आपको चाहिए था, तभी रिचा का बैटिंग ऑर्डर हमेशा थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्योंकि उनकी उनके पास जो एबिलिटी है, कई बार आपके पास बीच में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो आपको गेम सेटअप करके देते हैं। जेमी का आपने जिक्र किया, वो कुछ इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि गेम सेटअप करके देती हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो गेम सेटअप करते हैं, कुछ होते हैं जो मैच को फिनिश करते हैं। पिछले कुछ समय में रिचा आपकी फिनिशर रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि उनका इस्तेमाल उसी तरीके से किया जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ बराबर की लड़ाई लड़नी है, तो आपके जो अपने इस तरीके के खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा प्रमोट करना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलती हैं, उनको उनको सिचुएशन और ऑपोजिशन से फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को बैक करती हैं, और ऐसे ही खिलाड़ी बढ़िया टीमों के खिलाफ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
2: एक बार पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे, ऑस्ट्रेलिया 4 में से 4 मुकाबले जीतकर ग्रुप ए में इस वक्त शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, भारत ने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, जिसके बाद आज भारत नंबर 2 पर है और नंबर 3 पर दक्षिण अफ्रीका है, जिसने 1 मुकाबला कम खेला है, 3 में से 2 जीत उनके नाम अर्जित है, और अगर आज दक्षिण अफ्रीका नेदरलैंड्स को हरा देता है तो फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका बराबरी पर आ जाएंगे, और बात आएगी इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वर्सेज बांग्लादेश, ये दोनों ही मुकाबले लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जाएंगे। चेतन बाजी, थोड़ा सा हम चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को बताएं, क्योंकि आप तो लॉर्ड्स में खेले हुए हैं, बार बार चर्चा होती है लॉर्ड्स पर उस स्लोप की और अलग डायमेंशंस की, क्या परिस्थितियां रहती हैं वहां पर और क्या वो चीजें हैं जिनका ध्यान देना होगा, खासकर हमारे बॉलिंग यूनिट को?
4: देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्लोप के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दें, बिकॉज हम लोग एज ए क्रिकेटर्स स्लोप के यूज टू नहीं होते हैं, हर ग्राउंड का डिफरेंट डायमीटर्स है, तो हर ग्राउंड पे आप जाएंगे आपको डिफरेंट कुछ ना किसी किसी का अप द हिल आपको गेंदबाजी करनी है, कोई डाउन द हिल है, और लॉर्ड्स में भी ऐसा है, एक डाउन द हिल है एक अप द हिल है, वो प्लेयर्स को बहुत जल्दी अनुमान लग जाता है उस चीज़ों का। और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, देखिए लॉर्ड्स द मक्का ऑफ क्रिकेट का हर समय कहा जाता है, एक आपकी उम्मीद रहती है, एक तमन्ना रहती है कि आप लॉर्ड्स में जाएं और वहां प्रदर्शन करें। देखिए, लॉर्ड्स में खेलना एक अपने आप बड़ी बात है, लेकिन वहां पर खेलकर जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी आप अच्छा प्रदर्शन कुछ करते हैं लॉर्ड्स के ऊपर, वो बोर्ड के ऊपर आपका नाम जाता है, वो बोर्ड के ऊपर नाम सारी उम्र रहेगा, तय उम्र रहेगा, और जो भी वहां पर जाएगा हर क्रिकेटर आपका नाम वहां पड़ता है, तो एक आपके दिल में वो रहती है कि मैं यहां जाऊं, अच्छा प्रदर्शन करूं और इस बोर्ड में अपना नाम को शुमार करूं, और वो तभी हो सकता है भारतीय टीम के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया को जाकर वहां मात देते हैं, तो मात देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने हरा दिया उनको तो ऑटोमेटिक आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए जो विजय अभी बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया विल गो फॉर ए किल बिकॉज दे डोंट वांट टू प्ले इंडिया अगेन, वो अगर यहां से जीतती है इंडिया तो दे हैव टू प्ले इंडिया समवेयर और अदर, फाइनल्स में मिल सकती है इंडिया, क्योंकि इंडिया में दमखम है, तो दे विल गो फॉर ए किल, तो वो इंडिया को भी अपना पूरा दमखम के साथ क्रिकेट खेलनी जरूरी है।
0: जी विजय, अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम पे नजर डालें तो मल्टीपल मैच विनर्स हैं उनके पास, हर मैच में एक नया नाम, एक नया खिलाड़ी उभर के सामने आ जाता है जो जम के खड़ा होता है, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी उसका साथ दे रहे होते हैं, कभी कैमियोज में कर रहे होते हैं या फिर कभी कुछ और साथ में अच्छे स्कोर्स बना रहे होते हैं। भारतीय टीम को भी एक ऐसे एंकर की जरूरत पड़ेगी, हम जो स्कोर्स देख रहे हैं कि शेफाली वर्मा ने आज शानदार खेला, लेकिन 53 पे जाके वो पारी खत्म हो गई है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपनर बेथ मूनी को अगर हम देखें नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 74 वो बना चुकी हैं, पिछले मैच में एलिस पेरी 71 बना चुकी हैं, भारतीय टीम को इस एंकर रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
3: अगर आप इस फॉर्मेट की तरफ नज़र डालेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कम रोल है एंकर का। होता क्या है कि जो आपके टॉप 3 हैं उनके पास सबसे ज़्यादा समय है सबसे ज़्यादा बॉलिंग खेलने का, तो वो आपको इसलिए नज़र आते हैं सबसे ज़्यादा रन आते हुए, या कभी भी आप देखेंगे टॉप 3 के पास है तो आप ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो शीट एंकर का रोल अदा करेंगे। लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं उनका खेलने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। आपने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बात करी और जो 2 नाम आपने लिए वो वर्ल्ड क्रिकेट में हर फॉर्मेट में अपना लोहा मनवा चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे खेलेंगे, शेफाली से आप कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं कर सकते, उनसे आप इम्पैक्टफुल पारियों की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। जो कंसिस्टेंसी आएगी वो दूसरे छोर से किसी और खिलाड़ी को करनी पड़ेगी, क्योंकि शेफाली अगर इस तरीके का स्टार्ट आपको देती है तो वो प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर डाल देती है, जिसका फायदा दूसरे छोर से उठाना और बल्लेबाजों के लिए बहुत जरूरी है।
2: जी, और हम उम्मीद करेंगे 28 जून को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा ही इंपैक्ट देखने को मिले। आज का दिन 25 जून भारतीय क्रिकेट में यादगार, क्योंकि लॉर्ड्स के ही मैदान में कपिल देव की उस टीम ने पहली बार विश्व कप उठाया था, और इसी कामना के साथ कि 2026 में T20 विश्व कप भारतीय टीम, भारतीय महिला टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में उठाए, हम लोग आते रहेंगे इस विश्व कप का ब्रॉडकास्ट आपके साथ लेके। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम अपने एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करना चाहेंगे। चेतन शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
4: धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच विजय भैया फॉर गिविंग योर टाइम।
3: मोस्ट वेलकम।
2: एंड थैंक यू सो मच शशांक शेखर फॉर बीइंग ऑन द शो।
4: So much.
0: लेकिन साथ ही चलने से पहले दर्पण हम अपनी टेक्निकल टीम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें शामिल थे जयराम, संदीप दहिया, सुशील कुमार, राम आशीष यादव और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्शन टीम, जिसमें शामिल थी कविता वी, तन्मय पंत, अमीशा पटेल और उस सब से भी ऊपर हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
2: इन सभी के एफर्ट्स, सभी के मिले जुले प्रयत्न से ये ब्रॉडकास्ट संभव हो पाया है। उम्मीद करते हैं आपको सुनने में मजा आया होगा। मैं दर्पण, मेरे साथ
0: मुदिता
2: और हम आपसे विदा लेते हैं। 28 जून को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का लाइव ब्रॉडकास्ट लेकर वापस आएंगे, सुनना ना भूलिएगा। नमस्कार।
6: प्लेयर ऑफ द मैच।
7: अभी अब आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
8: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द टी20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑफ द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। सुरों के रंग कार्यक्रम में आपको तलत महमूद की आवाज में सुनते हैं एक गांव की कहानी का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म दुलारी का ये गीत, शकील बदायूनी का लिखा नौशाद के धुन पर। और अब आपको सुनवा रहे हैं जिगरी दोस्त फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। गीत रचना है आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, सुरों के रंग का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति

0: सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
1: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. The government has hiked the fee for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passport Amendment Rule 2026 will come into force with effect from 1st of next month. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. The existing fee for a 36-page passport is 1,500 rupees and for a 60-page passport is 2,000 rupees. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health in New Delhi today. In a social media post, Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. National Testing Agency NTA has opened a window today for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. In a social media post, the NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 2,000 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. India's newly appointed High Commissioner to Bangladesh, Dinesh Trivedi, formally assumed office today after presenting his credentials to Bangladeshi President Mohammad Shahabuddin at Bangabhavan in Dhaka. Following the credential presentation ceremony at the Presidential Palace, Trivedi visited the Indian Visa Application Center in Dhaka to inspect its operations and interact with officials. In the FIFA World Cup, Curaçao will take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia in US at 1:30 Indian time. In another Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in at 1:30 AM IST. And that's the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. इस समय रात्रि के 11:10 हो रहे हैं. समाप्त होती है हमारी आज की ये सभा. कल प्रातः 5:58 पर पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए अनुमति दें. शुभ रात्रि. जय हिंद.